सुप्रभात। एफएम 100.5 यानी 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 10वीं तिथि तदनुसार 30 मई सन 2026। इस समय सवेरे के 5:57 हो रहे हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के 13 केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.5 MHz पर। इस समय सुबह के 6 बजने को है। अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की है।
2: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: गृह मंत्री ने ड्रोन, रडार, निगरानी टावर, अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से

एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग लाइंग की यह पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति यू मिन आंग आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। म्यांमा के राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि कल तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एजआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली शिक्षा प्रणाली में बेहतर समन्वय और प्रभाव सुनिश्चित होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक

0: निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए चिंतन।
2: शिष्टाचार हमारे व्यक्तित्व का आभूषण है। जिसके व्यवहार में शिष्टाचार और विनम्रता है, उसका सर्वत्र आदर होता है। शिष्टाचार का मूल मंत्र है अपनी नम्रता और दूसरों का सम्मान। पाश्चात्य जगत के महान कवि एडिसन ने कहा है कि विनम्रता तो शरीर की आत्मा का अलंकार है। रवींद्रनाथ ठाकुर ने भी कहा है, विनम्रता तो आध्यात्मिक शक्ति है। वास्तविक नम्रता और शिष्टता सात्विकता के तेज से उज्ज्वल होती है। विनम्रता और शिष्टाचार अंतःकरण की अभिव्यक्ति होते हैं। जो व्यक्ति अशिष्ट होता है, असभ्य होता है, वो कभी संवेदनशील नहीं हो सकता। ईसा मसीह कहते थे कि अपने शत्रु से भी प्रेम भाव रखो, शत्रुओं को बार बार क्षमा कर दो। किसी ने कहा है, स्वार्थी लोग यदि आपसे अनुचित लाभ उठाने का प्रयत्न करें तो उनकी उपेक्षा कर दीजिए, किंतु जैसे के साथ तैसा करने का प्रयास न करें, क्योंकि उससे आप अपने शत्रु को दुखी करने की बजाय स्वयं को दुखी कर लेंगे। वास्तव में हमारे व्यवहार की शिष्टता शालीनता पर जीवन के विकास क्रम का, उन्नति अवनति का, प्रसन्नता खिन्नता, मान अपमान का बहुत कुछ आधार निर्भर करता है। असभ्य व्यवहार से वैयक्तिक और सामाजिक दोनों ही विकास अवरुद्ध हो जाते हैं। ऐसे आचरण करने वालों को बदले में उपेक्षा, असहयोग और अपमान जैसी कटुता ही हाथ लगती है। हर परिस्थिति में ये घाटे का सौदा होता है। क्रोध, आवेश और असभ्य आचरण सबसे पहले स्वयं को क्षति पहुंचाता है, साथ ही दूसरों के स्वाभिमान को कुचलकर विद्रोह और बैर भाव का एक नया संकट खड़ा कर देता है। हम सभी घटनाचक्र और परिस्थितियों की उपज हैं, और वातावरण, संस्कार, शिक्षा और स्वभाव के कायल हैं। ये सही है कि हमें अपने शत्रु से घृणा न कर उस पर दया करनी चाहिए और ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमें उसके जैसा नहीं बनाया। अपने शत्रु की निंदा करने और उसके प्रति विरोध और प्रतिशोध की भावना रखने की बजाय हमें चाहिए कि हम उसके प्रति क्षमा, सहानुभूति और सहयोग की भावना रखें और उसके प्रति उसके कल्याण के लिए प्रार्थना करें। जो व्यक्ति अपने आप को बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके विषय में सोच विचार के लिए एक भी पल नष्ट न कीजिए। ये गुण हमारे व्यक्तित्व के आभूषण हैं और हमें इन्हें व्यवहार में लाना चाहिए। मनीषियों और विद्वानों का मानना है कि व्यवहार सदैव विनम्र और शालीन होना चाहिए। सभी के साथ मधुरता, सादगी और सज्जनता का व्यवहार करना चाहिए। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार न करें जो स्वयं पसंद नहीं है। हर व्यक्ति दूसरों के साथ नम्र व्यवहार करे जैसा कि आप अपने लिए औरों से अपेक्षा करते हैं। इसी सत्य को शिष्टाचार, सभ्यता और नागरिकता के नाम से जाना जाता है। ये मानव का सर्वश्रेष्ठ जीवन मूल्य और उसकी अनमोल संपदा है। जिसमें यह भावना जितनी अधिक होगी, वो उतना ही शिष्ट, शालीन और सभ्य माना जाएगा।
1: चिंतन के अंतर्गत अभी आप सुन

रहे थे शिष्टाचार के संबंध में विचार। वाचक स्वर था अनिल भारती का। एफएम 100.5 मेगाहर्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सर्वप्रथम मातृभूमि को नमन करते हुए सुनते हैं ये मातृवंदना।

मातृवंदना की बात आइए, देवों में प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश का सुमिरन करते हैं, सुनते हैं अनुराधा पौडवाल के स्वर में ये गणेश चालीसा।

रिमन इस संसार में संबंध मुक्त करने वाले भी हैं और बांधने वाले भी हैं, लेकिन इनमें से केवल परमार्थ के लिए किया गया संबंध ही मुक्त करने वाला है। इसलिए बेहतर है कि निष्काम भाव से सत्कर्म कर और प्रभु भक्ति कर।

अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह और साथियों के स्वर में ये भक्ति रचना। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। दुख हारिणी पापनाशिनी मंगल करनी मुक्तिदाता माँ गंगे का सुमिरन सुखदायी है, जिसके कल कल बहते जल के स्पर्श मात्र से अपार सुख और आनंद की अनुभूति होती है। ऐसा ही सुखमय एहसास होता है गंगा गीत से। सुनते हैं हेमंत पाठक के स्वर में ये गंगा गीत।

समोसर मेजनाथ के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना समाप्त हुआ। एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस गान का संगीत पदपाठ।

पक्षीराज गरुड़ को अपने पूर्व जन्मों का वृत्तांत सुनाते हुए काकभुशुंडी ने बताया कि शायद ही कोई ऐसी योनि होगी जिसमें उन्होंने जन्म नहीं पाया। अपने अनेक जन्मों में उन्होंने योग, जप, तप, दान, पुण्य सभी कुछ किया। कलयुग में उनका जन्म अयोध्या के एक शूद्र कुल में हुआ। उस जन्म में वे मन, वचन और कर्म से भगवान शिव के आराधक थे। शिव भक्त होने का उन्हें मात्र अभिमान ही नहीं था, बल्कि वे अन्य सभी देवताओं की निंदा भी करते। कलयुग में धर्म के विरुद्ध आचरण होता है। डींग मारने वाले पंडित और दंभी व्यक्ति संत कहलाते हैं। स्त्री वश में होकर व्यक्ति मदारी के बंदर की तरह नाचता है। काम, क्रोध, लोभ और मोह, ये सब लोगों के गुण समझे जाते हैं। शिष्य गुरु के उपदेश के अनुसार आचरण नहीं करता। स्वयं गुरु भी ज्ञान दृष्टि रहित होता है। तनिक से लाभ के लिए लोग गुरु की हत्या तक कर डालते हैं। ये है कलयुग की विशेषता।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान का संगीत पद पाठ। कलाकार थे सुरेश वाडकर। एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज दिन भर में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। रात्रि 9:15 पर स्पोटलाइट, रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय युवा पत्रिका, रात्रि 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये सभी कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। सुबह 8:30 पर सुनिएगा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष के उपलक्ष्य में दिन में 3:02 पर सुनिएगा हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार श्री संजीव कंडवाल से संकल्प मिश्रा की बातचीत। समय याद रखिएगा दिन में 3:02। साप्ताहिक कार्यक्रम आपका पत्र मिला आप सुन सकते हैं रात्रि 8 बजे। दोपहर 12:30 पर बहनों के लिए कार्यक्रम होगा महिला जगत, जिसके अंतर्गत बहनें सुनेंगी श्रीमती कुसुम रावत की वार्ता। विषय रहेगा घर आए मेहमानों का स्वागत कैसे करें। साथ ही बहनें सुन पाएंगी ब्यूटी टिप्स। युवा साथियों के लिए युवाणी कार्यक्रम होगा शाम 5:10 पर। पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत होगा संध्या 5:45 पर, जिसके अंतर्गत श्रोता सुनेंगे श्री हरेंद्र नेगी से कविता पाठ। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 7 बजे सुनिएगा लोकगीतों व रागनियों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी। शाम 4:02 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं डॉक्टर निर्मल पांडे का ख्याल गायन। सुबह 7:30 पर सुनिएगा शैल संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे जगत राम वर्मा और साथियों से जौन सारे लोकगीत। लोक संगीत के कार्यक्रम में सुभाष चंद्र और साथियों की गायी रागिणी आप सुन पाएंगे सुबह 10:35 पर। दोपहर 12:12 पर सुगम संगीत के अंतर्गत सुनिएगा कव्वाली कलाकार।

0: होंगे साजन बाबू का वालू साथी। सुगम संगीत के ही कार्यक्रम में रात्रि 8:15 पर सुनिएगा पुरुषोत्तम दास जलोटा के गाए भजन। सुबह 7:10 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम गीतों की मोती और फिल्म संगीत का आनंद आप ले पाएंगे। सुबह 9:00 10:02 पर दिन में 11:00 1:15 पर 2:30 पर सैनिकों के लिए कार्यक्रम में 3:15 पर शाम 4:30 पर 7:40 पर रात को 8:30 पर। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को अब आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहः नूतनस्य क्वाड्रिपार्टाइड सिक्योरिटी ग्रिड इत्यस्य प्रवर्तनेन सीमा प्रबंधने प्रमुखस्य परिवर्तनस्य घोषणाम् अकरोत्। सः अवदत् यत् अस्माकं सीमायाः रक्षणम् अवैध प्रवासस्य निर्मूलनं च राष्ट्रस्य जनसांख्यिक्याः रक्षणाय महत्वपूर्णमस्ति। सः ह्यः गुजरातस्य भुजनगरे भारत पाकिस्तान सीमायां सामरिकदृष्ट्या महत्वपूर्णानां G7 तथा G13 बॉर्डर आउटपोस्ट इत्येतेषाम् उद्घाटनानन्तरं सैनिकान् जनसमूहं च सम्बोधयन् आसीत्।
2: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: म्यांमार देशस्य राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग इत्येषः अद्य प्रातः 5-दिवसीय भारत यात्रायां बिहारस्य गयानगरं सम्प्राप्स्यति। तेन सह नैके मन्त्रिमण्डलस्य मन्त्रिणः वरिष्ठाधिकारिणः व्यापारनेतारः उच्चस्तरीय प्रतिनिधिदलं च भविष्यति। राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग वर्यस्य एषा प्रथमा भारत यात्रा भविष्यति। अद्य अपराह्ने राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग इत्येषः नवदिल्ल्यां प्राप्स्यति। सः सायंकाले विदेशमन्त्रिणा डॉ एस जयशंकरेण सह मेलनं करिष्यति। श्वः म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः म्यांमार भारत व्यापार मञ्चे भागं ग्रहीष्यति इत्यपेक्षास्ति। सोमवासरे राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग वर्यः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह द्वयोः देशयोः मध्ये ऐतिहासिकं सम्बन्धं सुदृढं कर्तुं चर्चां करिष्यति। सर्वकारः अवदत् यत् देशे पेट्रोल डीजल LPG इत्येतेषां पर्याप्तः भण्डारः अस्ति। सर्वे शोधनागाराणि इष्टतमस्तरे एव प्रचलन्ति। नवदिल्ल्याम् अन्तर्मन्त्रालयीय मन्त्रिमण्डलस्य विवरणं सम्बोधयन्ति पेट्रोलियम मन्त्रालयस्य संयुक्त सचिवा सुजाता शर्मा इत्येषा अवदत् यत् प्राकृतिक गैस इत्यस्य उत्पादनं सर्वकालिकोच्चतमस्तरे अस्ति यत् प्रतिदिनं LPG इत्यस्य 290,000 टन परिमितम् अस्ति। श्रीमती शर्मा सूचितवती यत् कस्यामपि LPG वितरण संस्थायां शुष्कतायाः सूचना न प्राप्ता। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रिणा धर्मेन्द्र प्रधानेन समग्र शिक्षाभियानस्य अन्तर्गतं निधिप्रसारणस्य तस्य उपयोगस्य च विषये विस्तृत समीक्षा सभायाः अध्यक्षता कृता। यस्याः लक्ष्यं समग्र शिक्षा 3.0 अधिकं दक्षं पारदर्शकं तथा परिणाम अभिमुखीकरणम् आसीत्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्रीप्रधानः अवदत् यत् समग्र शिक्षाभियानं PM पोषणम् उल्लासः PM श्री इत्यादीनां प्रमुखयोजनानां एकीकृतपद्धत्याः प्रसारणम् अस्मिन्नेव वर्षे आरभ्यते। सः अवदत् यत् एतेन विद्यालयीय शिक्षा व्यवस्थायां बृहत्तरः समन्वयः प्रभावश्च सुनिश्चितः भविष्यति। केन्द्रीय कृषि मन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अवदत् यत् कृषकाणां कृते बीजानाम् उपलब्धता सुनिश्चेतुं चतुस्सप्ततिसहस्राधिकैकलक्ष क्विंटल परिमितस्य राष्ट्रिय बीज संरक्षणस्य स्थापना कृतास्ति। सः ह्यः नवदिल्ल्याम् अस्य वर्षस्य खरीफ अभियानस्य कृते कृषि विषयकस्य राष्ट्रिय सम्मेलनस्य द्वितीय दिने प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयनासीत्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतसायं महाराजा यादविन्द्र सिंह अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडांगणे न्यू चण्डीगढ़ नगरे महत्वपूर्णे क्वालिफायर द्वितीय स्पर्धायां गुजरात टाइटन्स दलेन राजस्थान रॉयल्स दलं सप्तस्तोभैः पराजितम्। अधुना गुजरात टाइटन्स दलं श्वः रविवासरे अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे निर्णायक स्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह स्पर्धिष्यति इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर दो नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
2: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
3: गृहमंत्री ने ड्रोन रडार निगरानी टावर अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति के कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कल कहा कि तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एज एआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टि

दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये स्वर था अरमान मलिक का। फिल्म का नाम था गुंजन सक्सेना दिकार की गर्ल। गीत था कौशल मुनीर का और संगीत अमित त्रिवेदी का था।
1: Future proof your career with UPES Dehradun, India's AI first university. Choose from 100 plus AI integrated programs across engineering, business, law, design, humanities, and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 30th May. Apply now at upes.ac.in.
2: Future proof your career with UPES, India's AI first university.

0: University. Choose from 100 plus AI integrated programs across engineering, business, law, design, humanities and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 30th May. Apply now at upes.ac.in.
1: गीतों की मोती कार्यक्रम का ये है अगला गीत. आवाजें हैं लता मंगेशकर और आशा भोसले की. फिल्म का नाम है उत्सव. गीतकार है वसंत देव और संगीतकार लक्ष्मीकांत.

आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतों की मोती एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 7:20 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं गीता नेगी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के प्रांतीकरण के लिए नई नीति बनाई जाएगी। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने एक माह में प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान 2026 में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भाग लिया। उत्तराखंड में खरीफ सत्र की तैयारियां पूरी होने और जैविक खेती को बढ़ावा देने की जानकारी दी। चमोली की नीति घाटी में कल से दो दिवसीय नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का आयोजन होगा। सीमा पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित प्रतियोगिता में देश विदेश के धावक हिस्सा लेंगे। और हरिद्वार में कांवड़ मेले की तैयारियां तेज। जिलाधिकारी ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में संचालित राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के प्रांतीयकरण के लिए नई नीति बनाई जाएगी। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर एक माह के भीतर कैबिनेट में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। देहरादून में आयोजित शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में डॉ. रावत ने कहा कि नई नियमावली लागू होने के बाद उन अशासकीय विद्यालयों के प्रांतीयकरण का मार्ग प्रशस्त होगा जिनकी प्रबंधन समितियां शासन को राजकीयकरण के प्रस्ताव उपलब्ध कराएंगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अशासकीय विद्यालयों के प्रांतीयकरण को लेकर कुछ मामलों के न्यायालय में लंबित होने के कारण वरिष्ठता और अन्य लाभों से जुड़े मुद्दे सामने आए हैं। ऐसे में पारदर्शी और व्यवहारिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नई नियमावली तैयार की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित नियमावली में विद्यालय की भूमि की उपलब्धता और स्वामित्व, छात्र संख्या, कार्मिकों की वरिष्ठता, पदों की आवश्यकता तथा सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय व्यवहार जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान 2026 के समापन कार्यक्रम में उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भाग लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित इस दो दिवसीय सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्रियों, अधिकारियों और कृषि विशेषज्ञों ने खरीफ फसल की तैयारियों और कृषि क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। एक रिपोर्ट।
1: सम्मेलन को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड में खरीफ सत्र 2026 के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं तथा बीज, खाद और उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में अधिकांश किसान लघु और सीमांत श्रेणी के हैं, इसलिए सरकार क्लस्टर खेती को बढ़ावा दे रही है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उर्वरकों की खपत कम करने और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार जैविक और प्राकृतिक खेती पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि परंपरागत कृषि विकास योजना और नमामि गंगे योजना के माध्यम से राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा दिया गया है। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 2.30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जैविक खेती के अंतर्गत है। वहीं जैविक उत्पादों के विपणन के लिए विभिन्न पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर 337 जैविक आउटलेट स्थापित किए गए हैं। श्री जोशी ने कहा कि सम्मेलन में हुए विचार विमर्श से किसानों की उन्नति और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए नई दिशा मिलेगी। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार।

0: अर्कक्ष से अमित सुंद्रियाल।
1: देहरादून के दून विश्वविद्यालय में कल अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स अकादमी मिड टर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र और इथोपिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान समकालीन वैश्विक चुनौतियों और उनके समाधान पर विचार विमर्श किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन, दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल, ऑब्जर्वर रिसर्चर फाउंडेशन के उपाध्यक्ष प्रोफेसर हर्ष वी पंत तथा विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव एवं ब्रिक्स उप शेरपा शंभू अलहक्की ने किया। सम्मेलन की थीम लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के निर्माण पर केंद्रित रही, जो वर्ष 2026 के लिए भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की केंद्रीय थीम है। सम्मेलन में हरित औद्योगिक परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु वित्त जैसे विषयों पर विशेष चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न देशों के विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं ने अपने विचार साझा किए तथा सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण और वैश्विक सहयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। सम्मेलन में उत्तराखंड के विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों के शिक्षाविदों तथा शोधार्थियों ने भी सक्रिय भागीदारी की। भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शन में राजकीय इंटर कॉलेज बागेश्वर और एसबीआई आरसीटी में वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में विद्यार्थियों, शिक्षकों, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और आम नागरिकों को बैंकिंग सेवाओं, डिजिटल लेनदेन और साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। शिविर में प्रतिभागियों की केवाईसी की अनिवार्यता, री केवाईसी प्रक्रिया, केंद्रीय केवाईसी और सुरक्षित बैंकिंग व्यवहार की जानकारी दी गई। साथ ही डिजिटल लेनदेन के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों तथा फर्जी कॉल, मैसेज और संदिग्ध लिंक के माध्यम से होने वाले साइबर ठगी से बचाव के उपाय बताए गए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इसे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: चमोली जिले की नीति घाटी में कल से 2 दिवसीय नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड पर्यटन विभाग और भारतीय सेना के समन्वय से आयोजित यह प्रतियोगिता सीमा पर्यटन को बढ़ावा देने और सीमावर्ती क्षेत्रों को नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। एक रिपोर्ट।
0: अल्ट्रा रन में 75 किलोमीटर, 42 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की विभिन्न श्रेणियां शामिल हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले धावकों को ऊंचाई, कम ऑक्सीजन और बदलते मौसम जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना होगा। आयोजन में भारतीय सेना की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। सेना द्वारा आवास, चिकित्सा सहायता, मार्ग सुरक्षा जैसी व्यवस्थाओं में सहयोग दिया जा रहा है, जिससे प्रतियोगिता का सुरक्षित और सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सके। इस आयोजन से स्थानीय स्तर पर पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसके चलते होम स्टे, परिवहन, भोजन और गाइड सेवाओं की मांग बढ़ेगी, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। आयोजन के दौरान पर्यावरण संरक्षण और सतत पर्यटन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने संबंधी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। फिलहाल आयोजन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं और प्रतिभागियों के साथ साथ स्थानीय समुदायों में भी इसे लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से अमित सुंद्रियाल।
1: आगामी कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को सड़कों की मरम्मत और सड़क सुरक्षा नियमों की कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कांवड़ मेले से पहले सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने पर जोर दिया। सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटना न्यूनीकरण अनुश्रवण समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो अधीन आने वाली सभी सड़कों पर पेचवर्क और मरम्मत कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जा रहा है। इसी दिन वर्ष 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उदयमर्दन का प्रकाशन

शुरू किया था। यह दिवस हिंदी पत्रकारिता के योगदान, उसके इतिहास और समाज में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्मरण करने का अवसर है। हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता लोकतंत्र की सशक्त आवाज रही है और समाज में जन जागरूकता बढ़ाने और जनभावनाओं को अभिव्यक्ति देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता वर्तमान समय में समाज और शासन के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु के रूप में कार्य कर रही है। वहीं सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने भी हिंदी पत्रकारिता दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि निष्पक्ष, विश्वसनीयता और जनहित की भावना आज भी पत्रकारिता की मूल आत्मा है। उन्होंने कहा कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना ही सफल पत्रकारिता की पहचान है और ये समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का भी प्रभावी माध्यम है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के प्रांतीकरण के लिए नई नीति बनाई जाएगी। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने एक माह में प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान 2026 में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भाग लिया। उत्तराखंड में खरीफ सत्र की तैयारियां पूरी होने और जैविक खेती को बढ़ावा देने की जानकारी दी। चमोली की नीति घाटी में कल से दो दिवसीय नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का आयोजन होगा। सीमा पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित प्रतियोगिता में देश विदेश के धावक हिस्सा लेंगे। और हरिद्वार में कांवड़ मेले की तैयारियां तेज। जिलाधिकारी ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। सुबह के 7:31 हुए हैं। लीजिए शैल संगीत के कार्यक्रम में सुनिए डॉन सारी लोकगीत। कलाकार हैं जगत राम वर्मा और साथी।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासन एक

0: व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
0: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: जगतराम वर्मा और साथियों के गाए से जौनसारी लोकगीत के साथ ही शैल संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। इस समय सुबह के 8 बजने को हैं। अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के,
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दिन 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
6: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, भारत सरकार ने excise duty कम की, so these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies को workout करने के लिए कहा है कि LPG का जो reserve है, that should be minimum 30 days with them, and they are working on it. And similarly for crude also, we are working.
5: संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरक केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है।
7: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
5: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री महाजन ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जा रही हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6 चरण के आंकड़े कल जारी कर दिए। इसके अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में भारत ने तीव्र प्रगति की है। सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव 88.6% से बढ़कर 90.6% हो गए हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 पर बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 12 से

0: 3% पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान म्यांमा और भारत के बीच आपसी संबंधों से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्सुक है।
1: म्यांमा के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
2: दिस इज ऑफिशियल विजिट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार।
0: इस यात्रा के अंतर्गत म्यांमा के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत से संबंधित वार्ताओं और शहर के विभिन्न स्थलों पर भ्रमण के लिए 2 जून को मुंबई भी जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
3: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्ण तया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के 2 सप्ताह में होगी। महाधिवक्ता तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि सरकार युवाओं के लिए चिंतित है और ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आगे ऐसी कोई चूक न हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पंजाब नगर निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1977 वार्ड में से 958 वार्ड जीत लिए हैं। कांग्रेस को 397, शिरोमणि अकाली दल SAD को 192 और भाजपा को 172 वार्ड में जीत हासिल हुई है। बहुजन समाज पार्टी को केवल 7 वार्ड मिले। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 251 वार्ड जीतकर 3 स्थान हासिल किया। गोवा आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1987 में इसी दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था।

0: और वो भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज पणजी स्थित कला अकादमी में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे।
1: गोवा में आज आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह राज्य की पिछले 4 दशकों के उल्लेखनीय प्रगति और विकास यात्रा को रेखांकित करेगा। 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद गोवा दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके बाद 1967 में हुए ऐतिहासिक जनपद संग्रह ने गोवा की अलग पहचान को बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 1987 में कोंकणी को राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद राज्य गठन का रास्ता साफ हुआ और 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। आज के समारोह में प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही एक कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण, पुरस्कार वितरण और नागरिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न पहलों की शुरुआत भी की जाएगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति गोवा स्थित CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारेक्काल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज बहुत तेज बारिश की आशंका जताई है। विभाग ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि की भी आशंका व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस की टीम प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। हांगकांग में चल रही एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए अब तक कुल 8 पदक अपने नाम किए। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। कल प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारतीय एथलीटों ने 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाले निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद कनक। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आज के अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने सर्वोच्च न्यायालय का बयान दिया है, जवाबदेही तय होने तक नहीं रुकेंगे पेपर लीक मामले। देशबंधु और नवभारत टाइम्स ने CBSE की 12वीं की आंसर शीट भी डिजी लॉकर में भेजे जाने की जानकारी दी है। पत्र लिखता है, यहीं से करा सकेंगे रिवैल्यूएशन। शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास करने की अनिवार्यता से छूट देने का सर्वोच्च न्यायालय का इंकार भी अनेक अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, समय सीमा 1 साल बढ़ी। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है। पत्र ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, सरकारी शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए TET पास करना ही होगा। जनसत्ता ने कर्नाटक में कांग्रेस की बैठक आज होने का समाचार देते हुए लिखा है, DK शिवकुमार को चुना जाएगा नेता। पंजाब केसरी ने सिद्धारमैया की सिद्धि शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखा है, कर्नाटक में जितनी शालीनता और शांति के साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है उसे भारतीय लोकतंत्र की जीवंत ताकत कहा जा सकता है। दैनिक जागरण ने घरेलू उड़ानों में कटौती से हवाई किराया 30% तक बढ़ने का समाचार दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी भी कई अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, अटका मॉनसून 7 दिन के बाद देगा दस्तक, 10% कम होगी बारिश। राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, बेवफा मॉनसून। दैनिक भास्कर लिखता है, इस साल सूखे का खतरा। हालांकि पत्र ने बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर पूर्व में अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का LPG भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

प्रोग्राम की सभी श्रोताओं को नमस्कार। कल्पना पंकज की ओर से। श्रोताओं, आज 30 मई है। आज के दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। श्रोताओं, आज के दिन 30 मई 1826 को हिंदी भाषा के पहले समाचार पत्र उदंत मातंड का प्रकाशन आरंभ हुआ था। इसका प्रकाशन पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा कोलकाता से आरंभ किया गया था और इसके बाद अनेक समाचार पत्रों का प्रकाशन आरंभ हुआ। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, जो जनता तक सत्य और निष्पक्ष समाचार पहुंचाने का दायित्व निभाता है। समाज के हर वर्ग से जुड़ी जानकारी आम लोगों के सामने लाता है और ये समाचार पत्र हिंदी भाषा में होने के कारण एक बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचते हैं। श्रोताओं, हिंदी पत्रकारिता ने समाज के उत्थान के साथ साथ देश की आजादी में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देशभक्ति समाज में फैलाने और जागरूकता लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जनता को स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित किया। देश के स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों, देशभक्तों ने पत्रकारिता को माध्यम बनाकर अपने लेख और विचारों के माध्यम से जनता में चेतना जगाई। श्रोताओं, पत्रकारिता केवल समाचार ही नहीं देते बल्कि समाज सुधार में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जिससे अनेक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। साथ ही जनता को जागरूक करते हैं और समाज के नवनिर्माण के लिए जागरूकता फैलाते हैं। आज समाचार पत्रों और पत्रकारिता का स्वरूप चाहे बदल गया हो, जैसे कि हम जानते हैं कि जहां पहले समाचार पत्र घर घर पहुंचा करते थे, वहीं आज टीवी, रेडियो, इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंच रहे हैं, जिससे सभी तक इसकी पहुंच और उपलब्धता आसान हुई है। और ऐसे में जैसे जैसे ये तरक्की किया है, ऐसे में इनके सामने चुनौतियां भी बहुत आई हैं। लेकिन आज पत्रकारिता के लिए हमेशा हमें ध्यान रखना है कि पत्रकारिता हमेशा सत्य और निष्पक्ष और ईमानदारी से होनी चाहिए, तभी पत्रकारिता दिवस को मनाने की सार्थकता होगी और पत्रकारों की मेहनत कामयाब होगी। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस में आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए सुनते हैं कार्यक्रम में ये पहला गीत।

जिंदगी अनमोल है। दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनें। चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट जरूर लगाएं। ओवर स्पीड, गलत पार्किंग और नशे में ड्राइविंग सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है। वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। अगर कहीं दुर्घटना दिखे तो घायल व्यक्ति की मदद करें।

0: और गुड स्मार्टियम बने। सुरक्षित सड़क, सुरक्षित जीवन।
1: संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा हल्द्वानी द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोता सुन रहे कार्यक्रम नमस्कार देहरादून FM 100.5 यानी 100.5 MHz पर। और आइए श्रोता कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि अखबारों की सुर्खियों में आज क्या है देश विदेश की जानकारी। देश में जल्द देख सकते हैं प्लास्टिक के नोट, सरकार उपनल संविदा कर्मियों को न्यूनतम वेतन देने को सशर्त तैयार। देश सेवा की आज शपथ लेंगे 1000 से अधिक अग्निवीर। केदारनाथ मंदिर में VIP दर्शन देने वालों को देने होंगे 1100 रुपए। देहरादून में 80% मतदाताओं की मैपिंग पूरी। जलवायु परिवर्तन पर देहरादून में मंथन। दून विश्वविद्यालय में आयोजित सम्मेलन में 11 देशों के विशेषज्ञों ने रखा अपना पक्ष। स्कूल छोड़ चुके बच्चों को अब मिलेगा शिक्षा का दूसरा मौका। सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के प्रांतीयकरण को बनेगी नई नीति। 21 घंटे में दूसरी बार बरसे मेघ, भीषण गर्मी से मिली राहत। आंधी और बारिश से आम लीची को भारी नुकसान। देहरादून का एक QI 100 से नीचे पहुंचा। और अब मौसम संबंधी जानकारी। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज शनिवार को देहरादून में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, वहीं कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश अथवा बौछारें पड़ने की संभावना है, जबकि अधिकांश समय मौसम शुष्क बने रहने का अनुमान है। ये थी मौसम संबंधी जानकारी। और अब जानते हैं इतिहास के पन्नों में कि आज 30 मई क्यों है खास। श्रोताओं, 1922 में आज ही के दिन वाशिंगटन DC में लिंकन स्मारक समर्पित किया गया था। 1826 में कलकत्ता से पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा देश और दुनिया के पहले हिंदी समाचार पत्र उदंड मार्तंड का प्रकाशन शुरू हुआ था। इसी स्मृति में हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। 1856 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे की सहायता से ग्वालियर पर आक्रमण किया था। 1987 में गोवा को भारत के राज्य का दर्जा मिला और देश का 26वां राज्य घोषित हुआ। 1919 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौट आई। 1935 में प्रख्यात सितारवादक देबू चौधरी का जन्म हुआ था। 1991 में स्वतंत्रता आंदोलन के पुरोधा और मानवता के पुजारी पूर्व गृह मंत्री उमाशंकर दीक्षित का निधन हुआ था। और वर्ष 2023 में IPL 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स टीम विजेता बनी थी। ये थी इतिहास के पन्नों से जानकारी। और आइए बढ़ते हैं फिल्म संगीत के इस अगले गीत की ओर।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: Future proof your career with UPES Dehradun, India's AI first university. Choose from 100+ AI integrated programs across engineering, business.

0: AIR at 90.
1: Future-proof your career with UPES, India's AI-first university. Choose from 100-plus AI-integrated programs across engineering, business, law, design, humanities, and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 30th May. Apply now at upes.ac.in.
2: श्रोताओं, हिंदी फिल्म के एक हास्य कलाकार, अभिनेता और राजनेता हैं परेश रावल, जिनका जन्म आज के दिन 30 मई 1955 को हुआ था। इनका पूरा नाम है परेश दहिया रावल। परेश की पढ़ाई नरसी गुंजी कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स से हुई, साथ ही 22 वर्ष की आयु में इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग के रूप में काम करना आरंभ कर दिया और इसके लिए ये अहमदाबाद से मुंबई आते जाते रहते थे, लेकिन एक्टिंग के शौक के चलते ये थिएटर भी किया करते थे। लेकिन जब थिएटर किया करते थे तभी से इन्होंने सोच लिया कि करियर तो बनाना है तो फिल्मों में ही बनाना है, और यही कारण है कि इन्होंने फिल्मों की ओर रुख किया और अपने करियर की शुरुआत की 1985 की फिल्म अर्जुन से, जिसमें इन्होंने एक सहायक अभिनेता की भूमिका निभाई थी। और इसके बाद श्रोताओं, इन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया और लगातार फिल्मों में अभिनय करते चले गए और इन्हें प्रसिद्धि मिलती चली गई, जिनमें फिल्में मुख्य रही हैं हेरा फेरी, साथ ही OMG ओ माई गॉड, और साथ ही हेरा फेरी के अलावा कई ऐसी फिल्में रही हैं जैसे कि कब्जा, किंग अंकल, राम लखन और इस तरह की कई फिल्मों में ये नजर आए, तो इन्होंने लगातार प्रसिद्धि प्राप्त ये करते चले गए। श्रोताओं, परेश रावल ने हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु जैसी फिल्मों में अभिनय किया है और साथ ही ये फिल्मों के साथ साथ समाज सेवा और राजनीति से भी जुड़े रहे हैं। इन्होंने फिल्मों में 240 से अधिक फिल्मों में अब तक अभिनय किया है और फिल्मों में योगदान के लिए इन्होंने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और साथ ही फिल्म फेयर जैसे पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। वर्ष 2014 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। श्रोताओं, इन्होंने ऐसी फिल्मों में किरदार निभाए हैं जो हर वर्ग के लोग पसंद करते हैं, और आज इनके जन्मदिन पर इन्हें बहुत सी बधाइयां देते हुए सुनते हैं इनकी फिल्म से ये गीत।

श्रोतों, इसी के साथ आज का कार्यक्रम यही पर संपन्न हुआ और चलते चलते आपसे इतना ही कहेंगे कि आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और सुनते रहें 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। और अब कार्यक्रम संपन्न करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार देहरादून।

यथा सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार देहरादून एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं, आइए सुनते हैं सदाबहार फिल्म संगीत।

ये स्वर था लता मंगेशकर का, फिल्म का नाम था सौतन। गीतकार थी सावन कुमार और संगीतकार थी उषा खन्ना। श्रोताओं, जिंदगी बेहद खूबसूरत है, ये खुशनुमा एहसास है, जिसमें सुख है तो दुख भी, तभी तो जिंदगी खास है। सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ें। फिल्म का नाम

0: आकाशवाणी एट 90।
1: श्रोता सुन रहे हैं सदाबहार फिल्म संगीत एफएम 100.5 यानी 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। श्रोताओं, कहते हैं कि जिंदगी छोटी ही सही पर अच्छी होनी चाहिए, लेकिन श्रोताओं, अच्छा बनने के लिए कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इसका आकलन हम खुद भी कर सकते हैं। कभी भी अकेले बैठकर अपने बारे में खुद सोच सकते हैं कि आप कितने अच्छे हैं। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की युगल सर फिल्म का नाम आरती।

अगर तुम न होते। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म से गीत किशोर कुमार की आवाज में। गीत था गुलशन बाबरा का और संगीत आर डी बर्मन का था।

आए दिन बहार के, अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म से गीत। आवाज थी आशा भोसले की, गीतकार थी आनंद बख्शी और संगीतकार थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। श्रोता 9:27 हुए हैं, आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्म संगीत आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, फिल्म का नाम है अभिलाषा। बोल है मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत आर डी बर्मन का है।

0: ये आकाशवाणी है। आकाश में तैरती ये उद्घोषणा 90 सालों का सफर पूरा कर रही है, बल्कि ये कहें ये आकाशवाणी की अनंत यात्रा है।
1: 1936 से शुरू हुई रेडियो यात्रा आज सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क के रूप में जानी जाती है। स्पूल टेप रिकॉर्डिंग से गुजरते हुए आकाशवाणी की वाणी अब हुई टोटल डिजिटल।
0: देश के 92% क्षेत्रफल में 99% लोगों तक पहुंच है आकाशवाणी की।
1: डिजिटल प्लेटफॉर्म वेव ओटीटी और सोशल मीडिया पर भी आकाशवाणी ने अपनी धमक बनाई है।
0: शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, एफएम, ध्वनि तरंगों से चलते हुए आज आकाशवाणी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से वैश्विक स्तर पर पहुंच गया है। 23 भाषाओं और 184 से ज्यादा बोलियों में प्रसारण के जरिए आकाशवाणी लोक संस्कृति का संवाहक बना हुआ है।
2: जो जस
1: सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से शुरू हुई आकाशवाणी की इस प्रसारण यात्रा में हमारे असंख्य श्रोता इन 9 दशक में हमारे साथ हैं।
0: आपका धन्यवाद। इस प्रसारण यात्रा में आपके साथ हमेशा आकाशवाणी देहरादून।

ये स्वर थे लता मंगेशकर और मुकेश के, फिल्म का नाम था छलिया। श्रोतो 9:37 हुए हैं, सदाबहार फिल्म संगीत प्रसारित किए जा रहे हैं 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वर, फिल्म का नाम है जोर मचाए शोर।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक, हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में गीत, फिल्म का नाम था आनंद। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने से पहले हम आपको याद दिला दें, दोपहर 12:30 पर महिला जगत कार्यक्रम में बहने सुनेंगी श्रीमती कुसुम रावत की वार्ता। विषय रहेगा घर आए मेहमानों का स्वागत कैसे करें। साथ ही बहने सुन पाएंगी ब्यूटी टिप्स। दिन में 3:02 पर हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर सुनिएगा वरिष्ठ पत्रकार श्री संजीव कड़वाल से बातचीत। समय याद रखिएगा दिन में 3:02। युवा साथियों के लिए युववाणी कार्यक्रम शाम 5:10 पर होगा। पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत होगा संध्या 5:45 पर, जिसके अंतर्गत आज श्रोता सुनेंगे श्री हरेंद्र नेगी से कविता पाठ। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 7:00 सुनिएगा लोकगीतों व रागनियों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो लोकमंजरी। साप्ताहिक कार्यक्रम आपका पत्र मिला आप सुन सकते हैं रात्रि 8:00। श्रोतम, ये थी कार्यक्रम संबंधी संक्षिप्त जानकारी। आइए आपको सुनवाते हैं आशा भोसले की आवाज में गीत, फिल्म का नाम है सावन की घटा। बोल है SH बिहारी की और संगीत OP नैयर का है।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: श्रोताओं, धीरे धीरे चलते रहे तो मंजिल भी मिल जाएगी। इसी तरह जिंदगी में हंसते मुस्कुराते रहें तो खुशियां भी खूब मिलेगी। आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते हमारे साथ जुड़े रहें 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के देहरादून के साथ। कार्यक्रम का ये है अंतिम गीत। आवाज ही लता मंगेशकर और किशोर कुमार की फिल्म का नाम है गाइड। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार एच डी।

0: फिल्म गाइड की इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। सुबह के 10 बज रहे हैं, आइए सुनते हैं FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप गीता नेगी से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। प्रदेश में सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के प्रांतिकरण के लिए नई नीति बनाई जाएगी। शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने एक माह में प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान 2026 में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भाग लिया। उत्तराखंड में खरीफ सत्र की तैयारियां पूरी होने और जैविक खेती को बढ़ावा देने की जानकारी दी। चमोली की नीति घाटी में कल से 2 दिवसीय नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का आयोजन होगा। सीमा पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से

0: आयोजित प्रतियोगिता में देश विदेश के धावक हिस्सा लेंगे। हरिद्वार में कांवड़ मेले की तैयारियां तेज, जिलाधिकारी ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। चंपावत में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत टनकपुर में BLA-1 और BLA-2 का प्रशिक्षण आयोजित, मतदाता सूची के त्रुटि रहित और पारदर्शी पुनरीक्षण पर जोर। पिथौरागढ़ में आदि कैलाश यात्रा सीजन को देखते हुए जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए विशेष यातायात प्रबंधन पर जोर। अल्मोड़ा बागेश्वर मोटरमार्ग पर ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त होने से दो लोगों की मृत्यु, हादसे की जांच जारी। भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शन में राजकीय इंटर कॉलेज बागेश्वर और SBI RCT में वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। विद्यार्थियों, शिक्षकों, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और आम नागरिकों को बैंकिंग सेवाओं, डिजिटल लेनदेन और साइबर सुरक्षा के प्रति किया गया जागरूक। और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश और अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में कहीं कहीं बर्फबारी के बाद राज्य के अधिकतम तापमान में गिरावट आने वाले दिनों में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
1: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। 10:02 हुए हैं, लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विद मी योर आरजे चेतन। एक अच्छा रोल मॉडल कैसे बने? क्या आपने कभी ऐसा बॉस के साथ काम किया है जो बहुत ज्यादा दबाव में होने के बावजूद शांत और सकारात्मक रहता हो? शायद आपने ऐसे सहकर्मी के आदर्श माने हो जो हमेशा दूसरों के लिए कुछ ज्यादा ही करता हो। अब विचार करें कि दूसरे आपके व्यवहार को किस तरह देखते हैं। क्या आपको लगता है कि आप अपने आसपास के लोगों के लिए एक अच्छे रोल मॉडल हैं? आपको शायद इसका एहसास न हो, लेकिन आपके कार्य, दृष्टिकोण, नजरिया और नैतिकता संभव आपके टीम के सदस्यों को प्रभावित कर रहे हैं और उनके द्वारा प्रतिबिंबित हो रहे हैं। आज के इस लम्हे प्रोग्राम में हम एक अच्छे रोल मॉडल बनने के लाभों पर चर्चा करेंगे तथा ये भी कि आप एक अच्छे रोल मॉडल बनने के लिए क्या कर सकते हैं। पहले तो ये क्वेश्चन है कि एक रोल मॉडल क्या है, होता कौन है? मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार लोग दूसरों के व्यवहार को देखकर और उनकी नकल करके विकास करते हैं। विशेष रूप से बंडूरे ने पाया कि व्यवहार नीचे की ओर बहता है। दूसरे शब्दों में, एक समूह अपने नेताओं से संकेत लेता है। इसीलिए यदि आप ईमानदारी और खुलेपन जैसे मजबूत गुणों का प्रदर्शन करते हैं तो आप अपने टीम के सदस्यों को भी इसी तरह से व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। लेकिन जो लीडर बुरे व्यवहार का अभ्यास करते हैं या उसे पुरस्कृत करते हैं, वे ऐसे संस्कृति विकसित करने की संभावना रखते जिससे व्यक्ति टीम के हितों से पहले अपने हितों का प्राथमिकता देता है। अपनी टीम के लिए आदर्श बने मेरे दोस्तों। अच्छे रोल मॉडल का अपने आसपास के लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उनका व्यापक सम्मान किया जाता है। संगठन ऐसे नेताओं को चाहते हैं जो दूसरों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करते हैं। इसीलिए अच्छे रोल मॉडल को पदोन्नति के लिए सबसे पहले विचार किया जाता है। उन्हें संगठन में गठबंधन बनाना भी आसान लगता है क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत ब्रांड मजबूत होती है। यदि आप एक अच्छे रोल मॉडल बनने के लिए कदम उठाते हैं, आप संभवतः एक अधिक प्रभावी टीम और व्यवसाय बना पाएंगे और आप अपने करियर को भी बढ़ावा देंगे। अच्छे रोल मॉडल आमतौर पर कुछ ऐसे व्यक्तित्व लक्षण या गुण प्रदर्शित करते हैं जैसे आत्म जागरूकता, सकारात्मकता, विनम्रता, सहानुभूति, व्यवसायिकता और ईमानदारी। आइए इनके बारे में अधिक विस्तार से जानें आज के लम्हे प्रोग्राम में आपके आरजे चेतन से। दोस्तों, आत्म जागरूकता, क्या आप जानते हैं कि आप कार्यस्थल पर क्या भूमिका निभा रहे हैं? आप अपनी आत्म जागरूकता बढ़ाकर इसका पता लगा सकते हैं। ये आपके व्यवहार और दूसरों पर आपके प्रभाव पर ईमानदारी और उत्पादकता से विचार करने की क्षमता है। एक बार जब आप खुद को और अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं तो आप आत्मनियंत्रता और आत्मनियम भी

नकारात्मक लोग उन लोगों को नीचा गिरा देते हैं जिन्हें उनके साथ काम करना होता है। इसके विपरीत सकारात्मक दृष्टिकोण एक ऊर्जावान काम करने वाली टीम भावना विकसित करने में मदद कर सकता है। कोई भी व्यक्ति हर समय खुश नहीं रह सकता, लेकिन आप मुश्किल परिस्थितियों में अवसरों की तलाश कर सकते हैं। इसीलिए इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि आपकी टीम किसी भी स्थिति में क्या कर सकती है, न कि इस बात पर कि वो क्या नहीं कर सकती है, और उन सफलताओं पर निर्माण करने में उनकी मदद करें। अच्छे रोल मॉडल विनम्रता का अभ्यास करता है। जब उन्हें यकीन नहीं होता कि क्या करना है तो वे ईमानदार होता है, सवाल पूछने और सीखने में खुश होता है, वह अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने में सहज होता है, वह जहां भी श्रेय देना चाहिए देता है और वे रैंक या अनुभव के पीछे नहीं छिपता। सहानुभूति ने अपने लोगों की भावनात्मक जागृति को समझना शामिल है। आप ध्यानपूर्वक सुनने का उपयोग करके सहानुभूति विकसित कर सकते हैं, ताकि आप वास्तव में सुन सके और समझ सके कि लोग आपको क्या बता रहे हैं। जितना अधिक आप इस तरह से टीम के सदस्यों की पहचान करने और उनसे जुड़ने में सक्षम होंगे, उतना ही अधिक विश्वास आप बन पाएंगे और वे संबंध उतना ही मजबूत होगा। व्यवसायिकता का प्रदर्शन करने का मतलब है अपने कार्यों और अपने काम को एक उत्कृष्ट मानक पर रखना। इसमें सिर्फ काम पूरा करना ही शामिल नहीं है, ये ईमानदारी और दूसरों के प्रति सम्मान जैसे गहरे व्यक्तिगत गुणों को दर्शाता है। आप अपनी व्यक्तित्व को कुछ सरल कार्यों से प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे समय पर बैठक में पहुंचना, उचित ढंग से कपड़े पहनना और बातचीत करना, तथा विश्वसनीय और कर्तव्यनिष्ठ होना। ईमानदारी का मतलब है सही कारणों से सही काम करना। भले ही इसका मतलब सबसे आसान विकल्प न अपनाना हो, अगर आप ईमानदार और प्रामाणिकता और नैतिक नेतृत्व के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हैं, तो आपकी टीम के सदस्य संभवतः अच्छे टीम वर्क की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता का साथ प्रतिक्रिया देंगे। ईमानदारी के साथ जीना एक अच्छे रोल मॉडल बनने की आधारशील है, क्योंकि ये उन गुणों में से एक है जो व्यक्ति और संगठन अपने नेताओं में सबसे ज्यादा तलाशता है। इस महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारा प्रोग्राम लम्हे सुनते रहिए आपके आरजे चेतन से। आपके पास एक अच्छा रोल मॉडल बनने के लिए जरूरी गुण हो सकते हैं, लेकिन आप इन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रभाव के लिए व्यवहार में कैसे लाएंगे? अपनी टीम के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करना। किसी भी रोल मॉडल के लिए मजबूत संचार कौशल महत्वपूर्ण है। वे आपको उच्च गुणवत्ता वाले कनेक्शन को बढ़ावा देना और विश्वास और सम्मान के आधार पर संबंध बनाने में मदद करेंगे। अपने संगठन के मूल्य का समर्थन करना। अच्छे रोल मॉडल अपने नियुक्त के काम करने के वंचित तरीकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करना और अपने टीम के सदस्यों के व्यवहार को उसके अनुसार निर्देशित करते हैं। उदाहरण के लिए, आप कंपनी के कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी कार्यक्रम के लिए स्वयं सेवक बन सकते हैं। ये किसी सहकर्मी के समावेश और जुड़ाव का समर्थन कर सकते हैं। उन्हें प्रासंगिक कर्मचारी संसाधन समूह में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करके, यदि वे मौजूद हैं, आप किसी भी बुरे व्यवहार से तुरंत और प्रभावी ढंग से निपटना भी सुनिश्चित करेंगे। सहयोगात्मक रूप से काम करना। अच्छे टीम खिलाड़ी अपने अहंकार को किनारे रखते हैं और समूह की भलाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक रोल मॉडल के रूप में ये एक ऐसे रवैया है जैसे आप निश्चित रूप में अपनाएंगे। एक कौशल मैट्रिक्स बनाइए और अपनी और अपने लोगों की ताकत, कमजोरियां और पसंदीदा कार्यशैली का आंकलन करें। फिर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सबसे उपयुक्त टीम की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां सौंपें। आप सभी अधिक सफल होंगे। नवाचार का समर्थन करना। जब नए कौशल हासिल करने और नए तकनीकों को अपनाने की बात आती है तो नेतृत्व करें जो आपके व्यवसाय में मदद करेंगे। एक रोल मॉडल के रूप में यह महत्वपूर्ण है कि आप वक्र से आगे रहें। पहल और रचनात्मक दिखाने वाले लोगों को प्रोत्साहित करें। टीम के सदस्यों को स्वनिर्देशित और सामाजिक सीखने के लिए समय दें और आकांक्षाओं को व्यवहारिक कार्रवाई में बदलने के लिए उपकरणों का उपयोग करें। विद

Very good information. This is Chetan signing off for today in Lamhe program. I'll get back to you in our next segment. Till then, have a great time. Bye, my dear friends. Dosto, आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं. हमारा नंबर है 09515227039. आई रिपीट 09515227039. और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com. आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com. आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए. हमारा सोशल मीडिया हैंडल है spice.lamhe.vanilla. spice.lamhe.vanilla. This program is sponsored and produced by Adventist Media Center.

अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे सुन रही थी। FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। 10:12 हुए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

समीर के शब्दों को संगीत दिया था नदीम शर्वण ने। ये आवाजें थी अलका याग्निक और विनोद राठौड़ की फिल्म का नाम था दीवाना। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गाना। आवाजें हैं उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की, फिल्म का नाम है देवदास। गीतकार है नुसरत बद्र और संगीतकार इस्माइल दरबार।

0: सौरती सूर्य निगम और श्रेया घोषाल की फिल्म का नाम था परिणीता। गीत था स्वानंद किरकिरे का और संगीत शांतनु मोहित्रा का था। श्रोताओं, इसी के साथ फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 10:30 हुए हैं। अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप गीता नेगी से प्रादेशिक समाचार सुनिए।

पिथौरागढ़ में आदि कैलाश यात्रा सीजन को देखते हुए जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने जिले की यातायात व्यवस्था की समीक्षा कर पुलिस प्रशासन और परिवहन विभाग को आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नगर की यातायात व्यवस्था को शीघ्र सुव्यवस्थित किया जाए ताकि स्थानीय नागरिकों और श्रद्धालुओं तथा पर्यटकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। जिलाधिकारी ने कहा कि यात्रा सीजन के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पिथौरागढ़ पहुंच रहे हैं। ऐसे में संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में विशेष यातायात प्रबंधन योजना लागू की जाए

तथा यातायात संचालन को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जाम की स्थिति वाले स्थानों की पहचान कर वहां बेहतर यातायात प्रबंधन किया जाए, साथ ही सड़क किनारे अनियंत्रित पार्किंग, अतिक्रमण और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर क्षेत्र में आवासीय और शहरी विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए विभिन्न निर्माणाधीन और प्रस्तावित परियोजनाओं का निरीक्षण किया गया। सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति डॉ आर राजेश कुमार ने इस दौरान अधिकारियों को सभी कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बागवाला में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित 1872 आवासों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि आवासों का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है और जल्द ही इनका लोकार्पण कर पात्र लाभार्थियों को आवंटन किया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जिन लाभार्थियों ने अभी तक अपना अंशदान जमा नहीं किया है, उनसे शीघ्र धनराशि जमा कराकर आवंटन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित करने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान सचिव ने त्रिशूल चौक से मेडिकल कॉलेज तक प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण कार्य और कलेक्ट्रेट परिसर में निर्माणाधीन विकास पर प्राधिकरण कार्यालय की प्रगति की भी समीक्षा की। देहरादून जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ आशीष चौहान ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पुनरीक्षण कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी पारदर्शिता और त्रुटि रहित ढंग से पूरा किया जाए। देहरादून में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि सभी पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाएं तथा अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत मतदाताओं के नामों का सावधानीपूर्वक सत्यापन कर आवश्यक कार्यवाही की जाए। उन्होंने बीएलओ और सुपरवाइजरों को व्यापक प्रशिक्षण देने तथा राजनीतिक दलों के सहयोग से प्रत्येक बूथ पर बीएलए की नियुक्ति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। साथ ही मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन कर व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने को भी कहा गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभिनव शाह ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 7 जून तक गणना प्रपत्रों की छपाई और कार्मिकों का प्रशिक्षण पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद 8 जून से 7 जुलाई तक बीएलओ घर घर जाकर गणना प्रपत्रों का विवरण और संकलन करेंगे। इसी अवधि में नए पोलिंग बूथों को शामिल करते हुए बूथों का अंतिम निर्धारण भी किया जाएगा। छठे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर 76.2% हो गई है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है, जबकि 12 से 23 माह के 96% से अधिक बच्चों को जरूरी टीके लगाए गए हैं। देहरादून में किसानों, किसान उत्पादक संगठनों, एफपीओ, ग्रामीण नैनो उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस संचय योजना पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण पीएफआरडी ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उत्तराखंड और लीड बैंक देहरादून के सहयोग से किया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को एनपीएस संचय योजना की जानकारी देना और वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समय रहते निवेश शुरू करने के प्रति जागरूक करना था। इस दौरान पीएफआरडीए के अधिकारियों ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लाभ, निवेश प्रक्रिया और दीर्घकालिक बचत के महत्व पर जानकारी दी। उन्होंने ग्रामीण और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए उपलब्ध अवसरों के बारे में भी विस्तार से बताया। कार्यक्रम में नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, एसएलबीसी उत्तराखंड, लीड बैंक देहरादून और आरसीटीआई के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न बैंकों के अधिकारी, किसान, एफपीओ सदस्य, नैनो उद्यमी, जनसेवा केंद्र संचालक और स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्य शामिल हुई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 10:36 हुए हैं। लीजिए लोक संगीत के कार्यक्रम में सुनिए, रागिणी कलाकार हैं सुभाष चंद्र और साथी।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण

0: को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलों से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
0: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: Future proof your career with UPES Dehradun, India's AI first university. Choose from 100 plus AI integrated programs across engineering, business, law, design, humanities and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 30th May. Apply now at upes.ac.in.
3: Future-proof your career with UPES, India's AI first university. Choose from 100+ AI integrated programs across engineering, business, law, design, humanities and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 30th May. Apply now at upes.ac.in.

0: लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सुभाष चंद्र और साथियों की गाई रागिणी।
1: कास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर से इंडिया की ओरिजिनल आवाज। आकाशवाणी, आकाशवाणी।
0: FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजे हैं। पेश है आपका पसंदीदा कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का आज की होस्ट श्रुति शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, कार्यक्रम में हम ये फरमाइश ले रहे हैं देहरादून चक्राता रोड ईदगाह मोहल्ला निवासी सुनील चावला, मीना चावला, साक्षी चावला, दिनेश चोपड़ा, तनु नानू, राधिका रानी गुप्ता, अंशुल गुप्ता, स्मिता रानी, दीक्षा चावला, कृतिका, कविता आहूजा, आरएस आहूजा, रजत आहूजा, सोनिया आहूजा, तनीषा आहूजा, सीमा द्वार से और इनके सभी परिवार के सदस्य इस गीत को सुनना चाहते हैं। कार्यक्रम में ये फरमाइश आ रही है ग्राम चौहल्दा बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया की। कार्यक्रम का ये गीत हमारे श्रोता भेज रहे हैं रामपुर ग्राम दिव्या नगला अंबेडकर पार्क के पास से आकाश गौतम, सौरभ गौतम, विक्की गौतम, कपिल गौतम और

पित गौतम। ये फरमाइश आ रही है जसपुर उत्तराखंड से, रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज अहमद रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा और नूर की। इसी गीत को सुनना चाहते हैं रविन्द्र छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, नई दिल्ली टैगोर गार्डन से। कार्यक्रम में ये फरमाइश आ रही है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से फरमाइश कर रहे हैं। ये अगली फरमाइश है सुभाष योगी, सुशील योगी, डब्बू बब्बू, राजू मिंगलानी और बबीता मिंगलानी की कृष्णा कॉलोनी हांसी से। कार्यक्रम में ये फरमाइश आ रही है, ये हमारे श्रोता है लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से, हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर मीनाक्षी कान्हा, श्रीमती मनोहर बाई बागरी, प्रभुलाल बागरी, बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हैं, मनभावन, नैना, सत्यनारायण, कपिल, शोभा और फुदनी बाई बागरी। इसी गीत को सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता हैं रविन्द्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, मेघा राशि, माधुरी किरण, अनुराग और मोहन, ये हैं किशनगंज बिहार से। ये अगली फरमाइश आ रही है सहारनपुर से आशा नारंग, सोनाली और सुरेश नारंग की। कार्यक्रम में ये फरमाइश ग्राम नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसबीर जस्सी, सीता और गीता की। इसी गीत को सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता हलवाइन शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदा रानी और हीना कौसर की। ये अगली फरमाइश हमारे पास आ रही है पद्मा टॉकीज नेपा नगर से, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह की। ये फरमाइश भेज रहे हैं हमारे श्रोता हैं जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना और सुदामा नगर खंडवा से हैं लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप। ये फरमाइश आ रही है, ये हैं गोड मुक्तेश्वर, गर्म जर्मन, बिंदी, कृष्णा गौड़ और मल्लेश गौड़, साथ में है विजय लक्ष्मी, ये है हैदराबाद से। इसी गीत को सुनना चाहते हैं विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल विवेक, सोनू, मोनू, रानू, सपना, शिवी सलोनी और पेंटर बाबू, ये है रामगंज खडवा मध्य प्रदेश से। ये अगली फरमाइश आ रही है, ये है हमारे श्रोता चंडीगढ़ सिटी से शेफाली, शेफी, डेविस, विमला, सतीश और इनके परिवार के सभी सदस्य, मनाली हिमाचल से। इसी गीत को सुनना चाहते हैं हर्ष, विनय, विनीत और रोजस भाई। कार्यक्रम में ये फरमाइश आ रही है हमारे श्रोता हैं तेलंगाना चौटुपल से कस्तूरी रामानाडू, उमा देवी, प्रणु देवी और नारायणा, आप सबकी फरमाइश पर कार्यक्रम का ये गीत।

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: कार्यक्रम में ये फरमाइश हमारे पास भेजी है, हमारे श्रोता हैं संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर, भारत मक्कर, कमल सहनी, पिंगावाला चौक, गोरिया, जालंधर से। ये फरमाइश आ रही है, ये हमारे श्रोता हैं राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आशना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी, जैन मंदिर वाली गली कुरावाली से। ये अगली फरमाइश है खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्म मल्होत्रा, लाडू कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से हैं पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुगू सिक्का। ये अगली फरमाइश है कमल पाठक, सुनील पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी और जयपाल की अनारकली बाजार जरगांव से। ये अगली फरमाइश है, ये है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला और ओम कुमार। इसी गीत को सुनना चाहते हैं बीट शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, राम निवास अग्रवाल, धनंजय टबूक, पीवी कुलथे। ये अगली फरमाइश है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका से हैं, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टू बजाज। इसी गीत को सुनना चाहते हैं, ये हैं जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले, डॉक्टर सहानुभूति चक्रधर। कार्यक्रम में ये फरमाइश आ रही है ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से कारी राय, कारी मीना, कारी पुंज राय, आरती आकर्षण, जयश्री। इसी गीत को सुनना चाहते हैं हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखे लाल वर्मा, दंतेरी भाटापारा छत्तीसगढ़ से। ये अगली फरमाइश है उषा पांडुचंद, पांडु चंदन की, उषा चंदन की, रानी चंदन की, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक, प्रथमेश, संतोष चंदन और पांडुरंग कुम्भार।

0: की कुंभार गली कोलगांव से। ये अगली फरमाइश है मरहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, नावेद हसन अब्बासी, राशिद अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम अब्बासी और यशव अब्बासी की। सिकंदरा राव से हैं मुबीन अब्बासी, इशरत परवीन। इसी गीत को सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता, ये हैं सदर बाजार मारवाड़ भिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद चौहान, जयनारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान। ये अगली फरमाइश है सतीश अनेजा, विमला अनेजा की चंडीगढ़ से। ये फरमाइश भेज रहे हैं हमारे श्रोता परी महल कासगंज से आदाब खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, एम असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली, मीरा सराय बदायूं से हैं आफरीन खान और जमीर खान, इनके दामाद हैं। इसी गीत को सुनना चाहते हैं पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत, सुलोचना भगत। इसी गीत के लिए फरमाइश भेज रहे हैं गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी। ये अगले श्रोता हमारे हैं हनुमंत शिंदे, संगीता शिंदे, ऋषिकेश और वसुंधरा, ग्राम सिरटे, जिला सांगली से। ये फरमाइश भेज रहे हैं हमारे श्रोता शिवाजी नगर खंडवा से राजेश सेन और सुरेखा सेन। इसी गीत को सुनना चाहते हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगनेजा, पूनम गंगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहुज। ये अगली फरमाइश आ रही है, ये है आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शायना शर्मा, निवान शर्मा की। ये हमारे श्रोता हैं जो हमें फरमाइश कर रहे हैं, ये हैं मोहम्मद नासिर हुसैन पटेल और अमीना पटेल, ग्राम जखड़गांव, अहमदनगर से। इसी गीत को सुन रहे हैं हमारे श्रोता, ये हैं दादरी गेट भवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा। आइए आप सबको सुनवाते हैं प्रेम रोग फिल्म का ये गीत, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर ने। कुछ और फरमाइश हम अपने श्रोताओं के लिए लेते हैं ग्राम भोजपुर तगा चिलकाना सहारनपुर से मोहम्मद जावेद, मोहम्मद अदीब, अब्दुल हन्नान, जीनत जावेद, नाहिद रानी और आयत, साथ में है मोहम्मद इंतजार। इसी गीत को सुन रहे हैं रेलवे रोड गंजडुडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनावर, नजमा ने बेगम नाज और भाभी सरिता गौतम।
1: मैं तुझे कल भी प्यार करता था,

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: व्हाट्सएप फरमाइश इस समय हमारे श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से, और फरमाइश भेज रहे हैं हमारे ये सब श्रोता, ये हैं हनुमानगढ़ टाउन

राजस्थान से रज्जाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान और जिशान खान। इसी गीत को सुन रहे हैं बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव और अंशिका यादव। ये अगली फरमाइश है सहारनपुर से सोनाली, आशा नारंग और सुरेश नारंग की। इसी गीत को सुन रहे हैं मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपन तायड़े, बसंतराव भोजने, पी एस नुहानकर और तुषार करांगले। इसी गीत के लिए फरमाइश भेजी है पटेल नगर मलोट से रमेश चंद्र कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और साथ में है गुड्डू। इसी गीत को सुनना चाहते हैं बांडीवाला फजल का पंजाब से क्रियांश बगड़िया, योगेश बगड़िया, ओम बगड़िया, बेबी गरिमा बगड़िया, रजत और मनीष चौधरी। ये अगली फरमाइश है ग्राम उमरेड़ा नजीबाबाद तेलंगाना से मोहम्मद जैनुद्दीन, आदिबा, आयशा, स्नेहा भानु, जैनुद्दीन। कार्यक्रम में ये फरमाइश भेज रहे हैं तुलसी मस्कीन, बीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी सहादरा से। ये अगली फरमाइश है ये हैं बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, सुमेध कुमार दामोदर, साधना पवन पाटिल, बनसिंगा बुलढाणा से अमोन मानकर, शोभाताई मानकर और श्लोक दीपाली। इसी गीत को सुनना चाहते हैं भाई प्रेम सिंह बड़वाल, साथ में है सुखबीर, काजल बड़वाल, लखवीर बड़वाल, रानू कृष्णा, श्रीमती छिंदो, प्रवीण, शीतल, नवीन, रंगीला, निशान, अनमोल, प्यारे बेटे चटकू और मटकू। ये हमारे श्रोता है दीवाना रेडियो श्रोता क्लब बहलोल नगर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से। ये अगली फरमाइश आ रही है टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, चीनू आसमा, दीपक श्याम कुंवर और अनुश्री श्याम कुंवर की। ये फरमाइश आ रही है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल की। अगली फरमाइश है वाइल्ड फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष। कार्यक्रम में ये फरमाइश उत्तम नगर दिल्ली से है कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश और इनका पूरा परिवार। इसी गीत को सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता ये हैं किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, साईंराज सपकाल और विशाल सपकाल शास्त्री नगर बीट शहर से। दंतेरेगी से हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीला देवी, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। इसी गीत को सुनना चाहते हैं नलेश्वर नगर नरवरे महाराष्ट्र से पी एस नुहानकर, निर्मला नुहानकर, विशाल नुहानकर, सोपान तायड़े। मलकापुर से हैं नारायण इंगले और आशीष मुहेरकर। कार्यक्रम में ये फरमाइश कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से है ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। कार्यक्रम में ये अगली फरमाइश आ रही है सप्तरंग श्रोता परिवार से कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले, जीविका दले, सानिका दले, पुणावड़े पुणे से हैं अजन सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने और विशाल सोनवने की। ये हैं हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीसा प्रवीण की। आप सबकी फरमाइश पर ब्लैकमेल फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

0: Proof your career with UPES Dehradun, India's AI first university. Choose from 100 plus AI integrated programs across engineering, business, law, design, humanities and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 30th May. Apply now at upes.ac.in.
1: श्रोताओं कार्यक्रम में ये अगली फरमाइश हमें भेज रहे हैं हमारे श्रोता हैं ये हैं राजनगर मधुबनी से कुशेश्वर कांति गुप्ता रुद्र प्रताप गुप्ता रिद्धि सिद्धि गुप्ता ऐशबाग लखनऊ पीली कॉलोनी से हैं मुकेश गुप्ता रानी गुप्ता कुसुम गुप्ता नीलम और रश्मि गुप्ता ये फरमाइश आ रही है नेहरू पार्क निजामाबाद तेलंगाना से अजीज भाई मतीन भाई शेख चंद फारूक फूल वाले सैयद खलील मुबीन भाई एमडी यासिन मौसा करीम नेहरू पार्क निजामाबाद तेलंगाना से इसी गीत को सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता हैं देवरी भाटापारा से के आर शाहू आकाश कमलेश गन्नूराल रजक और मुरली छत्री ये अगली फरमाइश है सनावत से शेख मूसा मोहसिन की कार्यक्रम में ये फरमाइश लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू पंकज साहू और तिरुपति साहू की आई है हिंदुस्तान रेडियो मित्र बनने बुजुर्ग बुर्जर पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हैं ब्रजेंद्र विश्वकर्मा तारा देवी विश्वकर्मा सोनाली विश्वकर्मा सोनल विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा की ये अगली फरमाइश है घाड़ी नांदूरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाटे संदीप बाटे और अमूल्य बाटे की कुड़ी सेक्टर पास सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से हैं रमेश चंद चौहान मोहिनी चौहान कल्पित चौहान बेबी गर्वी और बेबी बॉय हिमाक्ष इसी गीत को सुनना चाहते हैं पप्पू राजा खुशदिल संगीता रानी जिंदल पप्पू महक खुशदिल सुनीता रानी जिंदल आरजू पप्पू खुशदिल हंसमुख लाल जिंदल बुलबुल शक्ति संजीव बंटी जिंदल और पूरा ही खुशदिल परिवार इसी गीत को सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता ये

हैं टोरोवाल, नवाज शहर पंजाब से गगनदीप थाती, तृप्ता कुमारी थाती, डॉक्टर प्रियंका थाती, डॉक्टर प्रशांत थाती, डॉक्टर प्रियम थाती और बेबी वामिका थाती। इसी गीत को सुनना चाहते हैं रज़ाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, जिशान खान, हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से। कार्यक्रम में ये फरमाइश आ रही है, ये हमारे श्रोता हैं उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल, लगान पडरिया छत्तीसगढ़ से। ये अगली फरमाइश है राव करनाल से, ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। इसी गीत को सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता, ये हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक मजनू का टीला से फरमाइश भेज रहे हैं। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तनवी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलबीर सिंह हैं जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से। ये फरमाइश आ रही है राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी की, गांव फरासी जिला हिसार से। ग्राम छगुड़ी जिला यमुनानगर से हैं रणधीर बागर, गुरमेजो, गौरव, परवीन, युगम और वीरेन। कार्यक्रम में ये अगली फरमाइश हमें भेज रहे हैं सालार पहलगाम कश्मीर से पीरजादा मिराज उद्दीन और इनका पूरा परिवार। इसी गीत को सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता, ये हैं जलालपुरा जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से श्रवण कुमार प्रजापति, शिवम प्रजापति, आर्यन प्रजापति, लवीश प्रजापति, मुनेश देवी प्रजापति। आप सबकी फरमाइश पर हिमालय की गोद से फिल्म में मुकेश की आवाज में ये प्यारा सा गीत। काटा रोड वासिम महाराष्ट्र से इसी गीत को सुन रहे हैं मास्टर विट्ठल सुरेशे, सुषमा सुरेशे, परिधि सुरेशे और मायरा सुरेशे। दाहिया गांव नांदूरा से सुन रहे हैं घोड़ू भातुरकर, ममता मंगला भातुरकर, विवेक कुमार भारती, प्रतीक्षा कोमल और समाधान भातुरकर। इसी गीत को विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, नीलमपुरी, रमा पाली और सुनील पाठक और साथ में बीकेपुरी और विनोदपुरी सुन रहे हैं मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना से।

0: श्रोता व्हाट्स अप फरमाइश में ये अगली फरमाइश है सेक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा से विनय मोहन खारवन मीनाक्षी प्लोमा व डॉक्टर ईशानी इसी गीत को सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता मोहम्मद सईद अब्बासी निगत परवीन अब्बासी शहनवाज अब्बासी सरफराज अब्बासी फरदीन अब्बासी सुहान अरजान अबान अब्बासी और पूरा अब्बासी परिवार ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से राजेश खन्ना चिन्ना पासी सुनीता राज भानु राज अमित खन्ना और इनकी अम्मी है ये हैं डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना से कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमारे पास आ रही है अनिरुद्ध भट्टा मुमताज रियाज रुबीना जुनैद अंजुम मारिया हुमरा सलमान और सीमा की ये हैं गोंड मोहल्ला कर्नाटका से कार्यक्रम में ये फरमाइश रानीगंज बंगाल से आई है रवि और इंदर की अगली फरमाइश हमारे पास भी आ रही है ये है दिलशाद हुसैन फातिमा सोगर वकार हैदर कनीज सकीना और हसीना दिलशाद की ये फरमाइश हमारे पास हमारे श्रोता भेज रहे हैं वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद मोहम्मद साकिर मोहम्मद अलकमा खत्री मोहम्मद अल्तमस खत्री रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री जामा मस्जिद रोड गोगांव से हाजी इसहाक लोलामानी मोहम्मद उमर कासमी और हाजी अयूब शेरी की ये अगली फरमाइश है हमारे श्रोता हमें फरमाइश भेज रहे हैं ये हैं हमारे श्रोता संजय कुमार नेगी अंजना नेगी डॉक्टर आकांक्षा नेगी सुधांशु नेगी एवं समस्त नेगी परिवार ये हैं शिवपुर नगर वार्ड 18 कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल से ये हमारे पास फरमाइश आ रही है मुकेश गोस्वामी मधु गोस्वामी आशी गोस्वामी सिवन्या गोस्वामी अनु गोस्वामी की ऊंच भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से ये गांव खारिया ढांटी जिला सिरसा हरियाणा से हैं सतबीर सिंह बिजारनिया देवेंद्र राजपाल अभिषेक योगेश पूजा आरजू और नव्या बिजारनिया की ये फरमाइश है जयेंद्र जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से रुपेश संघई महेश संघई प्रीतेश संघई और पूरा ही संघई परिवार इसी गीत को सुनना चाहते हैं धनोरी तेलीवाला से निरसा सलमानी नौसाद सलमानी बेबी आलिया अयान बाबू ये अगली फरमाइश है नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव अनीता जाधव आरती पूजा प्रसाद जाधव सोनल जाधव बेबी सिया जाधव जालना शहर से हैं सोमनाथ जाधव गीता ओम सुभाष चंदन एकनाथ जाधव और संगीता जाधव की ये फरमाइश आ रही है शाहजी बोखड़े श्रीमती नंदा बोड़खे हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदारे की हिंगोली महाराष्ट्र से हमारे ये श्रोता हैं गोल्डन श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा प्रीति वर्मा कार्तिक और आर्यन वर्मा के शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से हैं मुन्ना भाई स्वर्णकार पिंकी स्वर्णकार आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार की ये अगली फरमाइश हमारे पास हमारे श्रोता भेज रहे वीके सिंह सीनियर सिटीजन ये हमारे नियमित श्रोता डिफेंस कॉलोनी देहरादून से हैं ये अगली फरमाइश है ये है बाबा कुटिर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान संक्रांति चौहान रितेश कुमार राजेश्वरी और उत्कर्ष चौहान की आप सबकी फरमाइश पर कार्यक्रम का ये गीत प्यासा सावन फिल्म से लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज में पहले सुने ये ब्रेक
1: AI First University Choose from 100 plus AI integrated programs across engineering, business, law, design, humanities and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 30th May. Apply now at upes.ac.in.
0: इसी गीत को गणेशपुर गंज डुंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से सुन रहे हैं एम फारूक शेख समा परवीन सायमा फारूक सरफराज शेख गुलफराज शेख और बेबी मुस्कान ये फरमाइश हमारे पास आ रही है ये हैं हितेंद्र दास स्टेट आसाम से

श्रोताओं, कार्यक्रम में ये फरमाइश हमारे श्रोता है मेन रोड तेलहारा से प्रकाश पोहारकर, नर्मदा पोहारकर, कुमारी सुजाता पोहारकर। कार्यक्रम में ये फरमाइश है सिहारा बिजनौर से आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अरफात अदीब और कादिर की। इसी गीत को सुनना चाहते हैं सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा की। ग्राम कस्बा उघेती बदायूं से हैं देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार, पंकज बजाज, प्रिंस कुमार, प्रशांत गुप्ता, कार्तिक गुप्ता। इसी गीत को सुनना चाहते हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नवी, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। ये हैं हमारे श्रोता कनारा मोहल्ला पटियाला से। इसी गीत को सुनना चाहते हैं डाब की रोडा कोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर। ये अगली फरमाइश है भेरूलाल वाकतरिया धाकड़, भोला वाकतरिया, प्रवीण वाकतरिया और रियांश वाकतरिया की। साथ में है प्रतीक वाकतरिया उल्हेन जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से। कार्यक्रम में ये जो अगली फरमाइश आई है भोजपुर तगा सहारनपुर से मोहम्मद इंतजार, मोहम्मद जावेद, राणा प्रधान, राहत अली और वकील अहमद की। इसी गीत को सुनना चाहते हैं सैयद आलम हाशमी, गुलनाज सलमा, असद अरहाम, मोहम्मद आलम हाशमी, नाज पैलेस अजमेर शरीफ से। कार्यक्रम में ये फरमाइश है गंगा सिंह रावत, रामपुर रोड, हल्द्वानी से। ये अगली फरमाइश हमारे पास आ रही है उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह, श्रीमती महेश्वरी देवी, सोनू, मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि, बन्नी, आरुष, सौर्य, दिनेश की। इसी गीत को सुनना चाहते हैं हमारे ये अगले श्रोता। ये हैं वनस्थली हैदराबाद से, ये हैं बालाजी, श्रीमती रेणुका बद्री, हरिणी लोकेश, साई कृपा। इसी गीत को सुनना चाहते हैं ये हमारे श्रोता झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया और रीटा भाटिया हैं। कार्यक्रम में ये फरमाइश नासिर शेख, नाजिया नसरीन, साजिद साहिद, गोविंदपुरा अहमदनगर से हैं जुनैद मुजावर, सबीहा मुजावर, मिखाइल जैनब मुजावर। कार्यक्रम में ये अगली फरमाइश है ये है बिजली घर मीरागंज बरेली से कल्लू भाई मिस्त्री, अजीम साइकिल वाले, मुबारक पेंटर और मनोज वर्मा की। ये हमारे श्रोता हैं जो इस गीत को सुनना चाहते हैं गुणवंत श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक श्रीवास, तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हमें फरमाइश भेज रहे हैं। अगले श्रोता हैं ये हैं जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार, बिल्लू निषाद और तरुण यादव। कार्यक्रम में ये अगली फरमाइश आ रही है ये हमारे श्रोता है राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा, लाल कुर्ती रुड़की कैंट से हमें फरमाइश भेज रहे हैं। ये अगले श्रोता हमारे हैं ये हैं चंदूलाल पटवा, श्रीमती सुनीता पटवा, हर्ष कुमार पटवा, विनीत कुमार पटवा, कुमारी क्रिस्टी पटवा, धरदेई सरगवा छत्तीसगढ़ से। ये अगली फरमाइश है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मनवी तनवी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलबीर सिंह, जिला मुरादाबाद, दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से। ये अगले श्रोता हमारे हैं गणेश अभिकार श्रीरामपुर से, डी अशोक कुम्भार, अविका जीविका, सानू कुम्भार और अर्चना कुम्भार। आप सबकी फरमाइश पर बेताब फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में।

श्रोताओं, आज के कार्यक्रम का समापन गीत हमने लिया है हमारे इन सब श्रोताओं की पसंद पर मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा ओम प्रकाश मल्होत्रा की तरफ से। ये है अगला फरमाइश हमें भेज रहे हैं तेलंगाना से छोटा पूरन पार्वती बाला प्रसाद सूरज बाली और भानु राज की है। ये अगली फरमाइश है, ये हमारे श्रोता संतोष नामदेव अभय अनिल अजीत ज्योति अनिता संजना रेखा भारती पूर्वी रूही अनु अनन्या शक्ति भक्ति आदर्श लवकुश और पूरा ही नामदेव परिवार मेन मार्केट ग्राम पोस्ट सोरई जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से फरमाइश भेज रहे हैं। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से है मोहम्मद फरमान सलमान इरफान इसरार और नरगिस खातून। इसी गीत को पुटपाक तेलंगाना से सुन रहे भवानी वेंकटेश मास्टर मिथुन और महादेव। अगली फरमाइश भेजी है बीएन रेड्डी नगर से मोनिका बालू और विनय कुमार ने। इसी गीत को सुनना चाहते हैं कमरू निशा सबिस्ता मोहम्मद नसीब पलक लुबना और यश मंसूरी मोहम्मद जाकिर मंसूरी। ये हैं हमारे श्रोता

सूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से। इस गीत को सुनना चाहते हैं किशन मंजानी, नीलम स्वाति, संगीता सरिता, सुमन महाजन और कृषु रेलवे कॉलोनी आनंद विहार दिल्ली से। इसी गीत को सुनना चाहते हैं फुलाई नगर बीट महाराष्ट्र से बाला प्रसाद करवा, गीतांजलि करवा, आकाश करवा, आकांक्षा करवा। फुलाई और फुलाई नगर बीट महाराष्ट्र से हैं बाला प्रसाद करवा, गीतांजलि करवा, आकाश करवा, साथ में आकांक्षा करवा। इसी गीत को सुनना चाहते हैं बरेली मध्य प्रदेश से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची करमरकर और तनु करमरकर। खंडवा नाचुन रोड संजय कॉलोनी से हैं अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं सोहन जोशी और पायल जोशी। इसी गीत को सुनना चाहते हैं सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और बेबी गर्वी। ये फरमाइश है सब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मंजू बाबा, आयजा अनम और मुदस्सिर हुसैन की सब्जी मंडी बुलढाना से। आप सबकी फरमाइश पर ब्लफ मास्टर का ये गीत मुकेश की आवाज में।

0: श्रोताओ, इसी गीत के साथ व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। अनुमति दीजिए, नमस्कार। आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है, सुबह के 12 बजने को है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति ने गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
2: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
1: सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में कहा कि देश में एलपीजी की कमी की कोई सूचना नहीं है। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यभार मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने के निर्देश दिए हैं। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा यह सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
3: मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर मी,
4: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
1: लेफ्टिनेंट जनरल NS राजासुब्रमणी उनका स्थान लेंगे। गुजरात टाइटंस IPL क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि गोवा न केवल अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार आतिथ्य सत्कार के लिए प्रसिद्ध है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह अवसर उन सभी को याद करने का है जिन्होंने राज्य की प्रगति और पहचान के लिए अथक परिश्रम किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पत्रकारों, लेखकों और हिंदी भाषा के समर्पित प्रबुद्ध व्यक्तियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचे और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. Myanmar President U Min Aung Hlaing arrived in Bodh Gaya today as part of his five-day visit to India. During the visit, he offered prayers at the world-renowned Mahabodhi Temple and the historic Sujata Temple. The president will also visit various Myanmar Buddhist monasteries in Bodh Gaya. Earlier, Bihar Agriculture Minister Vinay Kumar Sinha accorded a warm welcome to President U Min Aung Hlaing at Gaya Airport. The Karnataka Congress Legislature Party is scheduled to meet in Bangalore at 4 p.m. today to elect its new leader to succeed the outgoing Chief Minister, Mr. Siddaramaiah. Governor Thavarchand Gehlot has already accepted the resignation of Mr. Siddaramaiah, asking him to act as a caretaker until a new incumbent is chosen. Our correspondent reports that Mr. D.K. Shivkumar is likely to be formally elected as the new leader of the Congress Legislature Party. The 136 Congress MLAs have been asked to attend the CLP meeting. AICC General Secretary and Karnataka in charge, Randeep Singh Surjewala, will be the observer. Once the CLP chooses its new leader, he will meet the governor to seek permission to form the new government and finalize the date for the swearing-in of the Council of Ministers. Chief of Defence Staff General Anil Chauhan today bid farewell to military service after receiving a ceremonial tri-services guard of honour at the National War Memorial in New Delhi. The ceremony marked the culmination of his distinguished tenure as the country's top military

0: symbolic of my transiting from uniform to a civilian life. I had a very satisfying and an excellent tenure.
1: At least 7 people have been killed in separate incidents of thunderstorms, rain and lightning strikes across Bihar. According to reports from our correspondents, 3 fatalities were reported in Gaya, while Aurangabad recorded 2 deaths each. Additionally, 1 death each has been reported from Saran and Khagaria districts. Expressing deep grief over the tragic incidents, Chief Minister Samrat Chaudhary has announced an ex gratia grant of 4 lakh rupees each for the next of kin of the deceased. The government has asked public sector oil marketing companies to set up liquefied petroleum gas LPG reserves for at least 30 days as West Asia conflict persists, disrupting global energy supplies. Joint Secretary at the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, stated this while talking to the reporters yesterday during the inter-ministerial press briefing on the West Asia conflict. Outlining the precautionary measures to safeguard against supply shocks, Ms. Sharma said India was also working to increase crude oil storage capacity. Minority Affairs Minister Kiran Rijiju today informed that for the first time, Indian Hajj Mission has received 2 prestigious Labitum Awards from the Saudi Ministry of Hajj and Umrah for excellence in Hajj coordination and communication. The India Meteorological Department has forecast heavy to very heavy rainfall over West Uttar Pradesh, Bihar, Odisha, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Andaman and Nicobar Islands today. The India Meteorological Department has also predicted thunderstorm accompanied with hailstorm over Haryana, Punjab, Delhi, Rajasthan, Vidarbh and Chhattisgarh. In cricket, Gujarat Titans stormed into the final of the IPL 2026 with a commanding 7-wicket victory over Rajasthan Royals in Qualifier 2 at New Chandigarh last night. With this victory, Gujarat Titans have set up the title clash against defending champions Royal Challengers Bengaluru, which will be played in Ahmedabad tomorrow at 7:30 p.m. In women's cricket, India to take on hosts England in the second T20 international in Bristol today, with the visitors aiming to seal the 3-match series. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian Standard Time. India currently lead the series 1-0 after a commanding 38-run victory in the opening match in Chelmsford on Thursday. And that is the end of this news bulletin.
2: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 12:10 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं न्यूज हेडलाइंस।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप गीता नेगी से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। गृह सचिव शैलेश बगोली ने गोपेश्वर कोतवाली का आकस्मिक निरीक्षण कर डिजिटल पुलिसिंग, फॉरेंसिक जांच और जनमैत्री पुलिसिंग को मजबूत बनाने के निर्देश दिए। देहरादून में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तैयारियां तेज, 8 जून से बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन और गणना प्रपत्रों का संकलन करेंगे। प्रदेश में सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के प्रांतीयकरण के लिए बनेगी नई नीति। शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने 1 माह में प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उधम सिंह नगर में आवास और शहरी विकास परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान सचिव डॉ आर राकेश कुमार का प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य निर्माण कार्यों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। उत्तरकाशी के गंगनानी क्षेत्र में कार दुर्घटना में 2 लोगों की मृत्यु, 3 घायल। एसडीआरएफ ने रात में कठिन परिस्थितियों के बीच रेस्क्यू अभियान चलाकर घायलों को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया। देहरादून में किसानों, एफपीओ और स्वयं सहायता समूहों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस संचय योजना पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित, वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा के लिए निवेश को लेकर दी गई जानकारी। चंपावत में जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन को लेकर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने सारा परियोजनाओं की समीक्षा की। गौड़ी नदी और अन्य जल संरक्षण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान 2026 में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भाग लिया। उत्तराखंड में खरीफ सत्र की तैयारियां पूरी होने और जैविक खेती को बढ़ावा देने की जानकारी दी। और चमोली की नीति घाटी में कल से 2 दिवसीय नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का आयोजन होगा। सीमा पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित प्रतियोगिता में देश विदेश के धावक हिस्सा लेंगे। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
2: हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:12 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं साजन बाबू कव्वाल और साथियों की गाई कव्वाली।

0: सुगम संगीत कार्यक्रम में अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे साजन बाबू कव्वाल और साथियों की गाई कव्वाली।
1: Your career with UPES, India's AI first university. Choose from 100 plus AI integrated programs across engineering, business, law, design, humanities and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 30th May. Apply now at upes.ac.in.
0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब पहने सुने अपना कार्यक्रम महिला जगत।

आप सभी बहनों को अभिज्ञा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम महिला जगत में आप सभी का स्वागत अभिनंदन। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे भाव की जो हर इंसान के मन में कभी न कभी जरूर आता है, डर। जी हाँ बहनों, किसी न किसी रूप में ये कहीं ना कहीं हर किसी के मन में रहता है। किसी को असफल होने का डर, किसी को समाज की बातों का डर, अकेलेपन, बीमार होने का, या फिर नए काम की शुरुआत का डर, या फिर किसी को अपने सपनों के टूट जाने का डर। लेकिन क्या डर के साथ जीना ही जीवन है? नहीं, जीवन तो आगे बढ़ने का नाम है। डर को हराया जा सकता है। डर बुरा नहीं होता बहनों, वो हमें सावधान करता है। लेकिन जब डर हमारे सपनों को रोकने लगे, हम पर हावी होने लगे, तब उसे हराना जरूरी हो जाता है। आज भी हमारे समाज की बात की जाए तो कई महिलाएं सिर्फ डर की वजह से अपने सपनों को अधूरा छोड़ देती हैं। लोग क्या कहेंगे, अगर मैं हार गई तो ये मैं नहीं कर पाऊंगी, ऐसे ख्याल डर के कारण ही मन में आते हैं। लेकिन सच तो ये है कि डर केवल हमारे मन की सोच है, और जिस दिन हम अपने मन को मजबूत बना लेते हैं, उसी दिन डर कमजोर पड़ जाता है। आप मानती हैं ना, जब हम खुद पर भरोसा करते हैं तब मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। डर को हराने के लिए सबसे जरूरी है आत्मविश्वास। खुद पर भरोसा कीजिए। याद रखिए, हर इंसान में कोई ना कोई विशेषता जरूर होती है, आप में भी होगी। अपने डर को पहचानिए।

खुद से पूछिए, मुझे आखिर डर किस बात का है? जब कारण समझ आएगा, समाधान भी मिल जाएगा। छोटे कदम उठाइए, एकदम बड़ी छलांग लगाने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे आगे बढ़िए, नई चीजें सीखते रहिए। असफलता से कभी मत डरिए, हार हमें नया सीखने का मौका देती है। हमेशा सकारात्मक सोच रखें, हर दिन खुद से कहें, मैं ये कर सकती हूँ, मैं कमजोर नहीं। अपने मन की बात साझा कीजिए, परिवार या किसी से भी बात करने से मन हल्का होता है। और सबसे बड़ी बात, नकारात्मक बातों से दूर रहिए। और जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं, आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, उनसे दूरी बनाइए। उनकी बातों को दिल पर मत लीजिए। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। अगर वो डर जाती तो कभी आगे नहीं बढ़ पाती। तो फिर आज और अभी से अपने डर को अपनी कमजोरी नहीं ताकत बनाइए। नई शुरुआत कीजिए, खुद पर भरोसा रखिए और आगे बढ़ते रहिए। लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, पर पहले सुनते हैं जरूरी संदेश।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वहीं देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
0: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: Future proof your career with UPES, India's AI first university. Choose from 100 plus AI integrated programs across engineering, business, law, design, humanities and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 30th May. Apply now at upes.ac.in.
3: Future proof your career with UPES Dehradun, India's AI first university. Choose from 100 plus AI integrated programs across engineering, business, law, design, humanities and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 30th May. Apply now at upes.ac.in.

0: 20 से अधिक वर्षों का अनुभव, 20 से अधिक देशों में आयुर्वेद सेवा,
1: नाड़ी परीक्षण, पंचकर्म चिकित्सा, नेत्र रोग, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर और अल्सराइटिव कोलाइटिस का विशेष उपचार,
0: स्वनिर्मित आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ।
1: व्हाट्सएप 7895372936।
0: पूर्ण उपचार चाहिए तो मिलिए नाड़ी वैद्य राहुल गुप्ता से। श्री विश्व प्रांगण आयुर्वेद, पुराना शिव मंदिर, मुखानी चौराहा, हल्द्वानी। शनिवार छोड़कर पूरे सप्ताह उपलब्ध।
2: Future proof your career with UPES, India's AI first university. Choose from 100 plus AI integrated programs across engineering, business, law, design, humanities and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 30th May. Apply now at upes.ac.in.

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
0: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी।

0: निवेश को मिला प्रोत्साहन साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी
2: कार्यक्रम महिला जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है बहनों आइए बात करते हैं हमारे प्रिय साथी की जी हाँ मोबाइल की जो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है और धीरे धीरे हमारी खुशियों रिश्तों और सेहत पर असर भी डाल रहा है इसलिए मोबाइल से दूरी बनाना भी जरूरी हो गया है सुबह उठते ही और रात को सोने तक हर कोई मोबाइल का इस्तेमाल करने लगा है और यह आदत धीरे धीरे परिवार से दूरी बढ़ा रही है और बच्चों की बात करें तो बच्चे खेल के मैदान छोड़कर स्क्रीन में व्यस्त हैं और बड़े लोग भी अपनों से ज़्यादा फ़ोन को समय दे रहे हैं लगातार मोबाइल देखने से आंखों में दर्द नींद की कमी और तनाव जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं हाँ ये भी सच है कि आज मोबाइल फ़ोन हमारे जीवन की ज़रूरत बन गया है बात पढ़ाई की हो ऑनलाइन काम की बैंकिंग या रिश्तेदारों से बातचीत की हो हर जगह मोबाइल इस्तेमाल होता है मोबाइल का उपयोग जरूरी है लेकिन सही और सीमित उपयोग जरूरी है कुछ बातों का ध्यान रखना खाने के समय मोबाइल से दूरी रखें सोने से कम एक घंटा पहले फोन बंद कर दें बच्चों के सामने मोबाइल का कम उपयोग करें बच्चों और अपने परिवार के साथ समय बिताएं उनसे बातें करें खाली समय में किताबें पढ़ें या कोई नया हुनर सीखें या फिर अपनी मनपसंद कोई भी काम कर सकते हैं कोशिश कीजिए कुछ समय बिना मोबाइल के बिताइए उससे दूरी बनाकर रखिए याद रखिए बहनों मोबाइल से ज़्यादा ज़रूरी हमारे अपने हैं सोचिए घर में मेहमान आए हों और उनके सामने भी घर के सभी सदस्य अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हों तो कितना अजीब लगेगा ना ये शिष्टाचार भी नहीं है इसलिए मोबाइल से दूर रहिए और मेहमानों का स्वागत कीजिए और घर आए मेहमानों का स्वागत आप कैसे करें ये आपको बता रही हैं श्रीमती कुसुम रावत आइए उनसे वार्ता सुनते हैं
3: बहनों मेहमान के अपने घर आने की सूचना मिलते ही परिवार में हलचल सी मच जाती है खुशी और उत्साह के साथ व्यवस्थाओं की तैयारियां तेज हो जाती हैं वे कब आएंगे किन कमरों में उन्हें ठहराया जाएगा कब तक रहेंगे क्या नाश्ता बनेगा इतने दिनों का क्या शेड्यूल होगा आदि आदि आज के व्यस्त समय में एक दूसरे के यहाँ आना जाना भले ही कम हुआ हो पर मेहमानों के प्रति प्रेम और आदर एवं सम्मान की भावना तो हम सबके दिल में रहती ही है हमारी संस्कृति में तो अतिथि देवो भवः की भावना समाहित ही है यहाँ मेहमानों का स्वागत केवल औपचारिकता ही नहीं बल्कि हमारे संस्कार प्यार आदर और अपनापन दिखाने का माध्यम होता है इसलिए मेहमानों का प्यार से सम्मान पूर्वक स्वागत करना हमारा कर्तव्य है मेहमान का अच्छा स्वागत उनके मन में आपकी अच्छी छाप छोड़ता है संबंध भी मजबूत करता है देखते हैं कि मेहमान के आने पर किस तरह से उनका स्वागत किया जा सकता है सबसे पहले तो अगर मुमकिन हो तो एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन या बस अड्डे पर उन्हें लेने जाया जाए छोटे शहरों में तो यही होता है इससे उन्हें अपना आदर होने की भावना महसूस होगी घर में आते ही उन्हें हंसते मुस्कुराते हुए नमस्ते प्रणाम चरण स्पर्श करके सम्मान देकर अंदर आने को कहने से मेहमान को भी अपनापन महसूस होता है आप जानते ही हैं कि हमारा देश विविधताओं से भरा है तो यहाँ अभिवादन के भी कई तरीके दिखते हैं जैसे गुजरात में जय श्री कृष्ण कहा जाता है पंजाब में सत श्री अकाल बोलकर नमस्ते करते हैं तमिल लोग वणक्कम कहते हैं राजस्थानी और मारवाड़ी लोग खम्मा घड़ी और राम राम सा के साथ अभिवादन करते हैं देश में ये भी प्रचलित है कि अगर कोई पहली बार घर में मेहमान बनकर आए तो तिलक और आरती से उनका स्वागत किया जाता है उनके ऊपर से जल के द्वारा नकारात्मक ऊर्जा उतार कर घर के अंदर प्रवेश करवाया जाता है विशेषकर दुल्हन दामाद नवजात शिशु आदि को इसके बाद मिठाई दही शरबत आदि देकर मुँह मीठा करवाते हैं दुनिया की अनेक जगहों पर भी अपनी प्रथाओं एवं परंपराओं के अनुसार मेहमान के अभिवादन के अलग अलग तरीके जानना रोचक होगा जैसे हमारे पड़ोसी देश तिब्बत में मेहमानों को सम्मान दिखाने के लिए हल्की मुस्कान के साथ अपनी जीभ दिखाई जाती है इसके पीछे

लगता है कि वे अच्छे और नेक मन से उनका स्वागत कर रहे हैं। ग्रीनलैंड की एस्किमो संस्कृति में मेजबान और मेहमान आपस में नाक रगड़कर अभिवादन करते हैं। यूरोपीय देशों में स्वागत करते हुए मेहमान के गालों को चूमा जाता है। चीन और जापान में मेहमानों के सम्मान में झुककर अभिवादन करते हैं। फिलीपींस में बुजुर्गों का स्वागत करते हुए उनके हाथों को अपने मस्तक पर लगाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। ये सब परंपराएं सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती हैं, साथ ही बताती हैं कि हर जगह प्यार, सम्मान और आत्मीयता महत्वपूर्ण है। अभिवादन के बाद अब मेहमानों को घर में आराम से बिठाकर मीठे के साथ पानी, ठंडा शरबत आदि देते हैं, ताकि वे घर के वातावरण के अनुरूप ढल सकें। दूर से आए मेहमानों को तरोताजा होने के लिए कहा जा सकता है। उसके बाद औपचारिक हालचाल जैसे यात्रा, स्वास्थ्य, परिवार के बारे में पूछना शिष्टाचार होता है। इस बीच चाय, कॉफी, नाश्ते का छोटा दौर उनकी थकान मिटाने और परिवार में रौनक बढ़ाने का काम करता है। इस दौरान बच्चे भी घुलने मिलने लगते हैं। मेहमानों से बातचीत में ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसी बात न की जाए कि वे असहज महसूस करें। घर के बच्चों को भी मेहमानों के आदर सत्कार में सम्मिलित करना चाहिए। उनसे छोटे छोटे काम करवाने चाहिए ताकि वे भी अपनापन महसूस करें। घर को साफ और व्यवस्थित रखा जाए ताकि दोनों पक्षों को अच्छा भी लगे, सामान लेने, प्रयोग करने एवं बताने में सहूलियत भी हो। उनकी सामान्य जरूरतों का ध्यान रखें, जैसे पानी, बिस्तर, बाथरूम की व्यवस्था, ताकि वे असुविधा में न पड़े, यानी कि छोटी छोटी जरूरतों पर भी ध्यान दें। उन्हें आरंभ में ही सब व्यवस्थाएं बता देने का उद्देश्य होता है कि वे सहज महसूस कर सकें एवं परिवार में हिल मिल सकें। इसके बाद तो जब तक वे रहेंगे घर में हंसी खुशी, अपनत्व, चहल पहल, रार तकरार व प्यार चलता ही रहेगा। भोजन में उनकी पसंद नापसंद के अलावा यह जानना भी जरूरी है कि उन्हें भोजन में किसी खाद्य पदार्थ से एलर्जी तो नहीं है। वे हल्का या गरिष्ठ कैसा भोजन लेते हैं, अगर वे संकोच ना करें तो किचन में भी उनकी सहायता ली जा सकती है। इससे बातचीत का सिलसिला बढ़ता है और मेजबान को भी सहायता मिलती है। मेहमान अगर घूमना चाहते हैं तो उनका साथ दिया जा सकता है। स्थानीय टूरिस्ट प्लेस, मंदिर, पार्क आदि घूमने जा सकते हैं। बाजार घूमना भी अच्छा रहता है। अब मेहमानों को भी जानने की कोशिश करते हैं। कुछ मेहमान तो खास होते ही हैं, जिनका हर समय इंतजार रहता है, जैसे भाई, बहन, मौसी, बुआ, चाचा, ताऊ आदि। हर छुट्टियों में इनका आना घर में उत्साह और उल्लास ला देता है। उनके लिए पूरे मन से तैयारियां की जाती हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं, जिससे घर में उत्सव जैसा माहौल रहता है। कुछ मेहमान होते हैं जिन्हें हमारे शहर में कुछ काम हो, उन्हें सहायता चाहिए हो, शहर उनके लिए अनजान हो, कोई एग्जाम देना हो आदि। ये मेहमान भी करीबी होते हैं या करीबियों के पहचान के हो सकते हैं। इनके आने पर कुछ औपचारिकताएं भी हो सकती हैं। घर में भी शांत शांत सा माहौल रहता है। कुछ मेहमान मजबूरी में मेहमान बनकर आते हैं, विशेषकर मेडिकल कारणों से, नौकरी के कारण या कुछ अन्य, जिनकी वजह से उन्हें ज्यादा दिन रुकना पड़ सकता है। इनका स्वागत भी औपचारिक होता है, पर उसमें दया भाव भी आ जाता है। और कुछ मेहमान चतुर मेहमान की श्रेणी में आते हैं, जो अपनी छुट्टियों में मनोरंजन तो चाहते हैं पर पैसा खर्च नहीं करना चाहते। वे पर्यटन वाले शहरों में रहने वाले संबंधियों से अच्छे संबंध रखते हैं और बिन बुलाए मेहमान बन जाते हैं। इनका उद्देश्य मेजबान से प्रेम एवं मिलना कम, अपना मकसद पूरा करना ज्यादा होता है। इन्हीं को कहा जाता है अतिथि तुम कब जाओगे। इनकी वजह से परिवार में क्लेश भी हो सकते हैं, पर औपचारिकतावश उनका स्वागत भी करना ही पड़ता है। जैसे स्वागत महत्वपूर्ण है, वैसे ही विदाई भी महत्व रखती है। मेहमानों को प्रेम पूर्वक विदा करना चाहिए। जाते समय उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार, रिश्ते के अनुसार उपहार या पैसे दें। तिलक लगाकर उनके दोबारा जल्दी आने की मनुहार के साथ दरवाजे तक छोड़ने जाएं, ताकि मेहमान को ऐसा न लगे कि वह मेजबान पर बोझ था या उसका आना उन्हें अच्छा नहीं लगा। अभी ये तो मेहमान के स्वागत विदाई की बातें हुई, मेजबान के प्रयासों संस्कारों की बातें हुई, लेकिन अच्छी मेहमान नवाजी पाने के लिए अच्छा मेहमान बनना भी आवश्यक होता है। इसके लिए जरूरी है कि अपने मेजबान के सत्कार, सम्मान और प्रेम को अच्छे मन से सराहा जाए। मेजबान के सामने स्वयं को बेहतर न बताएं, क्योंकि वह अपनी पूरी सामर्थ्य से आपका स्वागत कर रहा है। खान पान में भी नुक्स ना निकालें। मेजबान की दिनचर्या को ध्यान रखते हुए अपने नहाने खाने का समय रखें, अन्यथा गृहिणी तो रसोई में ही व्यस्त रह जाती हैं, फिर उन्हें मेहमान नवाजी बोझ लग सकती है। अपने बच्चों पर खुद नजर रखें कि वे घर पर नुकसान न करें। घर के कामों में भी हाथ जरूर बटाएं। अर्थात संक्षेप में

0: मेहमान को भी उचित और मर्यादित व्यवहार करना चाहिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार अतिथि जब अपनी चरण रज के साथ घर में प्रवेश करते हैं और आतिथ्य ग्रहण करते हैं तो अपना सारा पुण्य घर में छोड़ जाते हैं। इसीलिए कहा गया है अतिथि देवो भव। और अंत में बहनों, मेहमान का आना घर में रौनक और ताजगी लाता है, रोजमर्रा की एक रस जिंदगी में कुछ नयापन लाता है, कुछ नई ताजी, कुछ भूली बिसरी, कुछ रोचक, कुछ संजीदा बातें सबको खुश करती हैं, तरोताजा कर देती हैं। मेहमान जो कि थोड़े समय के लिए ही आते हैं, उनको अपनी सरलता और अपनेपन से यह जताना कि वास्तव में उनका आना आपको अच्छा लगा, आपके संबंधों रिश्तों को मजबूत बनाता है।
1: अभी आप श्रीमती कुसुम रावत से वार्ता सुन रही थी। घर आए मेहमानों का स्वागत कैसे करें? आपने कभी मेहमानों के आने का इंतजार किया है बहनों? यकीनन जरूर किया होगा। जोश और उमंग से भरा एक मीठा सा एहसास है ना, ऐसा ही होता है ना। सुनवाते हैं आपको ऐसा ही एहसास लिए ये प्यारा सा गीत।

साथ बने रहने के लिए शुक्रिया बहनों। और अब आपके लिए खास ब्यूटी टिप्स, जो बहुत ही आसान है। एक खीरा लें, खीरे को छील कर आधे खीरे को कद्दूकस करें और खीरे का रस निकाल लें। लगभग 2 चम्मच रस मिल जाएगा। उसमें आधा चम्मच दही मिला लें और फिर इसमें 1 चम्मच बेसन मिला लीजिए। बेसन की जगह पर आप चाहें तो चावल का आटा, मुल्तानी मिट्टी या फिर गेहूं का आटा भी मिला सकती हैं। अच्छी तरह मिक्स करें। चेहरे पर लगाने से पहले कद्दूकस किए हुए खीरे से चेहरे पर मसाज कीजिए, फिर ये पैक लगाइए। 10 से 15 मिनट के बाद साधारण पानी से धो लीजिए। चेहरे के दाग धब्बे तो दूर होंगे ही, चेहरे की रंगत भी निखरेगी। पर ध्यान रहे, पैस टेस्ट करना ना भूलें। कार्यक्रम के प्रति अपनी राय व प्रतिक्रिया हमें जरूर भेजें। आप हमें व्हाट्सएप कर सकती हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088-000-731, 7088-000-731। और पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम महिला जगत, द्वारा केंद्र निदेशक कार्यक्रम आकाशवाणी, निकट रिस्पनापुर, हरिद्वार बाईपास रोड, देहरादून। पिन है 248001। होगी आपसे फिर मुलाकात। अब अभिज्ञा को अनुमति दें। नमस्कार।

0: अभी बहने सुन रही थी कार्यक्रम महिला जगत। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। दोपहर के एक बजने को है, अब कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन ऑलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति ने गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
2: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
1: कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आज शाम विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने का निर्देश दिया है। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा यह सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
3: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
1: लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि उनका स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांग्रीला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड की रक्षा मंत्री डिलेन येसिलगो ज़ेगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने, सैन्य संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये भारत और नीदरलैंड के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों में निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है, जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी बारिश और बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4 लाख रूपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। गुजरात टाइटन्स आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। गुजरात टाइटन्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कल अहमदाबाद में फाइनल मैच 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:05 हुए हैं। अब श्रोता सुने उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल। पहले मुख्य समाचार। राज्य में पिछले 36 घंटों के दौरान 4 अलग अलग दुर्घटनाओं में 8 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 6 लोग घायल हुए हैं। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। और श्री केदारनाथ मंदिर में नई व्यवस्था के तहत सुगम दर्शन के लिए वीआईपी श्रद्धालुओं को 1100 रुपये शुल्क देना होगा। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में पिछले 36 घंटों के दौरान हुई 4 अलग अलग दुर्घटनाओं में 8 लोगों की मृत्यु हो गई है, जबकि 6 लोग घायल हुए हैं। एक रिपोर्ट।
5: चमोली जिले के लुआनी गांव के पास आज सुबह लगभग 4 बजे एक इको वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वाहन में सवार 6 लोगों में से 3 की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हुए हैं। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद एयर एम्बुलेंस के माध्यम से ऋषिकेश स्थित एम्स भेजा गया है। उधर अल्मोड़ा जिले में कल हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में ट्रैक्टर के गहरी खाई में गिर जाने से 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार हवालबाग विकासखंड के अंतर्गत अल्मोड़ा बागेश्वर मोटर मार्ग पर सुंदरपुर गांव से लगभग 8 किलोमीटर आगे बागेश्वर की जा रहा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर करीब 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। वहीं उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी के पास कल एक कार दुर्घटना में 2 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हुए हैं। बताया गया है कि गंगनानी से उत्तरकाशी की ओर आ रही कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। वाहन में कुल 5 लोग सवार थे। बचाव अभियान के दौरान एक महिला और एक पुरुष को मृत घोषित किया गया, जबकि 3 घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भटवाड़ी भेजा गया। इस बीच गंगोत्री धाम में गंगा घाट पर स्नान के दौरान एक महिला की नदी में डूबने से मृत्यु हो गई। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रवि।

0: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। महाधिवक्ता तुषार मेहता ने पीठ से कहा है कि सरकार युवाओं के लिए चिंतित है और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आगे ऐसी कोई चूक ना हो।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया X व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: रुद्रप्रयाग जिले में स्थित बाबा केदारनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए दर्शन व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं। श्री बद्री केदार मंदिर समिति यानी BKTC ने नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी कर दी है। नई व्यवस्था के तहत अब सुगम दर्शन के लिए VIP श्रद्धालुओं को ₹1100 शुल्क देना होगा। BKTC के मुख्य कार्याधिकारी सोहन सिंह रांगड़ ने बताया कि यह व्यवस्था यात्रा संचालन को अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित और समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से लागू की गई है। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या, खराब मौसम और लंबी कतारों की समस्या को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। चमोली जिले की नीति घाटी में कल से 2 दिवसीय नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड पर्यटन विभाग और भारतीय सेना के समन्वय से आयोजित ये प्रतियोगिता सीमा पर्यटन को बढ़ावा देने और सीमावर्ती क्षेत्रों को नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। अल्ट्रा रन में 75 किलोमीटर, 42 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की विभिन्न श्रेणियां शामिल हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले धावकों को ऊंचाई, कम ऑक्सीजन और बदलते मौसम जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना होगा। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का एक प्रमुख उद्देश्य सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना है। इस आयोजन के माध्यम से देश भर के लोग नीति घाटी की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता से परिचित होंगे।
3: 31 मई को अल्ट्रा मैराथन हमारे नीति क्षेत्र में प्लान है, जो UTDP के द्वारा की जा रही है और इसमें विभिन्न कैटेगरीज में धावक आ रहे हैं और इनके लिए हमारा प्रशासन व्यवस्थाएं बनाने में लगा हुआ है और इस अल्ट्रा मैराथन से हमारे नीति मरारी क्षेत्र को एक नई पहचान मिलेगी।
1: पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार ने बताया कि इस आयोजन के लिए सेना से समन्वय स्थापित कर सभी सुरक्षा के उपाय पूर्ण कर लिए गए हैं।
4: देखिए, अल्ट्रा मैराथन दौड़ जो हो रही है अपने आप में एक ऐतिहासिक और पाथ ब्रेकिंग दौड़ है, क्योंकि उच्च हिमालयी क्षेत्र में, लद्दाख के क्षेत्र में इस प्रकार का पहले दौड़ हुआ करती है। ये उत्तराखंड सरकार का एक बड़ा महत्वाकांक्षी प्रयास है, जिसमें स्थानीय वाइब्रेंट विलेज है हमारे, उनके लोगों को बीच में जो होना पुलिस के स्तर पर जो कार्रवाई हो रही है, पहला तो नियम साहब के माध्यम से सभी विभागों के साथ हमने समन्वय स्थापित किया है।
1: आज हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जा रहा है। इसी दिन वर्ष 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन शुरू किया था। यह दिवस हिंदी पत्रकारिता के योगदान, उसके इतिहास और समाज में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्मरण करने का अवसर देता है। हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में

0: मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता लोकतंत्र की सशक्त आवाज रही है और समाज में जन जागरूकता बढ़ाने तथा जन भावनाओं को अभिव्यक्ति देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता वर्तमान समय में समाज और शासन के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु के रूप में कार्य कर रही है। वहीं सूचना महानिदेशक बंसीधर तिवारी ने भी हिंदी पत्रकारिता दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि निष्पक्षता, विश्वसनीयता और जनहित की भावना आज भी पत्रकारिता की मूल आत्मा है। उन्होंने कहा कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना ही सफल पत्रकारिता की पहचान है और ये समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रभावी माध्यम भी है। अल्मोड़ा जिले में स्थित सेना मुख्यालय में आज 282 अग्निवीर शानदार परेड के साथ भारतीय सेना के अंग बने। रानीखेत के ऐतिहासिक सोमनाथ मैदान में अग्निवीरों ने देश सेवा की शपथ ली। अग्निवीरों ने आर्मी बैंड की धुन पर कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा की स्वर लहरियों के बीच पासिंग आउट परेड में मार्च पास्ट किया। इस अवसर पर केआरसी कमांडेंट ब्रिगेडियर गौरव बग्गा ने जवानों का हौसला बढ़ाया और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अग्निवीरों को पदक देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि कुमाऊं रेजिमेंट का गौरवशाली इतिहास रहा है। देश की सरहदों की सुरक्षा में केआरसी से प्रशिक्षण लेकर वीर सैनिक जुटे हैं, जो पूरे कुमाऊं के लिए गौरव की बात है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में पिछले 36 घंटों के दौरान 4 अलग अलग दुर्घटनाओं में 8 लोगों की मृत्यु हो गई है, जबकि 6 लोग घायल हुए हैं। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। और श्री केदारनाथ मंदिर में नई व्यवस्था के तहत सुगम दर्शन के लिए VIP श्रद्धालुओं को ₹1100 शुल्क देना होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। दोपहर के 1:15 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत जंगली फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत।

0: Future proof your career with UPES Dehradun, India's AI first university. Choose from 100 plus AI integrated programs across engineering, business, law, design, humanities and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 30th May. Apply now at upes.ac.in.
1: कार्यक्रम का ये गीत 20 साल बाद फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में शकील बदायूनी के बोल और हेमंत कुमार का संगीत

0: Future-proof your career with UPES, India's AI-first university. Choose from 100-plus AI-integrated programs across engineering, business, law, design, humanities, and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 30th May. Apply now at upes.ac.in.
1: कार्यक्रम में ये गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर के साथ हैं मोहम्मद रफी, शैलेंद्र के बोल हैं और शंकर जयकिशन का संगीत और फिल्म है ससुराल।

0: कोहिनूर फिल्म के इसी गीत के साथ श्रोताओं फिल्म संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। दोपहर के 1:30 होने को हैं। आइए सुनते हैं क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आज की इस विशेष परिचर्चा में। 30 मई की तारीख बड़ी खास है। 1826 में यानी आज से ठीक 200 साल पहले इसी दिन हिंदी का पहला समाचार पत्र छपा था। पत्र का नाम था उदंत मार्तंड, प्रकाशक और संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। कलकत्ता, जिसे अब हम कोलकाता कहते हैं, वहां से छपने वाला ये साप्ताहिक अखबार था और इसीलिए आज के दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन से हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत मानी जाती है। हमारे लिए ये न केवल हिंदी पत्रकारिता के गौरवशाली अतीत को याद करने का दिन है, बल्कि उसके वर्तमान और भविष्य के आकलन का दिन भी है। डिजिटल मीडिया और एआई के दौर में पत्रकारिता और पत्रकार दोनों के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। घटती विश्वसनीयता, फेक न्यूज, बदलती मीडिया संस्कृति और ऐसी बहुत सी बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। मैं हूं मुदिता और मेरे साथ हैं मेरे दो साथी पत्रकार गुणानंद जखमोला जी, जो कि पिछले कई दशकों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं, कई मीडिया संस्थानों से जुड़े रहे हैं और वर्तमान में स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर काम कर रहे हैं, और दूसरे जयवीर सिंह, जो कि युवा पत्रकार हैं, पत्रकारिता में स्नातकोत्तर के बाद पिछले कुछ समय से मीडिया के अलग अलग माध्यमों में कार्यरत हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का।
2: शुक्रिया।
3: शुक्रिया।
1: गुणानंद जी, आप पत्रकारिता से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग संस्थानों में पत्रकारिता की है आपने, क्या बदलाव देखते हैं?
3: मुदिता, जो पत्रकारिता का स्वरूप जो 200 साल पहले जब जुगल किशोर जी ने इसको शुरू किया था, वो उदंत मार्तंड को, तो अगर ये 200 साल की जो यात्रा देखें तो हिंदी पत्रकारिता को हम चार अलग अलग सेगमेंट में बांट सकते हैं। जो हमारी आजादी से पहले की जो पत्रकारिता थी, उसके बाद 1991 तक जो दूसरा स्वरूप था, तीसरा स्वरूप उसके बाद 2014 तक लिख सकते हैं, और 2014 के बाद की पत्रकारिता ये चौथा स्वरूप है। तो इसमें अलग अलग जो अंतर आया है, पहले जो थी मिशनरी पत्रकारिता थी, आजादी से पहले एक ही ध्येय था कि अंग्रेजों से हमने लड़ना है, और तब जैसे उदंत मार्तंड जो अखबार निकला वो 2 महीने में ही बंद हो गया, क्योंकि संसाधनों की कमी थी, ब्रिटिश हुकूमत वाले नहीं चाहते थे कि वो हैं, छुप के बढ़ता था अखबार, लेकिन वो पागलपन था पत्रकारों में, चाहे वो मखनलाल चतुर्वेदी हो, बाल गंगाधर तिलक हो या गणेश शंकर विद्यार्थी हो, तो उन्होंने चाहा कि अंग्रेजों के खिलाफ जो कुछ लोग जनमानस, आम जनमानस को हम जोड़ सके, तो उसका स्वरूप मिशनरी था, बहुत मतलब जनता की समस्याओं को, और उसका इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होता था, तो लोग संगठित हुए और एक मूवमेंट बना। महात्मा गांधी के टाइम पे भी बड़ी भूमिका रही, अखबार एस्टेब्लिश हो गए थे, चाहे हिंदुस्तान था या हिंदू था या जो वो थे, अखबार कई अंग्रेजी ज्यादा थे लेकिन हिंदी कम थे, लेकिन फर्क पड़ रहा था।

0: फिर जब देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के बाद एक बदलाव आया, तब हम आपस में, क्योंकि एक सत्ता और जनता के बीच जो पुल होना चाहिए था पत्रकारिता का, तो पत्रकारिता ने एक अच्छे से काम किया। पत्रकारिता का स्वरूप बिल्कुल चेंज हुआ जब आर्थिक उदारवाद आया 1991 में। जो 91 में जो बदलाव आया, तो उसमें ये हुआ कि जो मिशनरी, जो झोला छाप पत्रकारिता थी, वो कॉरपोरेट घरानों की पत्रकारिता में बदल गई। यानी पत्रकारिता का स्वरूप ये हो गया कि तब वो स्वरूप बदल गए कि खबरों का, खबरें व्यवसायिक दृष्टि से देखी जाने लगी और जनता कहीं ना कहीं गौण होती गई, जो मुख्य धारा के पत्रकारिता में ये बदलाव आया। और उसके बाद जब डिजिटल आज के जो युग में हुआ है, और जो मुख्य धारा का जो मीडिया है, खासकर हिंदी हुआ, तो टोटली डिपेंडेंट हो गया है। जो पुल का काम करना चाहिए था वो नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं व्यावसायिकता आ गई है। सीधे सीधे से अर्थों में ये है, क्योंकि जो पहले भूखे प्यासे पत्रकार कंधे पे झोला लटकाए चलते थे, अब टाई वाले और अब लाख रुपए सैलरी वालों की एक लंबी फौज है पत्रकारिता में। तो ये जो बदलाव आया है, तो इस बदलाव ने जनता की जो आकांक्षाएं, जो अपेक्षाएं हैं, जो जनता के, जो लोकतंत्र के मूल में भी चौथा स्तंभ इसलिए कहा गया कि मूल में जो है वो व्यक्ति है। तो पत्रकारिता के मूल में भी व्यक्ति था कि व्यक्ति के आधार पर समाचार का संकलन होगा, लेकिन अब बदल, इसके अर्थ अब बदले हैं। तो ये अंतर है
1: जी। तो जैसा आप कह रहे हैं कि पत्रकारिता जो पहले मिशन हुआ करती थी, अब व्यवसाय हो गई है। जयवीर, क्योंकि आप युवा हैं और अभी कुछ समय पहले आपने पत्रकारिता में मास्टर्स डिग्री ली है, तो हम आपके अनुभव के बारे में जानना चाहेंगे कि पत्रकारिता की पढ़ाई जो संस्थानों में है और न्यूज रूम की वास्तविकता जो है, उसमें कितना अंतर है?
2: मोदिता जी, बहुत अंतर है, क्योंकि जो न्यूज रूम की पत्रकारिता है उसमें आप डेटा को स्क्रीन पर देखते हैं, मोबाइल फोन्स में देखते हैं, लेकिन जो जमीनी स्तर की पत्रकारिता है वो बहुत अलग है। आप जमीन पर जाके लोगों की समस्याएं सुनते हैं, उनको जानने का अवसर आपको मिलता है, लेकिन आज के जो अधिकांश युवा वर्ग है वो बड़े शहरों में, बड़े संस्थानों के न्यूज रूम में बैठकर पत्रकारिता करना चाहते हैं। लेकिन आज भी भारत की जो आत्मा है वो गाँव में बसती है, और दूर दराज के गाँव में जाकर पत्रकारिता करना असल मायने की पत्रकारिता है। तो मुझे लगता है कि बहुत अंतर है, और अगर आपको वाकई पत्रकारिता करनी है तो आपको जमीन पर जाकर चीजों को समझना होगा, देखना होगा, और उसी के आधार पर आप अपने आप अपनी समझ को विकसित कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं।
1: जी गुणन जी, क्योंकि अब डिजिटल मीडिया का दौर है और जैसा हम सब जानते हैं कि पहले खबर देने की होड़ है वहां पर, हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज की होड़ भी देखी है, तो क्या इस होड़ में सही खबर या सत्यापन की जो जिम्मेदारी है मीडिया की, वो कहीं पीछे छूट गई है?
0: मुदिता, बिल्कुल ऐसा हो रहा है और लगातार हो रहा है। मतलब जो टीआरपी की जो अंधी दौड़ है ना, उसमें कहीं ना कहीं जो समाचार है वो ठीक है कि हम बहुत तेजी से सबसे पहले खबर देना चाहते हैं। कर्टेन रेजर होता था एक पहले, जो हिंदी अंग्रेजी पत्रकार जो प्रिंट मीडिया था, तो उसमें ये होता था कि आप फ्लैश दे देते थे कि ये घटना घटी है, लेकिन उसमें वास्तविकता होती थी। अब होड़ ये है कि कहीं पे कोई छोटी सी भी घटना होती है उसको इतना ज़्यादा बढ़ाकर बताया जा रहा है, बिना फैक्ट चेक किए, बिना जो फेक न्यूज का जो संकट आया है, ये तो ये टीआरपी और जल्दी सूचनाओं को प्रेषित करने की जो होड़ है, अंधी होड़, उसमें हुआ है, और इससे कहीं ना कहीं पत्रकारिता के मूल स्वरूप को और सिद्धांतों को ठेस पहुंची है और पहुंच रही है, और निकट भविष्य में और भी पहुंचती रहेगी।
1: जी जयवीर, सोशल मीडिया की हम जब बात करते हैं तो उसने पत्रकारिता को बहुत बदल दिया है, और आपकी पीढ़ी जो है वो तो सोशल मीडिया के साथ बड़ी हुई है। पहले क्या होता था कि अगर आपको पत्रकारिता करनी है तो आपको किसी अखबार, मैगजीन या रेडियो टीवी चैनल से जुड़ना होता था, लेकिन आज कोई भी व्यक्ति यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पर अपना चैनल बना सकता है, बहुत से न्यूज़ पोर्टल्स भी हैं, आप खुद भी ऐसे पोर्टल से जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूंगी कि हमारे श्रोताओं को, खासकर जो युवा श्रोता पत्रकारिता से जुड़ना चाहते हैं, उनको अपने अनुभवों के बारे में आप कुछ बताएं।
2: बिल्कुल मुदिता, पहले पत्रकारिता करने के लिए किसी संस्थान से जुड़ना होता था, उसके बाद आप पत्रकारिता कहीं ना कहीं

0: कर पाते थे, लेकिन आज सोशल मीडिया के दौर में वो संसाधन आप स्वयं से जुटा सकते हैं। बहुत कम संसाधनों में आप पत्रकारिता कर सकते हैं। उससे होता यह है कि आप गांव की खबरों को, जो मुख्य धारा के संस्थान है उनकी प्राथमिकता में छोटी खबरें नहीं होती हैं, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में आप तमाम खबरों को दिखा सकते हैं। और उससे आज बहुत सारे जो युवा हैं वो इस क्षेत्र में आ रहे हैं और अपना स्वयं का एक संस्थान कहीं ना कहीं वो चला रहे हैं। तो उससे आपका स्कोप बढ़ा है, आप पत्रकारिता का जो कैनवास है वो बढ़ा है, लेकिन बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। आप आर्थिक परिस्थितियों से आप जूझते हैं और कई बार सुरक्षा जैसे चीजों से आपको जूझना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि युवाओं को पत्रकारिता की तरफ आना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए, क्योंकि आज के इस डिजिटल दौर में जो सूचनाएं हैं वो कई बार भ्रामक होती हैं, और आज के दौर में कई बार खबरें दिखाई ही नहीं जाती बल्कि बनाई भी जाती हैं। तो एक युवा की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो उन भ्रामक सूचनाओं को आगे बढ़ने से रोके और उसका कहीं ना कहीं फैक्ट चेक की तरह उसे लोगों को दिखाएं। जिस तरीके से मुझे लगता है कि सिपाही बॉर्डर पर रहकर देश की सुरक्षा करता है, देश में घुसने वाले जो घुसपैठियां हैं उनको रोकता है, वैसे आज एक युवा पत्रकार की ये जिम्मेदारी है कि वो इस तरह की घुसपैठिया खबरों को, जो एक विशेष मकसद से समाज के बीच फैलाई जा रही है, उसको रोके। ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है अवसर बहुत हैं लेकिन चुनौतियां भी हैं, और उन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए उसको सीखकर युवाओं को पत्रकारिता की ओर आना चाहिए।
1: जी गुणानंद जी, टीआरपी और क्लिकबेट ने पत्रकारिता की गुणवत्ता को प्रभावित किया, ये हम सब जानते हैं। अब हर तरह की चीज़ कंटेंट है और उसी तर्ज पर लोगों ने ये भी मान लिया कि हर तरह की चीज़ न्यूज़ है। सोशल मीडिया पे ये हम अक्सर देखते हैं, तो इस ट्रेंड पर आप क्या कहेंगे और असल में न्यूज़ क्या है?
2: देखिए, न्यूज जो जब हम हमारे दौर में 90 के दशक में जब मैंने पत्रकारिता की थी, तो पत्रकारिता में हमें सिखाया गया था कि जो सबसे पहले जो आपको जानकारी है और आप उसको आगे प्रेषित कर रहे हैं तो वो न्यूज है, और वो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट जो वाला कंसेप्ट है तो उसे न्यूज माना गया। लेकिन आज जो संदर्भ बदला है, एक खबरों का संदर्भ बदल गया, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है तो एडिटर तो है ही नहीं। पहले ये होता था कि जो एक पत्रकार रिपोर्टर खबर लाता था वो डेस्क पे आती थी, डेस्क में सब एडिटर उस खबर को एडिट करता था, उसके बाद वो न्यूज एडिटर के पास जाती थी, फिर एडिटर के पास जाती थी, तो कई चेक पॉइंट थे, मतलब जगह जगह चेक होती थी कि खबर की विश्वसनीयता, तथ्य परखता, उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई, वो अच्छी खबर है तो उसको उस पर काम भी होता था। अब ये है कि टीआरपी और जो क्लिक बेट है उसमें ये है कि मुझे कितने लाइक्स मिलेंगे, मुझे कितने कमेंट मिलेंगे, तो उसके लिए वो किसी भी खबर को अनावश्यक तूल दे देते हैं। कई खबरें तो हम भी भ्रमित हो जाते हैं जो क्लिक बेट की जो बात कर रहे हैं। हमें सिखाया गया कि गुड इंट्रो होना चाहिए, हेडिंग आई कैची होनी चाहिए, लेकिन आज जो ये क्लिक बेट यानी थंबनेल है उसमें दिखाया जा रहा है कि उसने उसको पीटा, ईरान, हमने पाकिस्तान पे हमला किया और पाकिस्तान जा पहुंचे, तो वो मीडिया की विश्वसनीयता कि थंबनेल की कराची तक पहुंच गई हमारी सेनाएं। ईरान इराक के जैसे ईरान इसराइल और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है उसमें कि जी अब थर्ड वर्ल्ड वार होने वाला है, परमाणु की हो गई वहां, हार्मोज स्टेज पे ये स्थिति आ गई है कि कहीं पे भी कभी भी हमला हो सकता है ना। तो ये जो सेंसेशन क्रिएट करने की बात जो है, जो ये खूब वो पाठकों को या श्रोताओं को या दर्शकों को इस तरह से वो कर दो कि भाई वो आखिर तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि टीआरपी बनेगी तो उनके पैसे बनेंगे, विज्ञापन मिलेगा, और सोशल मीडिया पे तो फेसबुक और यूट्यूब वाले पैसे देंगे, इंस्टा वाले पैसे देंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं खबर पीछे है और ये जो क्लिकबेट और टीआरपी की जो है वो लड़ाई आगे है। मुदिता, एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूँ, हिंदी पत्रकारिता दिवस है और हिंदी ने हमें बहुत सम्मान से रोटी दी है, हजारों पत्रकारों को और हजारों लोग इससे जुड़े हुए हैं, मतलब आज भी लाखों लोगों के घर चलते हैं हिंदी से। हिंदी पे हमें गर्व है और हिंदी पत्रकारिता पे नाज है कि हम हिंदी पत्रकार हैं, और वो इसलिए कि हम अंग्रेजी को हिंदी तो कर पाते हैं लेकिन अंग्रेजी पत्रकार हमारी तरह हिंदी नहीं लिख पाते हैं। लेकिन हमारे गांव जो हैं आज भी अछूते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि सर्वे अगर आप देख लें तो 72% जो ग्रामीण पाठक है उन तक खबरें तो जाती ही नहीं है। आज भी अछूते हैं। मतलब हम केवल 28% लोग ही देश दुनिया की बातें जानते हैं, गांव में बिल्कुल सन्नाटा है। तो अगर सोशल मीडिया इस उसको

0: पॉजिटिव वे में लें, अगर सकारात्मक और रचनात्मक पत्रकारिता ग्रामीण वो हो तो बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है मुदिता कि ऐसा नहीं हो रहा है। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं अभी पौड़ी के एक घटना को दूंगा कि एक युवा ग्राम प्रधान और उसके बीच में जो झगड़ा हुआ तो उसमें मीडिया ने एक तरफा रिपोर्टिंग की, मतलब सोशल मीडिया हो प्रिंट मीडिया हो कोई गया ही नहीं किसी ने, जबकि पत्रकारिता के नियमों के अंदर अनुसार जो पत्रकारिता के सिद्धांत है उनमें ये कहा गया है कि वर्जन दोनों तरफ का होना चाहिए, तभी वो बैलेंस कवर होगी। जब अखबार का पेज बनता था तो ऊपर अगर हम एंकर लगाते थे, ऊपर एक टॉप बॉक्स स्टोरी होती थी, नीचे एंकर होता था, तो उसको ये करते थे कि बैलेंस पेज हो तो एक फोटो अगर ऊपर दिए तो एक फोटो नीचे भी दे, ताकि पेज एक तरफ झुके नहीं। अभी ये लोग तो पत्रकारिता पत्रकार जो हिंदी जिन्होंने प्रिंट मीडिया में काम किया उन्हें पता है कि बैलेंस पेज क्या होता है। तो आजकल ऐसा कुछ नहीं खबरों को एक तरफा, तो ये जो होड़ है ये खतरनाक है और चेक होना चाहिए सोशल मीडिया पे भी, ताकि फेक न्यूज, जैसे पीआईबी वाले बहुत अच्छा काम करते हैं, फैक्ट चेक करते हैं लोगों के बीच में, अच्छा काम करते हैं, तो इसमें मतलब मेरा ये कहना है कि कम से कम भ्रामकता दूर होनी चाहिए, सही खबर अगर जनता तक जाएगी तो जनता को ही फायदा होगा।
1: जी जयवीर, अभी गुणानंद जी ने बात की ग्रामीण पाठकों की, तो अंग्रेजी पत्रकारिता तो आमतौर पर शहरी पत्रकारिता मानी जाती है और इसलिए हिंदी और साथ ही वर्नाकुलर मीडिया जो है उससे ही अपेक्षा रखी जाती है कि वो गांवों और सुदूर इलाकों की आवाज बनेंगे। क्या हिंदी मीडिया ग्रामीण भारत की आवाज को पर्याप्त जगह देता है? और क्योंकि आप युवा पत्रकार हैं तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आज का युवा पत्रकार दूर दराज के गांव में जाकर रिपोर्टिंग करना चाहता है?
2: बिल्कुल, बहुत हद तक जो आज गांव की और दूर दराज की खबरें हैं उनको उठाया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। पहले क्या होता था, जो बड़े संस्थान होते थे उनकी प्राथमिकताओं में बहुत छोटी खबरें नहीं होती थी, लेकिन आज सोशल मीडिया के समय में वो छोटी खबरें जो समाज के बीच पहुंच रही हैं, सरकारों तक पहुंच रही हैं, और आज भी अगर आप देखेंगे उत्तराखंड जैसे प्रदेश में कि दूरस्थ जिलों में एक चमोली की महिला अपने जानवरों के साथ अगर जंगल में है, वहां भालू का आतंक हो गया तो अपना फोन निकालती हैं और सीधे फेसबुक या इंस्टाग्राम यूट्यूब के माध्यम से सीधे अपनी खबर को अपने स्तर पर प्रसारित करती हैं, बताती हैं कि भालुओं का हमला हो गया है, इससे हमें हमारी सुरक्षा होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये दायरा बढ़ा है लेकिन अभी बहुत स्कोप बाकी है।
1: जी, और क्या लगता है आपको कि क्या आज का युवा पत्रकार है वो दूर दराज के गांव में जाकर रिपोर्टिंग करना चाहता है?
2: अक्सर ये देखने को मिला है कि जो युवा पत्रकार हैं वो बड़े संस्थानों में एसी रूम्स में न्यूज रूम के अंदर बैठ के पत्रकारिता करना चाहते हैं। मैं युवा हूँ, पत्रकारिता अभी शुरू ही कर रहा हूँ। मैं उत्तराखंड के एक दूरस्थ इलाके में हाल ही में होकर आया, दारमा घाटी पिथौरागढ़ में पड़ता है। अगर आप न्यूज रूम से दारमा घाटी को समझने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि आप असफल रहेंगे, क्योंकि जब तक आप जमीन पर नहीं जाएंगे तब तक आप वहां की जो समस्याएं हैं, वहां की जो संस्कृति है, उनका जो रहन सहन है, उसको नहीं समझ पाएंगे। जितना मैं दारमा घाटी को स्क्रीन पे देखा था और किताबों में पढ़ा था, पूरी तरह से जो तस्वीर थी वो बिल्कुल अलग थी और वहां की जो समस्याएं हैं वो हमें अलग दिखी। और जो हम पढ़ते आए थे कि वहां पे जो उनके आर्थिक जो गतिविधियां हैं और किस तरह से उनके इनकम के सोर्सेस थे, लेकिन जब हम गए तो हमने देखा वो बिल्कुल पूरी तरह से बदल गया है। वहां पे पहले जो इनकम होती थी वो ट्रेड से होती थी, वो तिब्बत से व्यापार करते थे और हम उसी को पढ़ते हुए आए थे, लेकिन जब इस बार हम वहां गए तो हमें देखा कि वहां पे भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार की जो साझा एक परियोजना है, होम स्टे परियोजना, वहां का जो पूरा व्यापार है वो एक तरह से बदल गया है। वहां पे हर घर में होम स्टे बन गया है। तो ये चीजें आप तभी जान पाएंगे जब आप जमीन पे जाएंगे।
1: जी गुणानंद जी, इसी क्रम में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या सोशल मीडिया की चकाचौंध में जो ग्रास रूट जर्नलिज्म यानी जो जमीनी पत्रकारिता की अभी बात जयवीर भी कर रहे थे वो कहीं खो सी गई है?
0: मुनीता, बिल्कुल सही बात है। जो पत्रकार हैं, जो नई पीढ़ी के पत्रकार हैं, जो मैंने अनुभव किया है, क्योंकि मैं हर साल मैं कई कॉलेजों में मास कॉम के स्टूडेंट को पढ़ाता भी हूँ, कई हमारे पास इंटर्नशिप के लिए भी आते हैं, तो देखते हैं कि एक तो हर एक को एंकर बनना है, दूसरा ये है कि जो होमवर्क की, जैसे हम कहीं भी जाते थे तो होमवर्क करते थे, उसके उससे पहले उस विषय के बारे में उस व्यक्ति से जिसका हमने इंटरव्यू करना है तो होमवर्क करते थे, वो बिल्कुल नहीं है। मतलब पढ़ाई मुझे आश्चर्य होता है, मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के बच्चों को भी देखता हूँ, उनको भी इंटर्न कर वो करता हूँ, तो हमारे टाइम में बहुत बड़ी बात होती थी कि IMC का जो बच्चा है वो बहुत इंटेलिजेंट और वो माना जाता था, लेकिन अब सफा चट है। तो ये पत्रकारिता के लिए खतरा है कि आप उन लोगों को जो 90% जनता है उनका प्रतिनिधित्व पत्रकार करता है, 10% में तो नेता अफसर और एक जो अपर जीवन यापन करने वाले उच्च वर्गीय लोग होते हैं तो वो 10% में आते हैं, बाकी 90% का प्रतिनिधित्व पत्रकार करता है। और जो पत्रकार को बुनियादी समस्याओं का नहीं पता, जैसे दारमा घाटी की बात है, लिपुलेप की जो सड़कें हैं, जो तवा घाट की जो सड़कें हैं, जो पिथौरागढ़ से जो पिथौरागढ़ की ब्यूटी है, जो लोहा घाट के जो देवदार के जंगल है, अगर आप जाओगे नहीं तो आपको क्या पता लग रहा है। मतलब ये कि पत्रकार अगर जाएगा नहीं तो कुछ भी नहीं पता लगेगा, और पत्रकारिता तो ग्रास रूट पे ही होती है। तो डिजिटल मीडिया क्या है कि हमने कट कॉपी पेस्ट किया, हमने AI का उपयोग किया, मुझे एक खबर बनानी है कि हिंदी पत्रकारिता का स्वरूप क्या है, मैंने ChatGPT या किसी AI टूल की मदद ली और वो खबर बन गई। तो पत्रकारिता यही नहीं है, मैं युवा पत्रकारों को भी, क्योंकि चुनौतियां बढ़ रही हैं। अब हमारे टाइम में जब एक इंस्टीट्यूट से, जैसे मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने मास कॉम किया, तो हमारे टाइम पे 40 बच्चे निकलते थे टोटल, अब निकलते हैं 40,000। तो कंपटीशन का दायरा बढ़ा है, प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, तो चुनौतियां भी बढ़ी है, और आप जल्द से जल्द आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको सक्षम बनना पड़ेगा। आपको AI टूल का, अब देखिए AI से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन AI को हम खबरों के लिए नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग ने AI बनाया है, AI हम पे कंट्रोल थोड़ी करेगा, हम AI को कंट्रोल करेंगे, क्रिएटिव लोग, चाहे वो साइंटिस्ट है जर्नलिस्ट है, कम से कम ये उम्मीद की जाती है। तो ये हमारी सहायता के लिए कि आप डाटा ले सकते हो AI से। तो आज का पत्रकार ये है डिजिटल का कि जी तुरंत वो कर दो और फट से वो कर दो, आपका अंग्रेजी से हिंदी करना है, हिंदी से अंग्रेजी करना है AI टूल पे, लेकिन उसकी मौलिकता तो खत्म हो जाती है ना। तो वो स्वरूप अब बदल गया, अब आप पूरा इंग्लिश को कंटेंट लीजिए और उसको AI पे डालिए, वो हिंदी हो जाएगा, हिंदी का अंग्रेजी में हो जाएगा, लेकिन जब आप उनको खबर के रूप में वो करेंगे तो वो मतलब गुड इंट्रो कहाँ से लाएंगे, जो कहेंगे इंट्रो अच्छा होना चाहिए, हेडिंग आई कैची होनी चाहिए, तो वो सब नहीं मिलेगा अब किसी भी उसमें। ठीक है आप थंबनेल अच्छा बना दोगे, उसको सेंसेशन क्रिएट कर दोगे, लोग एक बार देखेंगे दो बार होंगे, लेकिन अगर कंटेंट अच्छा नहीं है आपका, आपने ग्रास रूट पे काम नहीं किया है, तो आप स्थान नहीं बना सकते। बहुत कंपटीशन है, मैं युवा पत्रकारों को चेतावनी दे रहा हूँ और बताता भी हूँ कि होमवर्क करिए, ग्राउंड पे जाइए, एक खबर को 10 बार लिखने की कोशिश कीजिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है या प्रिंट मीडिया का है या डिजिटल मीडिया का है। आपको इस फील्ड में बनने के लिए पढ़ना होगा, क्रिएटिव बनना होगा, गांवों तक जाना होगा।
1: जी बिल्कुल जयवीर, अभी गुणानंद जी ने बात की AI की, तो क्योंकि अब जो आपकी पीढ़ी है खासकर उसको AI के साथ तो चलना ही है, तो AI को आप चुनौती के रूप में देखते हैं या फिर एक मददगार टूल के रूप में?
2: मुदिता, ये एक तरह से दोनों ही चीजों में इसको देखा जा सकता है। अगर आप पूरी तरह से AI पर निर्भर रहेंगे तो ये एक चुनौती बन जाएगा आपके लिए, लेकिन आप इसका सही तरीके से उपयोग करेंगे तो ये आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। आप डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, आप एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन बिना मानवीय सहायता के AI कुछ भी नहीं कर पाएगा। AI आपका एक तरह से क्लर्क है, आप उससे मदद ले सकते हैं, लेकिन आप पूरी तरह AI पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। AI जो डेटा कलेक्ट करता है वो गूगल और तमाम अलग प्लेटफॉर्म से करता है, तो भ्रामक खबरें या भ्रामक चीजें भी गूगल्स वगैरह पे होती हैं। AI एक मशीनरी टूल है, वो भ्रामक चीजों को भी आप तक पहुंचा सकता है, आपको दे सकता है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसका फैक्ट चेक करें और AI की केवल मदद लें, उसके सहारे ना बैठें।
1: जी, तो अब हम आते हैं भाषा के सवाल पर। गुणन जी, एक समय हिंदी पत्र पत्रिकाओं के लगभग सभी संपादक या तो साहित्यकार हुआ करते थे या फिर वो हिंदी के बड़े विद्वान थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र से जो परंपरा शुरू हुई थी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, और फिर बाद में अज्ञे, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हो, मनोहर श्याम जोशी, धर्मवीर भारती, राजेंद्र माथुर और प्रभाष जोशी तक, मतलब बहुत एक बड़ी लंबी और बहुत बहुत प्रभावशाली परंपरा रही है। और एक जो ब्रिटिश कवि हैं मैथ्यू अर्नल्ड, उन्होंने कहा भी था कि पत्रकारिता जो है वो जल्दी में लिखा गया साहित्य ही है। आज जो हम देखते हैं कि ये हम भी मानते हैं कि पत्रकारिता में आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल तो किया जाना चाहिए, लेकिन आज अगर हम भाषा के स्तर पर देखें तो हर तरह के शब्द, हर तरह की भाषा का इस्तेमाल दिखाई देता है। हिंदी ही नहीं बल्कि अंग्रेजी के जो

0: ये अखबारें हैं, कई बार उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी जो भाषा दिखाई देती है उसमें वर्तनी की गलतियां यानी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, व्याकरण की गलतियां होती हैं। क्या आपको लगता है कि भाषा को लेकर पत्रकार अब इतना गंभीर नहीं रह गए हैं?
1: देखिए, जैसे मधिता, भाषा जो है, भाषा समाज का एक दर्पण है। जैसे पाली प्राकृत, अगर आप पहले देखें कि कौन सी वो, आज भी वो टपोरी, छपरी, संभ्रांत, इस तरह की भाषाओं में ये हो गया है कि समाज किस उसको अंगीकृत कर रहा है। हम जब हमने 90 के दशक में जो पत्रकारिता करते थे तो उसमें वर्तनी पे बड़ा जोर रहता था कि भाई नेशनल में, अगर हम नेशनल की बजाय कि हिंदी शब्दों का, जैसे मैं अमर उजाला में मैंने 8 8 साल काम किया, तो अमर उजाला में कई हमारे बड़े नामी पत्रकार थे, तो वो छोटी छोटी बातें कि कॉमा, फुल स्टॉप कहाँ पे होना चाहिए, वर्तनी में राष्ट्रीय में क्या आएगा, नेशनल में एक मात्रा आएगी या दो मात्रा आएगी, है अंतर्राष्ट्रीय में रा कहाँ आएगा, हेमकुंड साहिब इसमें भी वो है कि कुंठ होगा या कुंड होगा। तो वर्तनी और भाषा का सवाल था। तो और इस सब में बड़ा महत्व होता था राजेंद्र प्रसाद और राजेंद्र माथुर और प्रभात जोशी जी के साथ। मैंने कुछ समय में बातें भी की है, काम भी किया है मंगलेश डबराल जी के साथ में। तो उनसे हमने बहुत कुछ सीखा कि भाषा की शुद्धता और शब्दों का चयन और एक जो व्याकरण की गलतियों को दूर करना, तो वो चलता था उस समय। मेरे ख्याल से ये 2000 तक रहा। 2000 के भी बाद देखिए, हिंदी पत्रकारिता को जो स्वरूप बदला है, वो हिंदी पत्रकारिता और हिंदी पत्रकार टाइम्स ग्रुप को अपना आइडियल मानते हैं। तो नव भारत टाइम्स ने में IIM के बच्चे आए, 30 साल का बच्चा आया, उसने कहा नव भारत टाइम्स नहीं होगा। नव भारत टाइम्स नहीं होगा, इसका नाम होगा शॉर्ट NBT। जो राजेंद्र माथुर जी जिस नव भारत टाइम्स को क्लिष्ट हिंदी का और मतलब हिंदी साहित्य का एक दर्पण बनाना चाहते थे नव भारत टाइम्स को, तो जब IIM के बच्चे आए तो वो ब्रांड मैनेजर बने। ब्रांड मैनेजर उन्होंने कहा, संपादकों को कहा, नहीं ऐसे नहीं, ये आम बोलचाल की भाषा में अखबार निकलेगा, तो वो NBT हो गया।
0: जी, अभी आपने बात की गुणानंद जी की, जो पत्रकार हैं उनको अंग्रेजी ज्यादा आनी चाहिए, आजकल हिंदी के पत्रकार को भी। एक जो हम कई बरसों से एक चीज देखते आ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए हिंदी मीडिया में आज भी अंग्रेजी से अनुवाद पर निर्भरता है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था हो, विज्ञान तकनीकी जैसे क्षेत्र हो, वहां भी कमोबेश यही स्थिति दिखाई देती है कि वो अंग्रेजी में होंगी चीजें और उनको हिंदी में अनुवाद करके लाया जाएगा, प्रकाशित किया जाएगा। इसका क्या कारण है?
1: देखिए, मुदिता जयवीर ने अभी एक बात कही है कि न्यूज रूम से आप दरभा घाटी को नहीं देख सकते हो। तो ऐसी न्यूज रूम से ही सारी खबरें नहीं हो सकती है। तो हमने डेस्क क्या है, आज के युग में डेस्क मजबूत किया है, रिपोर्टिंग में काम नहीं हुआ है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय खबरें थी और जो इंटरनेशनल जो न्यूज़ मिलती हैं, जैसे BBC है या दूसरे वो हैं, और यूनिवार्ता, और उन्होंने राइटर ने वो कर दिया आपस में, भाषा ने, राइटर ने, इन लोगों ने पैक्ट किए कि हम हिंदी में आपको वो देंगे, अंग्रेजी न्यूज़ देंगे। वो वहाँ सब एडिटर होते थे, वो हिंदी में ट्रांसलेट करके और ये खबरें देते थे अंतर। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैंने वो दौर देखा है। वो दौर क्या, आज भी मैं देखता हूँ कि बिना अंग्रेजी अखबार का एडिटोरियल पढ़े हिंदी अखबार का संपादक एडिटोरियल नहीं लिख पाता। और ये मेरे सामने ही है, मैंने देश के कई महान संपादकों के साथ काम किया है और मैंने ये देखा है। और मैं ट्रांसलेशन में अच्छा था, तो मतलब बहुत सारे तो मैं ही करके देता था, फिर वो थोड़ा सा नुक्ता उक्ता लगा के और वो करके थोड़ी हेडिंग वेडिंग करके और उसको संपादकीय बना देते थे। तो ये होता होता रहा है और ये होता रहेगा, और जब तक रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग को हमने गौण कर लिया कि सारी बहसों को भी न्यूज रूम में बहस हो रही है और मान लिया है कि एंकर को पैसा दे दो सबसे ज्यादा और एंकर ही उसको चलाएंगे, चार लोगों को बिठा के और बहस होगी। तो रिपोर्टिंग जो है रिपोर्टिंग मजबूत होनी चाहिए। अब गाँव की खबर जैसे जयवीर धर्मा घाटी गया है, आज की तारीख में पत्रकारों को इतने संसाधन नहीं मिल रहे हैं, मतलब हिंदी पत्रकारों को जहां तक मैं बात करूं, अगर एक स्टोरी है अगर वो जैसे गोपेश्वर में आप उससे कहेंगे कि भाई आप देवाल चले जाओ, तो देवाल जाने के लिए वो जो 50-60 किलोमीटर का जो वो है पहाड़ी एरिया, तो उसका कन्विंस कौन देगा? पैसा तो हम सीमित ही दे रहे हैं ना उसे। तो ये समस्या आर्थिक संसाधन भी एक बड़ा युवा है और फिर पागलपन नहीं है। आजकल के पत्रकारों में, युवा पत्रकारों में ये होड़ है कि हम जल्दी से जल्दी नाम कमाएं, पैसा कमाएं, एसयूवी में चलना चाहते हैं मेरी तरह। तो मतलब मेरी तरह जो बूढ़े हो चुके पत्रकार हैं, तो वो लोग आज भी गाँव में जाके और खबरों के पड़ताल करना चाहते हैं, लेकिन युवा पीढ़ी में अभी ये है और उनके सामने संसाधनों की भी चुनौती है।
0: तो श्रोताओं, ये थी हिंदी पत्रकारिता दिवस पर हमारी विशेष परिचर्चा, जिसमें हमने मीडिया की विश्वसनीयता, भाषा, डिजिटल मीडिया, फेक न्यूज और बदलती मीडिया संस्कृति जैसे कई विषयों पर बात की। और इस पूरी परिचर्चा का हासिल ये रहा कि पत्रकारिता सिर्फ पेशा नहीं बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। तकनीक चाहे जितनी बदल जाए, पत्रकारिता का मूल उद्देश्य हमेशा सच और समाज के प्रति जवाबदेही ही रहेगा। तो इसी के साथ मुझे यानी मुदिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे पत्रकारिता दिवस पर क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। दोपहर के 2 बजने को है, अब कुछ ही पलों में समाचार होंगे।
3: This is Akashwani and I'm Shagun Chopra with the midday news. The headlines. Indian Army prepared for Operation Sindhu 2.0 if the situation warrants, says Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi. Myanmar President U Min Aung Hlaing begins his 5-day India visit with prayers at Mahabodhi Temple in Bodh Gaya, Bihar. Karnataka Congress Legislature Party to meet in Bangalore this afternoon to elect its new leader. At least 7 people killed in separate incidents of thunderstorms, rain and lightning across Bihar. US Defense Secretary Pete Hegseth says Washington is prepared to resume military action against Iran if efforts to reach a deal fail. And in women's cricket, India to take on hosts England in second T20 international of 3-match series in Bristol today. And now the news in detail. Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi today said that the Indian Armed Forces remain on high operational alert and are prepared for Operation Sindhu 2.0 if the situation warrants further military action. Addressing the passing out parade of the 150th course at the National Defence Academy in Kharakwasla, Pune, General Dwivedi said that Operation Sindoor demonstrated India's ability to respond to provocation with precision and resolve, setting a benchmark for the country's response to emerging security challenges. General Dwivedi said Operation Sindoor reflected the nation's resolve and underscored the importance of synergy among the armed forces.
4: As far as Operation Sindoor is concerned, firstly, it is still continuing. There is temporary cessation of hostilities. So the Indian Army or all the 3 services are preparing well for Operation Sindoor 2.0 if it takes place. Presently, we are looking at enhancing our synergy within the 3 services. We are looking at equipping ourselves for the next warfare. As I have told you, the next warfare will not be limited to the land, maritime and air alone. The new entries, that is the space, cyber and cognitive warfare, will play a very important role.
3: President of Myanmar U Min Aung Hlaing arrived today at Gaya in Bihar on a 5-day visit to India. He visited the world-renowned Mahabodhi Temple in Bodh Gaya and offered prayers at the sacred Buddhist site. He also meditated under the revered Bodhi tree where Lord Buddha is believed to have attained enlightenment. During his visit, the Myanmar president paid obeisance at the historic Sujata Temple in Bakoror and visited the Burmese monastery in Bodh Gaya. President U Min Aung Hlaing will arrive in New Delhi later in the day. He will meet External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar this evening. Tomorrow, the Myanmar President is expected to participate in the Myanmar-India Business Forum. On Monday, President U Min Aung Hlaing will hold discussions with Prime Minister Narendra Modi. The Karnataka Congress Legislative Party is scheduled to meet in Bangalore at 4 p.m. today to elect its new leader to succeed the outgoing Chief Minister, Mr. Siddaramaiah. Governor Thavarchand Gehlot has already accepted the resignation of Mr. Siddaramaiah, asking him to act as a caretaker until a new incumbent is chosen. Our correspondent reports that Mr. D.K. Shivkumar is likely to be formally elected as the new leader of the Congress Legislature Party. The 136 Congress MLAs have been asked to attend the CLP meeting. More from our correspondent.
5: Before being elected the CLP leader, D.K. Shivkumar met Governor to indicate the preferred days of swearing-in ceremony and venue. Once the CLP chooses its new leader, the swearing-in date and number of legislators to be sworn in will be finalized. The cabinet formation exercise has already started with many aspirants lobbying for ministerial berths. The government formation exercise is given priority so that Rajya Sabha and Legislative Council election next month could be given due importance. KPCC president's seat is likely to fall vacant after its present incumbent takes over as chief Minister. Sudhindra, Akashwani News, Bengaluru.
3: The National Testing Agency, NTA, has said that a technical glitch at the end of its technology partner TCS delayed the commencement of the Common University Entrance Test, UG 2026, at some examination centres today. In a social media post, the NTA said the issue has been resolved and the examination is being conducted with full compensatory time to ensure that no candidate is disadvantaged. The agency said the timing for the afternoon session has been revised. Candidates will be allowed entry from 2:30 p.m. while the examination will begin at 4 p.m. instead of the scheduled time of 3 p.m. NTA said candidates appearing in the morning session are being given the full duration of the examination and will be permitted to leave only after completing the paper. Chief of Defence Staff General Anil Chauhan today bid farewell to military service after receiving a ceremonial Tri-Services Guard of Honour at the National War Memorial in New Delhi. The ceremony marked the culmination of his distinguished tenure as the country's top military officer. After laying wreath at the War Memorial, General Chauhan said it was a matter of great honour for him to superannuate with the Tri-Services Guard of Honour. Marking his transition to civilian life after over four decades of service, General Chauhan described his tenure satisfying and excellent.
6: A matter of great honour for me to superannuate with the Tri-Services Guard of Honour. I thank the three services and headquarter IDS for it. With the conclusion of the Guard of Honour, I bid farewell to my colleagues in uniform, comrades in arms forever. I laid the wreath at the War Memorial for the last time in uniform as a humble tribute to those who laid down their lives in the line of duty. This is symbolic of my transiting from uniform to a civilian life. I had a very satisfying and an excellent tenure.
3: Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar today said that elections in India are conducted strictly in accordance with the Constitution, electoral laws and the transparent guidelines issued by the Election Commission. Addressing the second National Conference of Councils representing the Election Commission at the India International Institute of Democracy and Election Management in New Delhi, Mr. Kumar highlighted that around 1.8 crore personnel are deployed during Lok Sabha elections to ensure transparency, accountability and the conduct of free and fair polls.
7: Elections in India are held strictly as per the Constitution of India, electoral rolls, electoral laws and the transparent instructions issued by Election Commission of India from time to time. No right and no left. It's only law. It's only transparency. You know how many electors are there in India? You add the continent of America, North America, South America, the entire Europe, the entire Australia, the entire Africa, and still 8 crores counting. We are roughly 95 crores plus today.
3: The conference began with demonstrations and briefings on electoral roll management, special intensive revision and polling, and counting procedures. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. At least 7 people have been killed in separate incidents of thunderstorms, rain and lightning strikes across Bihar. 3 fatalities were reported.

0: Icon hosts England in the second T20 international in Bristol today, with the visitors aiming to seal a three-match series. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian Standard Time. India currently lead the series 1-0 after a commanding 38-run victory in the opening match in Chelmsford on Thursday. And in cricket, Gujarat Titans stormed into the final of the IPL 2026 with a commanding 7-wicket victory over Rajasthan Royals in qualifier 2 at New Chandigarh last night. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Indian Army prepared for Operation Sindhu 2.0 if the situation warrants, says Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi. Myanmar President U Min Aung Hlaing begins his 5-day India visit with prayers at Mahabodhi Temple in Bodh Gaya, Bihar. Karnataka Congress Legislature Party to meet in Bangalore this afternoon to elect its new leader. At least 7 people killed in separate incidents of thunderstorms, rain and lightning across Bihar. U.S. Defense Secretary Pete Hegseth says Washington is prepared to resume military action against Iran if efforts to reach a deal fail. And in women's cricket, India to take on hosts England in second T20 international of 3-match series in Bristol today. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंधु 2.0 के लिए तैयार। म्यांमार के राष्ट्रपति उ मिन आउंग लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। अमरीका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा, अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमरीका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करेगा। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की टी20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंधु 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंधु ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान अब भी जारी है।
2: As far as Operation Sindoor is concerned,
3: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
1: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवक के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
4: मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर मी, मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
1: लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य जनरल चौहान का स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांगिला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड्स की रक्षा मंत्री दिलेन

0: गो जिगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। यह भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन ऑन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गया जी एयरपोर्ट पहुंचे। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति यू मिन ऑंग हलाइंग विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना किया। साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा किया। राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्टमंडल भी मौजूद था। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
0: राष्ट्रपति ऊ मिन ऑन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से भी वो मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति ऊ सोमवार को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़न एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से निर्वाचित किए जाने की संभावना है।
2: आज डीके शिवकुमार राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मिले। स्वेयरिंग इन सेरेमनी के दिनांक और जगह के बारे में चर्चा करने वे लोक भवन गए थे। इस बार युवा विधायकों को अवसर मिलने की संभावना है। अगले महीने राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होने के कारण जल्दी से जल्दी सरकार बनाने का प्रक्रिया समाप्त करने पर गौर किया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: कांग्रेस के 136 विधायकों को विधानसभा बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह गुर्जेवाला कार्यवाही का अवलोकन करेंगे। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष ज्ञान पुनरीक्षण एसआईआर अभियान शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की परीक्षा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि उसके साझेदार टीसीएस की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की शुरुआत देरी से हुई। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को असुविधा न हो परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि दोपहर के सत्र का समय संशोधित किया गया है। विद्यार्थियों को दोपहर 2:30 बजे से प्रवेश दिया जाएगा जबकि परीक्षा निर्धारित समय 3 बजे के बजाय 4 बजे से शुरू होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि

0: उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,46,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सभा में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने गोवा को एक आदर्श राज्य बताया जिसने विकास और अपनी समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि गोवा इस बात का प्रेरणादायी उदाहरण है कि पहचान और प्रगति साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकती हैं। पणजी के कला अकादमी में गोवा के 40वें राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा ने आधुनिक विकास को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सफलतापूर्वक संरक्षित रखा है। गोवा केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक सद्भाव और बौद्धिक खुलेपन से निर्मित एक जीवंत सभ्यता है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, स्मारक डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किए, पुरस्कार और नियुक्ति पत्र वितरित किए तथा दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत बढ़ी हुई सहायता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकसित गोवा आवश्यक है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका के सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेक्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमरीका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्री हेक्सेथ ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में शामिल होने के बावजूद अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए हुए है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे की बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर चर्चा की गई। सिचुएशन रूम में हुई बैठक को स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और तटीय कर्नाटक में भी वर्षा की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओले पड़ने का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
2: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेत जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मार्तंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से नींव रखी। उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ ये सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिसंबर 1827 को उदंत मार्तंड का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ जिसमें श्री शुक्ल ने लिखा कि आज दिवस लो उग्यो मार्तंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिनकर दिन अब अंत। समाचार पत्रों से शुरू हुआ सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हालांकि इस

0: के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी। साहस की कलम से किसी ने क्या खूब लिखा है, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
1: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिंट ऑयल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सभी सैनिक साथियों को जय हिंद। सैनिक साथियों, आज के कार्यक्रम के साथ मैं आपकी रेडियो सखी श्रुति शर्मा आपके साथ जुड़ रही हूं आज के कार्यक्रम को लेकर। सैनिक साथियों, हिमालय की ऊंची चोटियां केवल बर्फ से नहीं वीरों के साहस और बलिदान से भी चमकती हैं, और इसमें देवभूमि उत्तराखंड को केवल ऋषियों और तीर्थों की भूमि नहीं कहा जाता, बल्कि ये वीरों की धरती है। यहाँ का लगभग हर गांव देशभक्ति की कहानियों से जुड़ा है। उत्तराखंड ने भारतीय सेना को ऐसे अनेक जांबाज सैनिक दिए जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। उत्तराखंड की धरती से निकले वीर सैनिकों की सूची बहुत लंबी है, पर इनमें से विशेष रूप से याद किए जाते हैं मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर राजेश सिंह अधिकारी, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, जनरल विपिन रावत और मेजर सुधीर कुमार वालिया, जिनका नाम गर्व से लिया जाता है। ऐसे कई अनेक वीर सैनिक हैं जो हमारी यादों में, हमारे संस्कारों में जुड़े हुए हैं। गढ़वाल और कुमाऊं की वादियों में बचपन से ही अनुशासन, कठिन परिश्रम और देश सेवा की भावना विकसित रही है। यही कारण है कि यहाँ के युवा बड़ी संख्या में सेना में भर्ती होकर राष्ट्र की सुरक्षा का दायित्व निभाते हैं। कारगिल युद्ध हो 1965 और 1971 या फिर आतंकवाद विरोधी अभियान, उत्तराखंड के सैनिकों ने हर मोर्चे पर अदम्य साहस का परिचय दिया। उनकी वीरता की गाथाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा ही प्रेरणा स्रोत रही हैं। जहां हिमालय सिर ऊंचा करके खड़ा है, वहीं वीरों का साहस भी आसमान को छूता है। उत्तराखंड के वीर सैनिक हमें यह संदेश देते हैं कि मातृभूमि से बढ़कर कुछ नहीं है। उनका त्याग, समर्पण और बलिदान राष्ट्र की अमूल्य धरोहर है। आज ऐसे ही एक वीर सैनिक की बात हम करेंगे, मेजर राजेश सिंह अधिकारी। आगे भी इन पर विशेष बात होती रहेगी, पहले आपको सुनवाते हैं ये गीत।

मेजर राजेश सिंह अधिकारी भारतीय सेना के उन वीर सपूतों में से एक हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। मेजर राजेश सिंह अधिकारी का जन्म 25 दिसंबर 1970 को उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित सुरम्य पहाड़ी कस्बे नैनीताल के तल्लीताल में हुआ था। पहाड़ियों के शांत और अनुशासित वातावरण में पले बड़े मेजर राजेश सिंह अधिकारी ने बचपन से ही दृढ़ संकल्प, साहस और देशभक्ति के गुण विकसित किए। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नैनीताल के सेंट जोसेफ कॉलेज से प्राप्त की और बाद में सरकारी इंटर कॉलेज से माध्यमिक शिक्षा पूरी की। एक मेधावी और समर्पित छात्र होने के नाते उन्होंने कुमाऊं विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की और 1992 में स्नातक की उपाधि ली। बचपन से ही मेजर राजेश सिंह अधिकारी का भारतीय सेना में अधिकारी के रूप में देश सेवा करने का सपना था। इसी सपने और अटूट दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की। उनकी ये ख्वाहिश तब पूरी हुई जब उनका चयन प्रतिष्ठित भारतीय सैन्य अकादमी में हुआ, जहां उन्होंने कठोर सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया जिनसे उन्हें एक अनुशासित और सक्षम अधिकारी के रूप में ढाला। 11 दिसंबर 1993 को महज 23 वर्ष की आयु में उन्होंने भारतीय सेना की द्वितीय मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन में कमीशन प्राप्त किया। एक युवा अधिकारी के रूप में उन्होंने अपने साहस, पेशेवर दक्षता और कर्तव्य निष्ठा के बल पर अपने साथियों और वरिष्ठ अधिकारियों का सम्मान शीघ्र ही अर्जित कर लिया। अगले 5 वर्षों में उन्होंने विभिन्न सैन्य अभियानों में सेवा करते हुए भारतीय सेना की गौरवशाली परंपराओं को कायम रखा।

मेजर राजेश सिंह अधिकारी ने भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए देहरादून से प्रशिक्षण प्राप्त किया और 11 दिसंबर 1993 को भारतीय सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त किया। बाद में वे 18 ग्रेनेडियर्स बटालियन से जुड़े। अपने कर्तव्यनिष्ठ स्वभाव और नेतृत्व क्षमता के कारण वे अपने साथियों के बीच अत्यंत सम्मानित थे। श्रोताओं, कारगिल की बर्फीली चोटियों पर लड़ी गई ये लड़ाई केवल जमीन की नहीं बल्कि साहस और धैर्य और बलिदान की परीक्षा थी। तोतोलिंग की ऊंचाई लगभग 15,000 से 16,000 फीट थी। दुश्मन ऊंचाई पर मजबूत बंकर बनाकर बैठा हुआ था और नीचे चढ़ाई करने वाले भारतीय सैनिकों पर लगातार गोलीबारी कर रहा था। ऐसे कठिन हालात में भारतीय सेना को सीधी चढ़ाई करते हुए हमला करना पड़ा। मेजर राजेश सिंह अधिकारी और उनकी 18 ग्रेनेडियर्स बटालियन को तोलोलिंग पर कब्जा वापस लेने का दायित्व मिला। 30 मई 1999 को उन्होंने अपनी टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए दुश्मन की अग्रिम चोटियों पर हमला किया। भारी गोलीबारी के बीच उन्होंने अपने जवानों का नेतृत्व

किया, दुश्मन के बंकरों पर धावा बोला और गंभीर रूप से वो घायल भी हो गए। तोलोलिंग की लड़ाई लगभग एक महीने से अधिक समय तक चली। कई बार भारतीय सैनिकों ने हमला किया, लेकिन दुश्मन की मजबूत स्थिति और कठिन भूभाग के कारण सफलता तुरंत नहीं मिली। अंततः भारतीय सेना ने जबरदस्त साहस और रणनीति के बल पर तोलोलिंग पर तिरंगा फहरा दिया। ये कारगिल युद्ध की पहली बड़ी जीत मानी जाती है और इसी जीत ने आगे टाइगर हिल जैसे अभियानों का मनोबल बढ़ाया। उसमें एक भावुक प्रसंग भी है कि युद्ध के दौरान मेजर राजेश अधिकारी को उनकी पत्नी का एक पत्र मिला। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि मिशन पूरा होने पर वो शांति से इसे पढ़ेंगे, लेकिन वे वीर गति को प्राप्त हुए और पत्र उनकी वर्दी की जेब में ही मिला। ये घटना आज भी कारगिल के सबसे भावुक प्रसंगों में गिनी जाती है। कुछ इतिहास जीते हैं और कुछ बलिदान और अमर गाथा बनकर इतिहास बन जाते हैं। तोलोलिंग की विजय दोनों का ही संगम थी।

दुश्मनों की लगातार गोलीबारी और कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपने साथियों का नेतृत्व करते हुए दुश्मन की चौकियों पर धावा बोल दिया। गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी वे अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाते रहे। अंततः 30 मई 1999 को वे मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इस अद्वितीय वीरता एवं नेतृत्व के लिए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया। मेजर राजेश सिंह अधिकारी केवल एक सैनिक नहीं है बल्कि साहस, कर्तव्य और राष्ट्रभक्ति के जीवंत प्रतीक हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि देश के लिए समर्पण का कोई विकल्प नहीं होता। इस वीर सैनिक को हमारी ओर से शत शत नमन है।

अदिति साहस नेतृत्व और कर्तव्य निष्ठता का प्रदर्शन करते हुए अंततः वे अपनी चोटों के कारण शहीद हो गए। टोलिंग का युद्ध कारगिल युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण और भीषण युद्धों में से एक है और इसमें मेजर राजेश सिंह अधिकारी की भूमिका वीरता और बलिदान का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। एक निडर सैनिक और दृढ़ निश्चयी अधिकारी, उन्होंने आगे बढ़कर नेतृत्व किया, अपने सैनिकों को व्यक्तिगत वीरता के लिए प्रेरित किया और भारतीय सेना की सर्वोच्च परंपराओं का पालन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। उनके बलिदान को साहस, नेतृत्व और अटूट देशभक्ति के प्रतीक के रूप में हमेशा याद किया जाता रहेगा। मेजर राजेश सिंह अधिकारी को उनकी असाधारण वीरता, नेतृत्व और सर्वोच्च बलिदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें महावीर चक्र एक प्रमुख पदक है। भारतीय सेना के उन सूरवीर अधिकारियों में गिने जाते हैं मेजर राजेश सिंह अधिकारी, जिनकी वीरता, नेतृत्व क्षमता और कर्तव्य निष्ठता आज भी देशवासियों को प्रेरित करती है। कारगिल युद्ध के दौरान उन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए दुश्मन के मजबूत ठिकानों पर हमला किया और अपने साथियों का नेतृत्व करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए।

श्रोताओ, कुछ लोग अपनी उम्र से नहीं अपने साहस और बलिदान से इतिहास लिखते हैं। मेजर राजेश सिंह अधिकारी ऐसे ही अमर वीरों में से एक थे जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। मेजर राजेश सिंह अधिकारी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व केवल आदेश देने में नहीं बल्कि सबसे आगे बढ़कर उदाहरण प्रस्तुत करने में है। कठिन परिस्थितियों में भी उनका धैर्य, आत्मविश्वास और देश प्रेम अद्वितीय था। उन्होंने अपने कर्तव्य को सर्वोपरि माना और राष्ट्र की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। आज जब हम उनके जीवन को याद कर रहे हैं तो केवल एक सैनिक नहीं बल्कि साहस, समर्पण और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक को नमन कर रहे हैं। उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश देता रहेगा कि देश की आन बान और शान के लिए दिया गया योगदान कभी व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि कुछ दीपक ऐसे होते हैं जो स्वयं जलकर युगों तक उजाला दे जाते हैं और कुछ वीर ऐसे होते हैं जो अपने प्राणों का बलिदान देकर राष्ट्र की आत्मा को अमर कर जाते हैं। मेजर राजेश सिंह अधिकारी ऐसे ही अमर सपूत हैं।

वो मिट गए वतन पर यही उनकी निशानी है, तिरंगे की हर लहर में उनकी अमर कहानी है। नमन है उस वीर को जिसने हंसकर प्राण गवाए, भारत माँ के चरणों में जीवन पुष्प चढ़ाए। वीर सपूत मेजर राजेश सिंह अधिकारी, आपको शत शत नमन है।

0: अभी सैनिक साथी सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं। आइए सुनते हैं पत्रकारिता के 200 वर्ष के उपलक्ष पर विशेष भेंट वार्ता। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर वरिष्ठ पत्रकार श्री संजीव कंडवाल से संकल्प मिश्रा की बातचीत।
1: नमस्कार। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं श्री संजीव कंडवाल। आप पेशे से उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार हैं और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। समसामयिक जो स्थिति है भारत में और खासकर उत्तराखंड में पत्रकारिता की, उस पर हम बात करेंगे। सोशल मीडिया और इंटरनेट एज में पत्रकारिता के व्यवहार में कितना बदलाव आया है, पत्रकारिता में कितना बदलाव आया है, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। और आने वाले दशकों में पत्रकारिता का स्वरूप कितना बदल सकता है, कितने स्थानीय मुद्दे उठाए गए हैं, पत्रकारिता कितनी लोकलाइज्ड होती जा रही है, इसके बारे में भी आज आपसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले संजीव जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद संकल्प जी, और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। नमस्कार।
1: संजीव जी, आपका एक लंबा दौर रहा है पत्रकारिता के साथ, लंबा अनुभव रहा है। जब आप पत्रकारिता की आपने शुरुआत की थी, तब से आज हम 2026 में बात कर रहे हैं, पत्रकारिता में व्यवहारिक रूप में आप कितना बदलाव देखते हैं?
2: बहुत सारे बदलाव हमने देखे हैं। मुझे ऑलमोस्ट 2.5 दशक इस फील्ड में हो गया है। बाहर से दिखने वाले ही स्वरूप में अगर हम बात करें तो उस समय मुख्य तौर पर रेडियो, उसके बाद अखबार, उसमें मतलब एक तरह से जो मीडिया का जो मुख्य जो चेहरा था वो अखबार थे, और टीवी चैनल उस दौर में शुरू हो गए थे लेकिन एक शैशव काल में ही थे, तो एक फेज था अखबार। आज जब 2.5 दशक बाद प्रिंट मीडिया पीछे की तरफ हट गया है और लगभग मतलब आप कह रहे हैं कि शायद प्रिंट खत्म हो जाएगा 2040 के आसपास तक, टीवी चैनल आए और लगभग मतलब अब सिमटने के दौर पे हैं, चल रहे हैं, कितने चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, वो अलग तरह के गणित है, बट किसी रूप में चल रहे हैं। रेडियो अभी भी किसी रूप में चल ही रहा है, बट जो तब नहीं था वो था डिजिटल मीडिया, और आज पूरी तरीके से डिजिटल मीडिया हावी है। एक बदलाव तो ये है, एक बदलाव ये है कि उस दौर में जो भी था मीडिया था या पत्रकारिता थी, एक तरह से मुख्य तौर पर संस्थागत पत्रकारिता थी। आज वो बात नहीं है संस्थागत पत्रकारिता की, आज लोग व्यक्तिगत तरीके से भी काम कर रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म होने के कारण लोग व्यक्तिगत तौर पर भी काम कर रहे हैं और बहुत प्रभावी तरीके से काम कर रहे हैं। मोटा मोटा ये बदलाव मैं बाहर से अब देख रहा हूं कि तो संस्थागत जो चीजें हैं अब वैसी नहीं है। आप व्यक्तिगत तौर पर भी आप चेंज सकते हैं, जर्नलिज्म कर सकते हैं, गुड जर्नलिज्म कर सकते हैं। और दूसरी बात ही कि तब डिजिटल मीडिया नहीं था, अब डिजिटल मीडिया आ गया है, तो एक बदलाव मुख्य तौर पर ये नजर आ रहा है।
1: हम डिजिटल मीडिया की बात कर रहे हैं और संस्थागत पत्रकारिता से अब व्यक्तिगत रूप में पत्रकारिता सबको मंच दे रही है। आप व्यक्तिगत रूप से आकर के पत्रकारिता कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को बढ़ावा मिलता है। तो हम ऐसा नजर आता है कि पत्रकारिता का लोकतंत्रीकरण हुआ है, ज्यादा लोगों के पास ये चॉइस आई है कि अब वो पत्रकार बन सके। इस बदलाव को आप एक वरिष्ठ पत्रकार के नजरिए से इसे कैसे देखते?
2: फिर से मैं कहना चाहूंगा कि इसके दोनों ही पहलू हैं। आपने जैसे कहा कि ये सच बात है कि लोकतांत्रिककरण हुआ है, अब खबर किसी की बपौती नहीं रही, अगर मैं इसको बहुत देसी भाषा में कहूं, या किसी का उसमें मतलब एकाधिकार नहीं रहा कि वो जो बोलेगा वही, जो चाहेगा वही छापेगा या जो नहीं चाहेगा वो नहीं छपेगा। अब ऐसा नहीं है। अब खबरें जो मुख्य धारा के जो अखबार हैं, टीवी चैनल हैं या दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन तक बाद में आती हैं, पहले वो किसी अननोन सोर्स से आती है, वो कोई एक आम आदमी ही होता है। तो ये सिटीजन जर्नलिस्ट हो गए हैं, मतलब चाहे वो लोग पत्रकारिता में नहीं भी कर रहे हो, लेकिन किसी भी आदमी ने किसी भी रूप में अगर कोई एक वीडियो बना लिया है, नोइंगली या अननोइंगली अगर कोई वीडियो बना लिया, उसने वो अपलोड कर लिया, वो पत्रकार नहीं है, उसे नहीं है पता कि उस घटना की न्यूज सेंस क्या है, लेकिन अगर उसने वो वीडियो शूट कर लिया है, अपलोड कर लिया है, तो वो सबसे बड़ा न्यूज मेकर उस दिन का बन जाता है। और हम कई बार देखते हैं कि ऐसे बहुत आम आदमी के वीडियोस से बड़ी बड़ी खबरें निकलती हैं। तो लोकतांत्रिककरण तो हुआ है, इस बात में सच है कि अब जो है किसी के खबर चाहने से रुकेगी नहीं, लेकिन एक दूसरा पहलू भी है कि ये जो लोकतांत्रिककरण हुआ है, इसमें अब मैंने कहा कि एक संस्थागत पत्रकारिता के बजाय व्यक्तिगत पत्रकारिता का भी ये दौर आ गया है, लेकिन इसमें एक रिस्क ये है कि जब व्यक्तिगत पत्रकारिता मैं करता हूं तो मेरे पास कोई चेक करने वाला कोई सिस्टम नहीं है, मेरा कोई संपादक नहीं है। मैं कितना ही, मैं 2.5 दशक पुराना पत्रकार हूं, मैं एक संपादक के स्तर का आदमी हूं, बट मैं अगर कोई खबर लिखूंगा तो आइडियली मेरी खबर को भी चेक करने वाला कोई संपादक होना चाहिए, कहीं पर एक लेवल होना चाहिए। लेकिन ये जो व्यक्तिगत पत्रकारिता, ये सिटीजन जर्नलिज्म है, इसमें ये वाला बैरियर नहीं है, इसमें आप ही एक रिपोर्टर भी हैं, आप ही संपादक भी हैं, आप ही मुद्रक भी हैं, तो जब आपकी खबर पे कोई नजर रखने वाला नहीं होता है, कोई चेक करने वाला नहीं होता है, कोई क्रॉस क्वेश्चन करने वाला नहीं होता है, तो फिर उसमें खतरा यह होता है कि कई बार आप जो हैं, आपसे वो खबरें जानबूझकर भी और अनजाने में भी ऐसी चीजें चली जाती हैं कि जो तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होती हैं या जो भ्रामक हो सकती हैं, हो जाती हैं। कई बार ये अनजाने में होता है और कई बार जानबूझकर भी हो जाता है कि आपको पता है लेकिन आपको कोई रोकने वाला नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कोई बात नहीं, अगर ये एक बायसनेस के साथ भी लोग खबरें चलाते हैं क्योंकि उनको कोई रोकने वाला तो है नहीं, तो ये उसका एक नकारात्मक पहलू भी है। और मुझे लगता है कि जहां लोकतांत्रिककरण हुआ है वहीं एक तरह से इसमें ये स्वच्छंदता भी बढ़ी है जो कि खतरनाक है।
1: पत्रकारिता की जो स्थिति है लोगों में आज भी, पत्रकारिता के बहुत संवेदनशीलता है, उसका महत्व लोगों के बीच में आज भी उतना ही है जितना आजादी से पहले था। लेकिन पत्रकारिता का एक मजबूत स्तंभ हम अगर बात करें तो पत्रकारिता में एथिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। संस्थागत पत्रकारिता की बात करें तो जब कुछ दशकों पहले, हम एक दशक पहले की ही बात करें, जब इंटरनेट एज नहीं आया था, तब तक पत्रकारिता में एथिक्स की समझ एक संस्थान देता था, पत्रकारिता के इदारे देते थे कि जब आप बाहर निकले संस्थान से तो पत्रकारिता करें लेकिन एथिक्स की जो बाउंड्रीज हैं उनको समझते हुए करें। अब चूंकि सोशल मीडिया के आने से लोगों के हाथ में टीवी आ गया है और कैमरा भी आ गया है, तो कोई भी पत्रकार कहला सकता है। ये बाउंड्रीज बहुत ही लूजेंड हो गई है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं, किस तरीके से एथिकल स्ट्रक्चर है पत्रकारिता का, उसको रीएस्टैब्लिश किया जा सकता है?
2: देखिए, एक घालमेल टाइप का हुआ है कि सिटीजन जर्नलिस्ट, ठीक है, मैंने कहा कि पत्रकारिता का लोकतांत्रिकरण तो हुआ ही है कि आम आदमी भी उस खबर को कर लेता है, लेकिन उसको एक सोर्स के तौर पे ही देखना चाहिए, उसको हम एक प्रमाणित ब्रॉडकास्टर पब्लिशर के तौर पर उसको नहीं देना चाहिए। अगर एक आम आदमी ने कोई वीडियो बनाया है तो एक सोर्स के तौर पर हम उसको देखना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि वो एक पब्लिशर या एक तरह से ब्रॉडकास्टर की भूमिका में आ जाता है, और अगर वो सोशल मीडिया पर देखिए उसके फॉलोअर्स बहुत सारे हैं तो बहुत बड़ी हस्ती बन जाता है। ये बड़ी दिक्कत है कि सिटीजन जर्नलिस्ट वाली, मुझे इस पे थोड़ा सा आपत्ति रहती है। हम सिटीजन डॉक्टर तो कोई नहीं होता है, सिटीजन इंजीनियर भी कोई नहीं होता है, तो सिटीजन जर्नलिस्ट ही क्यों? ये बहुत पेशागत काम है, बहुत इसमें ट्रेंड लोगों की जरूरत है, इस काम में भी बहुत प्रशिक्षित लोगों की जरूरत है। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमने सिटीजन जर्नलिस्ट के नाम पर वो एक जो सीमा रेखा थी उसको ब्लर किया है। उसमें जो है सिटीजन जर्नलिज्म के नाम पर ऐसे लोग आ गए हैं कि जो बेसिकली पत्रकार नहीं थे लेकिन उनको मजा आने लगा है लाइक शेयर एंड कमेंट्स से, तो एक घालमेल हुआ है सिटीजन जर्नलिस्ट से और सिटीजन जर्नलिज्म वर्सेस एक संस्थागत जर्नलिज्म से, वो एक घालमेल हुआ है। तो मुझे लगता है कि जब हमको इस रूप में ये देखना होगा, इन जनरल एक पब्लिक को भी इस बात को लेकर हमको एक सेंसिटाइज करना होगा कि कोई आम आदमी कोई भी वीडियो पब्लिश कर रहा है तो हम उसको एक सोर्स के तौर पर माने, हम उसको सच मान के ना चलें। वो एक आम आदमी है, कॉमन मैन, वो जर्नलिस्ट नहीं है। कोई जर्नलिस्ट होगा तो जरूर उस खबर पे, अगर उसकी इंटेंशन खराब नहीं है, वो एजेंडा नहीं है, बायस्ड नहीं है, तो एक जर्नलिस्ट उस वीडियो पर या उस खबर पे

0: हैं, प्रेस क्लब हैं, उनको खासकर ये काम बहुत शिद्दत के साथ किए जाने की जरूरत है कि वो लोगों को इस बात को लेकर अवेयर करें कि न्यूज क्या है, क्या नहीं है, कौन सा न्यूज मेकर है, कौन सा नहीं है, किस पे आपको भरोसा करना है, किस पे भरोसा नहीं करना है, क्योंकि ये आखिरकार उन्हीं लोगों की, जो स्किल्ड लोग हैं, जो ट्रेंड लोग हैं, जो वैल्यूज के साथ आ रहे हैं, ये आखिरकार उनके लिए खतरा पैदाइश से हो रहा है। जो सिटीजन जर्नलिज्म का जो एक घालमेल हुआ है, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा इससे पैदा होता है।
1: आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात की कि कोई भी खबर आ रही है तो उसके सोर्स को समझें और उसे एक प्रमाणिक न्यूज न समझें। एक जिम्मेदारी होती है किसी को भी जो अपने आप को पत्रकार समझता है, अपनी खबरों की वो जिम्मेदारी ले। लेकिन आपको इस बारे में आपका क्या सोचना है कि लोगों में जन जागरूकता होनी चाहिए कि वो जिस खबर को पढ़ रहे हैं उसको भी समझें कि जो ये खबर आ रही है उसका प्रामाणिक जो सोर्स है वो कितना रिलायबल है, वो किस संस्था से आ रहा है। अभी चूंकि हम ट्रांजिशन के फेज में चल रहे हैं, पत्रकारिता बहुत नए आयाम ले रही है, बहुत सारे करवटों से गुजर रही है, आपको क्या लगता है लोगों को किस तरह की जागरूकता होनी चाहिए इस ट्रांजिशन के फेज में?
0: बिल्कुल जागरूकता किए जाने की जरूरत है। ऐसा मैंने बताया है कि एक तो कोई भी आदमी न्यूज को जो है अपलोड कर लेता है, मतलब वीडियोस को, घटनाओं को अपलोड कर लेता है, उसका बैकग्राउंड नहीं पता है, उसका आगे का फॉलोअप उसको पता नहीं, उसने सर्टेन वीडियो शूट किया या सर्टेन किसी चीज पे रैंडम टिप्पणी की, चल दी, लोग उसको न्यूज की तरह उस पर रिएक्ट करते हैं, तो एक तो वो रिस्क है संकल्प जी। दूसरा बड़ा रिस्क इसमें यह है कि यह आधुनिक दौर AI का दौर है। इसमें मतलब ये नहीं है कि किसी ने कोई टिप्पणी की, वे बहुत संभव है कि एक फेक, मतलब एक वीडियो बना लिया जाए, एक फेक तरीके से एक क्रिएट किया जाए एक सीन, उसको चलाया जाए, उसको अपलोड किया जाए, उसको न्यूज की तरह किया जाए, और ऐसा हम देख रहे हैं, अपने आसपास देख रहे हैं। तो अब तो वो और भी ज्यादा जरूरी है कि हमको इसको लेकर एक सीरियसली एक एफर्ट किए जाने की जरूरत है, लोगों को अवेयर करने के लिए कि न्यूज क्या है क्या नहीं है। समझिए, देखिए, खाने में मिलावट को लेकर जन जागरण अभियान चलाते, वैसे हमको इन्फॉर्मेशन में मिलावट को लेकर भी एक जन जागरण अभियान चलाए जाने की जरूरत है, क्योंकि ये जो मिस इन्फॉर्मेशन का जो दौर है, ये जो है लोगों को उतना ही जो है अनहेल्दी कर रहा है जितना कि खाद्य पदार्थों में जो होने वाली मिलावट से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है। सूचनाओं में, खबरों में अगर मिलावट होगी तो हमारे दिमाग को प्रदूषित करेगा, दिमाग को प्रदूषित करेगा तो पूरे समाज की जो शांति प्रभावित होगी। तो मैं समझता हूं कि ये हाई टाइम है, हमको इस पे एक्ट करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो बहुत दिक्कतें आने वाले समय में न्यूज के नाम पे होगी, खबरों के नाम पे होगी।
1: संजीव जी, चलते चलते कार्यक्रम के अंतिम छोर पर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, AI के इस दौर में आने वाले दशकों में आपको क्या लगता है पत्रकारिता कितना बदलेगी?
0: AI सभी को बदलेगा, सभी के जीवन पे कुछ ना कुछ बदलाव डालेगा। तो पत्रकारिता ही बदल रहा है, पत्रकारिता कुछ आसान हो गई है AI आने से। आप कंटेंट तो बहुत आसानी से हम देख रहे हैं कि अब तो लोग खबरें मतलब AI से बनवा रहे हैं और तमाम तरीके से अपने कामकाज में AI की हेल्प ले रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि कुछ जॉब्स कट होंगी, मेरे ख्याल से होंगी, हर जब नई तकनीकी आती है कुछ तरह के काम कम होते हैं, कुछ तरह के काम बंद होते हैं, बट मुझे लगता है कि AI आपको कंटेंट दे सकता है लेकिन AI फील्ड में रिपोर्टिंग नहीं कर सकता है। फील्ड के रिपोर्टर के लिए हमेशा गुंजाइश रहेगी, आप अपने बूट्स तैयार रखिए, फील्ड में खड़े रहिए, और आप जो है खाली तकनीकी के भरोसे मत रहिए। आप जो है एक पत्रकार हैं तो पत्रकार को फील्ड में ही होना चाहिए, उसके जीवन, उसके काम पे कोई संकट नहीं है, बल्कि उसको ये तकनीकी उसके काम में और सहायता उसको देगी। मैं इसको इस रूप में एक पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ।
1: संजीव जी, आज आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और आपने पत्रकारिता के जो नए आयाम हैं, जितना पत्रकारिता अव्यवहारिक तौर पर बदल रही है, इस पर बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत की। आकाशवाणी से बातचीत करने का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी श्रोता सुन रहे थे पत्रकारिता के 200 वर्ष के उपलक्ष्य पर विशेष भेंटवार्ता, हिंदी पत्रकारिता दिवस पर वरिष्ठ पत्रकार श्री संजीव कंडवाल से संकल्प मिश्रा की बातचीत।

0: AIR at 90. नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं गाने नए तराने कार्यक्रम में। सभी श्रोताओं का स्वागत अभिनंदन।

गदर टू फिल्म में अभी आप नीति मोहन और साथियों को सुन रहे थे। सईद कादरी के बोल थे और मिथुन का संगीत। तुम्हारे नाम का एक धागा कहीं भीतर बांध रखा है, न कलाई पर दिखता है न किसी गिरह से मिलता है। बस यूं है कि हर बात के बाद एक सिरा तुम्हारी तरफ रह जाता है, खींचता नहीं रोकता भी नहीं, पर जितना भी दूर जाएं, लौटने की वजह यहीं कहीं धीरे से बंधी रहती है। तुम्हारे नाम का एक धागा कहीं भीतर बंधा रखा है। जी हाँ श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं इसी विचार से जुड़ा हुआ एक गीत धुरंधर फिल्म से, अरिजीत सिंह की आवाज में, इरशाद कामिल के बोल और शहरावत सचदेव का संगीत।

श्रोताओं, कुछ लोग जिंदगी में शोर लेकर नहीं आते, बस धीरे धीरे दिन का लहजा बदल देते हैं। पहले ख्यालों में रहते हैं, फिर आदतों में, और एक दिन बिना बताए रोजमर्रा का हिस्सा बन जाते हैं। अजीब हैं, स्वाभाविक हैं, कुछ साथ हैं, कहे बिना ही तय हो जाते हैं। जी हाँ श्रोताओं, ऐसा ही एक गीत आपको सुनवा रहे हैं जिसमें हम शामिल कर रहे हैं लाल सिंह चड्ढा फिल्म से। गीत को आवाज दी है अरिजीत सिंह और शिल्पा राव ने। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं और प्रीतम का संगीत। तेरे हवाले कर दिया।

मेड इन चाइना फिल्म में अभी आप अरिजीत सिंह और प्रिया को सुन रहे थे। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है रांझना फिल्म से जावेद अली की आवाज में, इरशाद कामिल के बोल और ए आर रहमान का संगीत। सफर वही है।

वहीं तक है जहां तक तुम हो, सफर वहीं तक है जहां तक तुम हो, नजर वहीं तक है जहां तक तुम हो। हजारों फूल देखे हैं इस गुलशन ने, मगर खुशबू वहीं तक है जहां तक तुम हो।

योद्धा, आइए अब सुनवाते हैं आपको इस फिल्म का गीत। नीति मोहन के साथ हैं अरिजीत सिंह, कुणाल वर्मा के बोल और तनिष्क बागची का संगीत। तुम्हारे नाम से रोशन हैं हमारे दिल के रास्ते, तुम्हारी याद से महकते हैं ये ख्वाबों के वास्ते। मिली जो तुम्हारी चाहत हर खुशी मिल गई, तुम्हारे संग इश्क हुआ तो ये जिंदगी रोशन हुई।

0: कास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: श्रोताओ, दो पत्ती फिल्म में अभी आप संचित टंडन को सुन रहे थे। कौशल मुनीर के बोल थे और संचित परंपरा का संगीत।

अरिजीत सिंह को अभी आप डंकी फिल्म में सुन रहे थे। कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं गुस्ताख इश्क फिल्म से शिल्पा राव और पोपोन की आवाज में, गुलजार के बोल और विशाल भारद्वाज का संगीत। उलझा रही है हमको ये कश्मकश अंदर से, उलझा रही है हमको ये कश्मकश अंदर से, कि तुम बस गए हो हम में या हम खो गए हैं तुम में।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे गाने नए तराने। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अपराह्न के 4 बजे हैं। अब श्रोता सुने FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप मानव डोभाल से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। राज्य में पिछले 36 घंटों के दौरान 4 अलग अलग दुर्घटनाओं में 8 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 6 लोग घायल हुए हैं। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का LPG भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर के ऐतिहासिक सोमनाथ मैदान में 7वें बैच के 1170 अग्निवीरों ने देश सेवा की शपथ ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। चमोली जिले की नीति घाटी में कल से 2 दिवसीय नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का आयोजन किया जाएगा। केदारनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं को बेहतर गुणवत्ता युक्त प्रसाद उपलब्ध कराने और स्थानीय महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जा रहा है। इसी दिन वर्ष 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन शुरू किया था। मुख्य सचिव ने आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि सरकार उपनल संविदा कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देने को तैयार है। देहरादून में अतिक्रमण के खिलाफ MDDA की कार्रवाई जारी है। देहरादून के जिलाधिकारी ने कुंभ 2027 व गंगा संरक्षण को लेकर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं और श्री केदारनाथ मंदिर में नई व्यवस्था के तहत सुगम दर्शन के लिए VIP श्रद्धालुओं को ₹1100 शुल्क देना होगा। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.5 MHz पर। अपराह्न के 4:02 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं डॉक्टर निर्मल पांडे से राग मुल्तानी में ख्याल गायन।

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे डॉक्टर निर्मल पांडे से राग मुल्तानी में ख्याल गायन। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अपराह्न के 4:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक कलाकार।

सभी श्रोताओं का स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम एक कलाकार में। श्रोताओं, कुछ कलाकार पर्दे पर आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो अपने किरदारों के माध्यम से हमेशा दर्शकों के दिलों में जीवित रहते हैं। भारतीय सिनेमा के ऐसे ही बहुमुखी और अद्भुत कलाकार हैं परेश रावल। आज हम बात करेंगे उनके खलनायक, हास्य अभिनेता और चरित्र अभिनेता की हर भूमिका में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाली उनकी कलाकारी की। अपनी शानदार अभिनय प्रतिभा और बेहतरीन संवाद अदायगी के लिए पहचाने जाने वाले परेश रावल का जन्म आज ही के दिन 30 मई 1955 को मुंबई में हुआ था। समस्त आकाशवाणी परिवार की ओर से परेश रावल जी को उनके जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं।

परेश रावल भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और पूर्व राजनीतिज्ञ हैं। हिंदी सिनेमा के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक जाने जाते हैं। उन्होंने 240 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के साथ साथ 3 फिल्मफेयर पुरस्कार भी उन्होंने प्राप्त किए। उन्हें 2014 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्होंने 1994 में वो छोकरी और सर फिल्मों में अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। वो फिल्म थी वो छोकरी और सर फिल्म के लिए उन्हें नकारात्मक भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ विलेन का पुरस्कार दिया गया। इसके बाद केतन मेहता की फिल्म आई सरदार, जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी वल्लभ भाई पटेल की भूमिका निभाई और इससे उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली। उनकी उल्लेखनीय फिल्में हैं अर्जुन, नाम, शिवा, अंदाज अपना अपना, मोहरा, दिलवाले, चाइना गेट, एतराज, टेबल नंबर 21। इसके अलावा उन्होंने 2000 के दशक में हिंदी फिल्मों में हास्य अभिनेता के रूप में अपनी छाप छोड़ी। साथ ही उन्होंने कई संजीदा फिल्मों में भी अभिनय किया, जिसमें उन्हें काफी प्रशंसा मिली। हास्य फिल्मों में थी हेरा फेरी, उसकी सीक्वल बनी फिर हेरा फेरी, जिसमें बाबूराव गणपतराव आप्टे की भूमिका को उन्होंने क्लासिकल बना दिया। नायक, आंखें, आवारा पागल दीवाना, हंगामा, गरम मसाला, चुप चुप के, मालामाल वीकली, वेलकम, मेरे बाप पहले आप, ओए लक्की शामिल हैं। रेडी, ओएमजी, टाइगर जिंदा है, संजू उरी और द स्टोरी टेलर, जिसमें उन्होंने सत्यजीत रे के प्रसिद्ध किरदार तरणी खुरो को चित्रित किया। उनकी फिल्में हमेशा ही याद की जाएंगी और सिने प्रेमियों के दिलों में हमेशा बनी रहेंगी। आइए बात को आगे फिर बढ़ाएंगे, पहले आपको सुनवाते हैं एक बेहतरीन सा गीत।

श्रोताओ, परेश रावल केवल एक अभिनेता नहीं है बल्कि भारतीय सिनेमा का वो अध्याय है जहां हर किरदार एक नई पहचान बन जाता है, हर संवाद दर्शकों की स्मृतियों में बस जाता है। उनकी अभिनीत एक फिल्म जो उनके करियर की सबसे संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं में से एक थी, वो थी तमन्ना में निभाया गया उनका किरदार टिक्कू का किरदार। तमन्ना में परेश रावल ने किन्नर का किरदार निभाया था जो एक लावारिस बच्ची को अपनाकर उसका पालन पोषण करता है। ये उस दौर की फिल्मों में बिल्कुल अलग विषय था जहां अधिकतर फिल्मों में किन्नर पात्रों को केवल हास्य या छोटे किरदारों तक सीमित रखा जाता था, वहीं तमन्ना ने उन्हें एक संवेदनशील और मानवीय रूप में प्रस्तुत किया। और परेश रावल ने इस भूमिका को इतनी सादगी और भावनात्मक गहराई से निभाया कि दर्शकों और समीक्षकों ने इसकी खूब प्रशंसा की। कहा जाता है कि परेश रावल ने इस किरदार के लिए काफी अध्ययन किया और समाज में किन्नर समुदाय के जीवन को समझने का प्रयास किया ताकि भूमिका वास्तविक और सम्मानजनक लगे, जब अभिनय केवल मनोरंजन न रहकर संवेदनाओं की आवाज बन जाए तब तमन्ना जैसी फिल्में जन्म लेती हैं। और टिक्कू के रूप में परेश रावल ने साबित कर दिया कि एक महान कलाकार किसी भी किरदार को आत्मा दे सकता है।

श्रोताओ, परेश रावल ने फिल्मों में आने से पहले रंगमंच थिएटर पर भी काम किया। उनकी अभिनय की मजबूत नींव थिएटर से ही बनी। 1980 और 1990 के दशक में वे बॉलीवुड के सबसे प्रभावशाली खलनायकों में गिने जाते थे। दिलचस्प बात है कि वही अभिनेता बाद में हास्य भूमिकाओं का बादशाह बन गया। फिल्म हेराफेरी में बाबू राव का किरदार शुरू में इतना बड़ा नहीं माना जा रहा था, लेकिन परेश रावल की अदायगी ने उसे फिल्म का सबसे यादगार पात्र बना दिया। उन्होंने अपने करियर में 240 से अधिक फिल्मों में काम किया और शायद ही कोई अभिनेता होगा जिसने खलनायक, कॉमेडी, चरित्र अभिनेता और ऐतिहासिक व्यक्तित्व जैसी इतनी विविध भूमिकाएं निभाई हो। फिल्म सरदार में उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका निभाने का भी मौका मिला। वर्ष 2014 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जो कला के क्षेत्र में उनके योगदान का सबसे बड़ा सम्मान है। अपने गंभीर स्वभाव के बावजूद वे सेट पर माहौल को हल्का फुल्का बनाए रखने के लिए जाने जाते हैं। कई कलाकार उन्हें वन टेक आर्टिस्ट भी कहते हैं, क्योंकि वे संवादों को बेहतर सह और सहजता से निभा ले जाते हैं।

अभिनय की दुनिया में सफलता केवल लोकप्रियता से नहीं बल्कि दर्शकों के दिलों में बनाई गई जगह से मापी जाती है। परेश रावल ने अपनी प्रतिभा, मेहनत और सादगी से ये स्थान अर्जित किया है। समस्त आकाशवाणी परिवार के तरफ से अभिनेता अपनी अद्भुत अभिनय क्षमता से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले परेश रावल जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य, सुख समृद्धि और दीर्घायु प्रदान करे। आपके अपने हर किरदार से दर्शकों को हंसाया, रुलाया और सोचने पर मजबूर किया है। आपकी कला, आपकी सादगी और आपका समर्पण आने वाली पीढ़ियों और कलाकारों के लिए प्रेरणा स्रोत बनता रहेगा। हम कामना करते हैं कि आप यूं ही अपनी प्रतिभा से भारतीय सिनेमा को समृद्ध करते रहें और जीवन के हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां प्राप्त करें।

0: उसी गीत के साथ आज का एक कलाकार कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सायं के 5 बजने को आप श्रोता सुने समाचार
1: के साथ मैं प्रशांत कुमार। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंधु 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंधु ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा यह अभियान अब भी जारी है।
2: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, यह अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
1: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। म्यांमा के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। कर्नाटक के नी वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक कर रहे हैं। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाना है। श्री DK कुमार शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से चुने जाने की संभावना है। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। महीने भर चलने वाली ये प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा कि अगर ईरान के साथ समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका की सेना उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेग्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमरीका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद है। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राष्ट्रीय संचालन समिति NSC ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम ITI क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया नामक एक निजी कंपनी द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण निवेश योजना SIPO को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत स्वीकृत होने वाली पहली SIP है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश इस योजना के तहत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। ये मंजूरी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित तीसरी NSC बैठक के दौरान दी गई। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित लोहम का दौरा किया। लोहम देश के प्रमुख उद्यमों में से एक है जो लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है। इस दौरान श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में आज भारतीय पुरुष डबल्स जोड़ी ने दक्षिण कोरिया के सियो सेंग जाय और किम वॉन हो को 21-19, 21-18 से हराया। वहीं ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की मिक्स डबल्स जोड़ी प्रतियोगिता से बाहर हो गई। सेमीफाइनल में आज भारतीय जोड़ी को जापान की साइका होबारा और युइची सिमोगामी ने हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 7.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

अब से कुछ ही देर में यानी 5:10 पर युवा साथी सुनेंगे अपना पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम युववाणी। पर्वतीय अंचलों के श्रोताओं का खास कार्यक्रम ग्राम जगत का समय रहेगा शाम 5:45 पर। कृषि जगत श्रोता सुनेंगे शाम 7 बजे और शाम 7:50 पर क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति के अंतर्गत सुनना ना भूलिएगा आस्था अग्रवाल से साक्षात्कार प्रस्तुत करता होंगे स्वाति कपिल।

रात 8 बजे सुनना ना भूलिएगा, आपका पत्र मिला। और रात 9:15 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम स्पॉटलाइट। रात 9:30 पर प्रसारित किया जाएगा राष्ट्रीय युवा पत्रिका। और रात 10 बजे सुनना ना भूलिएगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये तीनों कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। श्रोताओं, ये जानकारी थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों की। अब एक नजर डालते हैं कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। कल प्रातः 7:30 पर कार्यक्रम शैल संगीत के अंतर्गत श्रोता सुनेंगे परमेश्वरी रावत के गाए गढ़वाली लोकगीत। आपके साथ ढोलक पर संगत करेंगे आयुष सेमवाल, तबले पर आयुष, बांसुरी पर दिनेश और हारमोनियम पर राजन। प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून का समय रहेगा प्रातः 8:30 पर। कल प्रातः 10:55 पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश की जनता के साथ मन की बात साझा करेंगे। और बालमंडल कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा कल 12:30 पर।

सैनिकों के लिए फिल्म संगीत श्रोता सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। कल 3:02 पर सुनना ना भूलिएगा विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर डॉक्टर पंकज गर्ग से संकल्प मिश्रा की बातचीत। शाम 4:02 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में श्रोता सुनेंगे गुलाम साबिर का सारंगी वादन। आप प्रस्तुत करेंगे राग शुद्ध सारंग और धुन।

कल शाम 7 बजे कृषि जगत कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसारित किया जाएगा सफल कृषक श्री ओमवीर सिंह से कृषि और बागवानी विषय पर श्रोता सुनेंगे विकास चमोली की बातचीत। रात 8 बजे काव्यांजलि कार्यक्रम में श्रोता सुनेंगे श्रीमती माधुरी नैथानी का काव्य पाठ। युवाणी श्रोता सुनेंगे शाम 5:10 पर और ग्राम जगत कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 5:45 पर।

रात 9:30 पर प्रसारित किया जाएगा अनुगूंज और 10 बजे सुनना ना भूलिएगा रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 5:10 होने को है।

स्वागत है आपका कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सनाली, और मैं आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी शाम अच्छे से बीत रही होगी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय के बारे में जो हमेशा से ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी रहा है, और वो है हिंदी पत्रकारिता, जिसके इस साल 200 वर्ष पूरे हो गए हैं। 200 साल दोस्तों, सोचिए ज़रा कितना बड़ा माइलस्टोन है ना। ये एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ कागज़ और स्याही से शुरू हुई थी, लेकिन आज डिजिटल स्क्रीन्स, पॉडकास्ट, लाइव स्ट्रीमिंग तक पहुंच चुकी है। और इस सफर की शुरुआत हुई थी 30 मई 1826 में, जब पंडित जुगल किशोर शुक्ला जी ने कोलकाता से उदंत मार्तंड नाम का पहला हिंदी अखबार शुरू किया था, जिसका मतलब ही था समाचार का उगता हुआ सूरज। और इस बात से तो आप भी अग्री करेंगे कि यही सूरज आज पूरे हिंदी मीडिया जगत को रोशन कर रहा है। उस दौर की बात करें तो तब ना सोशल मीडिया था ना इंटरनेट, लेकिन लोगों तक सच पहुंचाने का जज्बा जरूर था। दोस्तों, हिंदी पत्रकारिता ने हमारे देश को सिर्फ खबरें नहीं दी, बल्कि आवाज दी, एक सोच दी और एक पहचान दी। तब अखबार सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं होता था, बल्कि वो लोगों की हिम्मत, उनकी उम्मीद और उनकी सोच का जरिया था। अब आज देखिए, हिंदी जर्नलिज्म टीवी चैनल्स, न्यूज़पेपर, पॉडकास्ट और डिजिटल मीडिया तक पहुंच चुकी है। गांव से लेकर ग्लोबल लेवल तक हिंदी मीडिया की अलग पहचान है। और पता है, यूथ का भी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आज के यंग जर्नलिस्ट सिर्फ न्यूज रिपोर्ट नहीं करते, बल्कि एनवायरमेंट, एजुकेशन, मेंटल हेल्थ, टेक्नोलॉजी और सोशल इश्यूज पर भी ओपनली बात करते हैं। क्योंकि दोस्तों, जर्नलिज्म का असली काम ही है समाज को जोड़ना, सवाल पूछना और सच को सामने लाना। और हिंदी पत्रकारिता की बात करें तो वो खास इसलिए भी हो जाती है क्योंकि ये आम इंसान की भाषा में बात करती है, इसीलिए लोग इससे ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। ये 200 साल का सफर हमें ये सिखाता है कि शब्दों की ताकत बहुत बड़ी होती है। एक सच्ची खबर किसी को भी जागरूक बना सकती है, इंस्पायर कर सकती है और बदलाव भी ला सकती है। इसीलिए हम यही चाहेंगे कि हिंदी जर्नलिज्म आने वाले समय में भी और रिस्पॉन्सिबल, पॉजिटिव और पीपल सेंट्रिक बने। चलिए अब एंटरटेनमेंट की ओर बढ़ते हैं और सुनते हैं ये गीत फिल्म आजा नचले से सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में।

0: Future-proof your career with UPES, India's AI-first university. Choose from 100-plus AI-integrated programs across engineering, business, law, design, humanities, and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 30th May. Apply now at upes.ac.in.
1: दोस्तों, AI आजकल हमें हर फील्ड में देखने को मिल रहा है. और अगर हम यूथ की बात करें तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है पढ़ाई, और यहाँ भी AI ने एंट्री ले ही ली है. तो चलिए आज के हमारे सैटरडे स्पेशल सेगमेंट कैंपस से में जानते हैं अपने युवा साथियों से कि AI आने वाले समय में एजुकेशन में क्या क्या बदलाव लाएगा. इसकी संकलनकर्ता है हमारी साथी आयुषी भट्ट. तो चलिए सुनते हैं.
2: हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के कैंपस से सेगमेंट में. आज के कैंपस से को लेकर आई हूँ मैं आयुषी भट्ट. दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आने वाले समय में हमारी पढ़ाई का पूरा तरीका बदल सकता है, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI. सोचिए एक ऐसा क्लासरूम जहाँ टीचर्स के साथ साथ एक स्मार्ट डिजिटल असिस्टेंट भी हो जो हर स्टूडेंट के हिसाब से उसे पढ़ाए. इंटरेस्टिंग है ना? दोस्तों, AI सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एजुकेशन का फ्यूचर बन रहा है. तो चलिए जानते हैं AI कितना बदलेगा एजुकेशन को, और क्या ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है या चैलेंज. और इसी टॉपिक पर आज हम जानेंगे कुछ युवा साथियों से उनके विचार. तो आइए दोस्तों, बात करते हैं हमारी पहली युवा साथी से. आपका नाम?
3: अविका.
2: अविका, आप क्या कर रही हैं?
3: मैं बीकॉम ऑनर्स कर रही हूँ और फर्स्ट ईयर में हूँ.
2: अच्छा, तो आप एजुकेशन से रिलेटेड है ना, यानी आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं. तो आपको AI कैसे मदद कर रहा है, या आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में यानी फ्यूचर में AI आपको या बाकी एजुकेशन सिस्टम में क्या प्रभाव डालेगा, यानी एजुकेशन सिस्टम को कितना बदल सकता है?
3: मुझे तो अभी ऐसे इफेक्ट कर रहा है कि जो मुझे कॉलेज में समझ नहीं आता है या मैं किसी से पूछ नहीं पाती हूँ, तो वो मैं AI से ऐसे घर में पूछ लेती हूँ. और इन फ्यूचर AI ऐसे प्लेस लेगा कि वो हर जगह अवेलेबल हो जाएगा, चाहे वो सिटीज हो चाहे वो विलेज एरिया हो. जैसे कि विलेज एरिया में इतने ट्यूशंस वगैरह नहीं है, इतनी फैसिलिटीज नहीं है एजुकेशन के लिए, तो AI उसको रिप्लेस करके मतलब वहाँ सुविधाएं देगा कि जो विलेज के बच्चे हैं वो आसानी से AI से अपनी सारी एजुकेशन ले पाए. जो बच्चे हैं अगर वो इनोवेशन करना चाहते हैं या कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो AI उसमें भी मदद करता है. AI पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती है जिसकी वजह से कोई भी बच्चा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सीख सकता है, कोई भी एजुकेशन ले सकता है. और जो AI है वो बच्चों को उनकी स्किल्स डेवलप करने में भी हेल्प करेगा. और अगर किसी बच्चे को जैसे कोर्स समझ नहीं आ रहा है, तो वो उसमें भी हेल्प करेगा कि वो आगे इन फ्यूचर क्या और एजुकेशन कर सकता है, कौन सा कोर्स ले सकता है या कौन सी जॉब पे अप्लाई कर सकता है.
2: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा अविका आपने. और जैसे आपने बताया कि आपकी भी मदद एजुकेशन में AI कर रहा है, यानी आप भी इंटरनेट के थ्रू या कोई ऐप है जो आप यूज करते हैं पढ़ने के लिए या जिसकी मदद से आप पढ़ रहे हैं?
3: हाँ, मैं पढ़ने के लिए ChatGPT का सबसे ज्यादा यूज करती हूँ, क्योंकि उसमें इजी फॉर्म ऑफ लर्निंग भी होती है और वो सबसे ज्यादा आजकल पॉपुलर भी है.
2: बहुत बहुत धन्यवाद आप हमसे जुड़े और आपने हमसे बात. तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी अगली युवा साथी से. आपका नाम?
4: मेरा नाम प्रतीक्षा है.
2: प्रतीक्षा, आप क्या कर रही हैं?
4: मैं BBA सेकेंड ईयर कर रही हूँ.
2: तो प्रतीक्षा, जैसे कि आप एजुकेशन से रिलेटेड हैं, एजुकेशन से रिलेटेड इन द सेंस आप पढ़ाई कर रही हैं, है ना, तो पढ़ाई के टाइम पे आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है?
4: हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कत तो आती है.
2: तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं?
4: मैं उस टाइम अपने टीचर्स या फ्रेंड्स से पूछ लेती हूँ, अगर वो उस टाइम रिप्लाई ना दे पाए तो मैं यूट्यूब से पढ़ लेती हूँ थोड़ा बहुत.
2: तो जैसे आपने बताया है कि आप टीचर्स की मदद ले लेते हैं या तो फिर दोस्तों की मदद ले लेते हैं, और अगर वो कोई नहीं है तो आप मदद ले लेते हैं यूट्यूब की यानी इंटरनेट. तो आपको क्या लगता है, क्या AI एजुकेशन सिस्टम को बदल पाएगा, यानी जो आपकी लर्निंग है उसको बदल पाएगा?
4: हाँ, ये बदल पाएगा, क्योंकि अभी जो है हम दूसरों पे डिपेंड होते हैं कि वो जब फ्री होगा जब वो तब बताएगा, लेकिन AI हमें 24/7 अवेलेबल रहेगा, तो हम उससे कभी भी पूछ के अपने डाउट वगैरह सॉल्व कर सकते हैं. और ये बहुत इजी भी हो जाता है फिर हमारे लिए. जैसे एग्जाम्पल ही देती हूँ कि मैं एक एवरेज बच्ची हूँ, ना मुझसे ज्यादा पढ़ाई होती है ना एकदम लो लेवल की पढ़ाई होती है, तो AI मुझे उस हिसाब से बता देता है कि मुझे कैसे पढ़ना चाहिए. तो फिर में भी ऐसे ही होगा, AI उसको हेल्प करेगा कि वो किस हिसाब से पढ़ सकता है, उसे स्टैंडर्ड पढ़ना है, लो पढ़ना है या मेरी तरह ही एवरेज पढ़ना है.
5: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने कि बच्चा अपने हिसाब से पढ़ पाएगा इसमें और AI उनकी मदद करेगा, साथ ही वो 24/7 अवेलेबल होगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो AI है वो हमारे जो टीचर्स जो हैं वो उनको रिप्लेस कर देगा, ऐसा क्या आपको लगता है?
4: नहीं, हमारे टीचर्स को रिप्लेस तो नहीं कर सकता, लेकिन हमारी स्टडी अपग्रेड कर सकता है, हमें और अच्छे से चीजें समझा सकता है, लेकिन एकदम रिप्लेस तो नहीं कर सकता।
5: बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक्षा आप हमसे जुड़े। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं हमारी अगली युवा साथी से और इस कैंपस से के सेगमेंट को और आगे बढ़ाते हैं। आपका नाम?
6: मेरा नाम दिया है, मैं अभी BBA सेकेंड ईयर में हूँ।
5: तो दिया, जब आप छोटी क्लासेस में थे यानी कॉलेज में नहीं थे, अपनी स्कूलिंग कर रहे थे, तब आप ट्यूशन वगैरह जाते थे?
6: जी हाँ, मैं ट्यूशन जाती थी।
5: तो जैसे आपने बताया आप ट्यूशन वगैरह जाते थे, तो यानी आपको जब कुछ समझ में नहीं आता था या आपको कुछ और जानकारी चाहिए होती थी तब आप ट्यूशन लेते थे, है ना? तो आपको क्या लगता है जो AI है वो आने वाले फ्यूचर में एजुकेशन सिस्टम को कैसे बदलेगा?
6: जो AI है वो आने वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है और उन्हें बहुत कुछ सिखाएगा, जो भी कुछ उनको जानना होगा तो वो वहाँ उन्हें अवेलेबल मिल जाएगा। आने वाले समय में जब बच्चे जॉब करने जाएंगे तो AI उनको उसमें भी मदद करेगा। AI मदद ऐसे करेगा कि वो उनको पहले से ही प्रिपेयर कर देगा। AI जो है वो बच्चों को उनकी स्किल्स डेवलपमेंट और इंटरव्यूज में भी हेल्प करेगा, उनको पहले से ही वो बता देगा और मदद करेगा।
5: बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए दिया। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं हमारी अगली युवा साथी से। आपका नाम?
7: अर्पिता।
5: कौन सा कोर्स कर रही हैं?
7: मैं BSc एग्रीकल्चर कर रही हूँ।
5: और कौन सा ईयर चल रहा है आपका?
7: सेकंड।
5: अच्छा, तो अर्पिता आपको क्या लगता है कि AI आने वाले समय में हमारे एजुकेशन सिस्टम को या फ्यूचर में एजुकेशन को कैसे बदलेगा?
7: AI आगे जाके हमारी इतनी हेल्प करेगा, जैसे हम जब छोटे थे तो हमें बहुत सारे टॉपिक ढूंढने पड़ते थे जब होमवर्क मिलता था स्कूल से, पर अब आने वाले समय में बच्चों को AI से बहुत हेल्प मिल जाएगी, उन्हें वीडियोस मिल जाएगी, शॉर्ट एंड लॉन्ग फॉर्म मिल जाएगी और पैराग्राफ के थ्रू भी वो किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ आने वाले समय में वो बच्चों को प्रिपेयर करेगा और कॉन्फिडेंट रखेगा उन्हें आगे जाके क्या करना है, और वो उसमें बहुत हेल्प करेगा। और ये एजुकेशन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा, क्योंकि आज के समय में और आने वाले समय में डिग्री नहीं स्किल्स मैटर करती है, जिसके लिए AI बहुत मददगार साबित होता है।
5: बहुत बहुत धन्यवाद अर्पिता आप हमसे जुड़े।
7: थैंक यू।
5: आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली युवा साथी से। आपका नाम?
8: मेरा नाम शिवांशी है।
5: शिवांशी आप क्या करती हैं?
8: मैं अभी BA कर रही हूँ।
5: और ये आपका कौन सा ईयर चल रहा है?
8: ये मेरा अभी थर्ड ईयर चल रहा है।
5: अच्छा, तो शिवांशी आपके हिसाब से AI कितना बदलेगा एजुकेशन को?
8: आगे के समय में AI बहुत महत्वपूर्ण माना जाएगा और उसमें बहुत सारे फीचर्स नए नए आ सकते हैं पढ़ाई से रिलेटेड होता है, जैसे कि आजकल आप लोग देख सकते हैं कि जो भी काम होते हैं वो सब AI से ही पूछते हैं, अपनी स्टडीज के बारे में, फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर गोल्स के बारे में। आजकल पेरेंट्स भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जान रहे हैं AI से। पहले के बच्चे अपना जो लिमिटेड कोर्स होता था वही कोर्स जो उनके बुक में होता था वही पढ़ते थे, और आजकल के समय में ऐसा नहीं है। कल और आने वाले समय में बच्चे बहुत एडवांस पढ़ाई कर सकते हैं AI के जरिए से, उनको जो भी

0: चाहिए वो उनको मिल सकती है AI से, और ये हमारे स्किल्स डेवलपमेंट में भी काम करेगा, और ये बच्चों को पढ़ाई से जुड़े रखने में भी मदद करेगा। जैसे पहले हम पढ़ते थे तो हम बुक से ही पढ़ते थे, जिससे हमें बोरियत भी आने लग जाती थी, लेकिन AI की मदद से बच्चे इनोवेटिव वे में पढ़ रहे हैं और पढ़ पाएंगे। ये पढ़ाई को बहुत मजेदार बनाने में मदद करेगा, जिससे बच्चे अट्रैक्ट होंगे पढ़ाई की तरफ, और ये बच्चों को एनिमेशन के थ्रू पढ़ाएगा और समझाएगा, जिससे बच्चे पढ़ाई से जुड़े रहें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद शिवांशी, आपने हमें बताया कि AI कितना बदलेगा हमारे एजुकेशन सिस्टम को और बच्चे इससे कैसे पढ़ाई से और जुड़ पाएंगे और समझ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: थैंक यू मैम।
2: दोस्तों, हमने जाना कि AI एजुकेशन को सिर्फ बदल नहीं रहा, बल्कि उसे और ज्यादा स्मार्ट, पर्सनलाइज्ड और एक्सेसिबल बना रहा है। और इसी को लेकर आज हमने कुछ युवा साथियों से इनके विचार भी जाने कि कैसे AI 24/7 अवेलेबल होकर उनकी मदद कर रहा है और आने वाले समय के लिए उनको तैयार कर रहा है, और आने वाले समय में ये और ज्यादा मॉडिफाई होकर नए अपने अंदर नए फीचर्स लाकर एजुकेशन को और बेहतर बनाएगा। और साथ ही हमने जाना कि कैसे ये पढ़ाई को और ज्यादा मजेदार बनाकर बच्चों को पढ़ाई से जोड़ेगा। तो दोस्तों, आज के कैंपस से में बस इतना ही। आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद।
3: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कैंपस से का हमारा खास सेगमेंट। अब पेश करते हैं आपके लिए ये गीत फिल्म ओके जानू से, जुबिन नौटियाल और साशा त्रिपाठी की आवाज में।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: वैसे दोस्तों, ये तो आपने भी नोटिस किया होगा कि आज के टाइम में इन्फ्लुएंसर होना सिर्फ एक ट्रेंड नहीं बल्कि एक करियर ऑप्शन बन चुका है। कोई फैशन का कंटेंट बना रहा है, कोई गेमिंग, कोई एजुकेशन, कोई फिटनेस, तो कोई ट्रैवल या कॉमेडी। हर स्क्रीन के पीछे आज एक क्रिएटर की दुनिया चल रही है। और सच कहूँ तो अगर क्रिएटिविटी और कंसिस्टेंसी हो तो इन्फ्लुएंसर बनना एक सक्सेसफुल करियर बन सकता है। लेकिन हाँ दोस्तों, इन्फ्लुएंसर बनना सिर्फ वायरल रील्स और फॉलोअर्स का गेम नहीं है। स्क्रीन पर जो 30 सेकंड की वीडियो हमें दिखती है उसके पीछे घंटों की प्लानिंग, शूटिंग, एडिटिंग और पेशेंस होता है। और इस पाथ को फॉलो करने से पहले किसी को भी अपनी आइडेंटिटी को समझना बहुत जरूरी है। सोचिए कि क्या आप किसी चीज में इंटरेस्टेड हैं, फिर वो फैशन हो, टेक हो, बुक्स हो, फूड, मोटिवेशन या म्यूजिक, क्योंकि ऑडियंस वही कंटेंट देखना पसंद करती है जो उन्हें रियल और नेचुरल लगे। आज के मार्केट की बात करें तो उसमें ऑथेंटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है दोस्तों। लोग ओवरली फेक या कॉपीड कंटेंट से जल्दी बोर हो जाते हैं, तो अगर आप अपनी असली पर्सनालिटी के साथ कंटेंट बनाना शुरू करें तो वो ऑडियंस से ज्यादा कनेक्ट कर पाता है। और इसमें कंसिस्टेंसी भी बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि कई लोग 5 वीडियो के बाद ही गिव अप कर देते हैं क्योंकि व्यूज नहीं आते। लेकिन असल बात यह है कि कंटेंट क्रिएशन एक लॉन्ग टर्म जर्नी है, ओवरनाइट सक्सेस स्टोरी नहीं। इस फील्ड में आप अपनी क्रिएटिविटी को दुनिया तक पहुंचाते हैं, ब्रांड्स के साथ काम करते हैं और एक ऑडियंस बिल्ड करते हैं और इससे इनकम भी अर्न करते हैं फिर बाद में। लेकिन हाँ, हर चीज के दो पहलू होते हैं। इन्फ्लुएंसर्स को ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ों का भी सामना करना पड़ता है जिसमें कांस्टेंट कंपैरिजन आता है, ऑनलाइन ट्रोलिंग और नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं। इसीलिए बैलेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फॉलोअर्स इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन फैमिली, हेल्थ और पीस ऑफ माइंड उससे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप अपना कंटेंट बनाना चाहते हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर आपका कंटेंट किसी एक इंसान को भी इंस्पायर या हेल्प करे तो वही असली इन्फ्लुएंस है। चलिए अब सुनते हैं ये गीत फिल्म हंसी तो फंसी से विशाल शेखर और चिन्मय श्रीपदा की आवाज़ में।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों, जब भी स्टूडेंट्स कॉलेज चूज करते हैं तो एक सवाल उनके मन में जरूर आता है कि कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट है। और पता है, इस सवाल का एक ट्रस्टेड जवाब देने की कोशिश करता है NIRF, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा जारी किया जाता है। ये इंस्टीट्यूट्स को सिर्फ पॉपुलैरिटी के बेसिस पर नहीं, बल्कि टीचिंग क्वालिटी, प्लेसमेंट, रिसर्च, ग्रेजुएशन आउटकम्स, इंक्लूसिविटी और ओवरऑल रेपुटेशन जैसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स पर जज करता है, ताकि इसकी वजह से स्टूडेंट्स को एक क्लियर डायरेक्शन मिल सके। अगर हम लेटेस्ट रैंकिंग की बात करें तो ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास ने फिर से टॉप पोजीशन हासिल की है और हमारे उत्तराखंड का नाम भी इस लिस्ट में प्राउडली चमकता है, क्योंकि IIT रुड़की देश के टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में से एक है। दोस्तों, आज के स्टूडेंट्स के पास अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। इंजीनियरिंग हो, मैनेजमेंट हो या रिसर्च, भारत के इंस्टीट्यूट्स अब ग्लोबल लेवल पर कम्पीट कर रहे हैं। और अब मैनेजमेंट की बात करें तो IIM अहमदाबाद को टॉप इंस्टीट्यूट्स में माना जाता है, वहीं मेडिकल कैटेगरी में एम्स दिल्ली का नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। लेकिन ये बात भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि सिर्फ रैंकिंग ही सब कुछ नहीं होती। किसी भी स्टूडेंट के लिए सही इंस्टीट्यूट वो होता है जो उसके इंटरेस्ट, गोल्स और लर्निंग स्टाइल को सूट करे, क्योंकि सक्सेस सिर्फ कॉलेज का नाम नहीं देता, सक्सेस आती है मेहनत, डिसिप्लिन और लगातार सीखने की सोच से। तो चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये गीत फिल्म जब तक है जान से, राघव माथुर और शिल्पा राव की आवाज में।

दोस्तों, आज का हमारा कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं खत द्वारा। हमारा पता है कार्यक्रम युवाणी द्वारा, निदेशक कार्यक्रम आकाशवाणी देहरादून, हरिद्वार बाईपास रोड, निकट रिस्पना पुल, देहरादून। और हमारा पिन कोड है 248001। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है youthddn@gmail.com और आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088000731। अपना ख्याल रखें दोस्तों, और आज के लिए मुझे यानी सनाली को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी FM 100.5 MHz पर। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 5:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: नमस्कार, आप सभी उतय विनयधानिक छोड़ बटी के कार्यक्रम सुनना चेन आप ग्राम जगत और म्यार दगड़ जू होल तब
1: बिछो मीना उनियाल और आप सभी को नमस्कार। शिव सौले और दगड़ मा ध्यान जी को भी पढ़ा
0: नमस्कार। राजी खुशी रहे यही कामना का दगड़ी आज एक कार्यक्रम की शुरुआत कर ला बताओ ईद गया कि कुजान कख चीज कख मिलने च
1: बिल्कुल। और बिहार बेखुन दिया ध्यान जी सभी लोग अपने अपने काम पर जया छे जग की जगह छे फांसी
0: ढांड पड़ गया भाई
1: बिल्कुल।
0: और खूब चटकता इन बोले जान कि जो ढांड चुबेली ने कर दिया गात तो बस पूछो
1: उबरड़ भवरड़ बताओ। और मौसम विभाग भी पहले भविष्यवाणी करी छे कि 29, 30 और 28 तारीख रात को भी कि बताओ भी आल उबरड़ भिवरड़ आल तो हम सभी ते यू खबर सारो सुनो रहन जैसे कि आज की अग्नि हम सावधान रोला
0: बिल्कुल। पर कुल मिला के अच्छो लगनो चो
1: बिल्कुल
0: है ना केला के कखे न कखे भाई लोग पक गए चा तप गए चा हदी हो गए ची है ना ये तरह को जो मौसम च गर्म च यो देहरादून में जहाँ पहल दादे खोल और लगातार पिछला 3 सालों में देखना चो हम ई बात है कि हर बार जो गर्मी को प्रकोप चो वो ज्यादा होनो चो। आप समझ सकदा हम कि जब ये शहर मा देहरादून मा सिर्फ डाल बूटी दिखीन छा नहर दिखीन छा और वे जगह मा अब सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट को जंगल दिखेणो छ। लोग बेतहाशा बढ़ना छन गाड़ी घोड़ों की इन हुई छ कि बस तो भाई मौसम कख तक सांस लेने भी चल वे तभी सांस लेना कौन जगह चढ़नी छ है ना। और अगर आप ही देखा कि कखी मा भी आप रिस्पना से लेके ISBT तक आप देखा तो जखमा ज्यादा वाहनों की संख्या चे उखमा ज्यादा गर्म ज्यादा प्रदूषण यहाँ वास्ता के लगे सभी का वो भयंकर एसी चलना रहने भीतर बैठे तो ठंडो और बाहर फफाट गर्म है ना। तो आज एक दिन एक खास दिन बिच मीना जी,
1: जी
0: कि आज हम मनाना छुआ हिंदी पत्रकारिता दिवस। सभी पत्रकारों ते और मीडिया जगत का लोग ते जो कि हिंदी में काम करना चन वो तो बहुत बहुत शुभकामना। वो एक साथ दो ही काम करना चन एक तो समाज की सेवा हो गया और एक अपने राष्ट्रभाषा हिंदी की सेवा हो गया। तो आज का दिन पर कई कार्यक्रम छन लोग खूब उड़ियाना छन याद करना छन पुराना पत्रकारों ते वे पहलू अखबार था जो नौ उदंत मारतंड छा तो 200 साल हुए गिन कम नहीं छा
1: जी।
0: आजकल हम कुल अंकों में नहीं खेलना मीना जी
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: आकाशवाणी का 90 साल बंदे मातरम का 1.5 साल हिंदी पत्रकारिता का 2 साल है ना और अपना साल हम गणना नहीं चाहूंगा
1: बिल्कुल।
0: तो सभी तो एकदा फिर से बहुत बहुत बधाई। आज एक कार्यक्रम बाबत जरिस बतौला अपना भयबंद होता है और वो एक बात फिर छुई बतलो होला कि आज एक कार्यक्रम में एक गढ़वाली कविता पाठ छन कवि छन श्री हरेंद्र सिंह नेगी। अब आप अपन बैठक बोलिया
1: अपन बैठक तो अब कार्यक्रम तक ने सरकोला और गीत पेटांदा
0: अच्छा
1: गीतांग छन अनिल तिवारी

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
0: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: मिस सीमा
3: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
3: क्यों, लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
3: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 बच जाओगे।
3: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
3: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
4: हेलो मम्मा,
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: फ्यूचर प्रूफ योर करियर विद UPES, इंडियाज AI फर्स्ट यूनिवर्सिटी। चूज फ्रॉम 100+ AI इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स अक्रॉस इंजीनियरिंग, बिजनेस, लॉ, डिजाइन, ह्यूमैनिटीज एंड मोर। अप टू 25% स्कॉलरशिप्स फॉर उत्तराखंड डोमिसाइल स्टूडेंट्स। एप्लीकेशंस क्लोज 30th मई। अप्लाई नाउ एट upes.ac.in।
8: जिंदगी अनमोल है, दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहने, चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट जरूर लगाएं, ओवर स्पीड, गलत पार्किंग और नशे में ड्राइविंग सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है। वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करें और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। अगर कहीं दुर्घटना दिखे तो घायल व्यक्ति की मदद करें और गुड स्मार्टियन बनें। सुरक्षित सड़क, सुरक्षित जीवन।
9: संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा हल्द्वानी द्वारा जनहित में जारी।
10: गीत और अंतरबारों का बाद स्वागत कार्यक्रम में आप सभी को। और अब मीना जी, जो कुछ बोलना चाहना छे ना बोल दिया, किला के आज एक और ही खास दिन छे।
11: आज तिलाड़ी कांड आज के ही दिन पर हुए छे। आई तो आज हम शहीदों थे भी सुमिरना छा, जो देश का खातिर हम सभी का खातिर अपना सर्वोच्च बलिदान दे। हम याद करना छा आज तिलाड़ी कांड का वीर शहीदों थे। आज यानी कि 30 मई 1930 को ही टिहरी में तिलाड़ी कांड हुए छे। आई तिलाड़ी कांड थे उत्तराखंड का जलियांवाला बाग भी बोले जांद, किले की निहत्तों पर सिपाहियों ने बंदूक चले छे, जिस जामा क्या चूंकि सैकड़ों शहीद हुए गए और घायल भी हैं।
10: तो इन कांड जो कि साब इतिहास में दर्ज हुए न, चाहे वो जलियांवाला हत्या बाग कांड हो या फिर हम अपन तिलाड़ी की जो बात करना छुआ। भाई देखा कि टिहरी में ये तरह का जो जन आंदोलन छा ऊँथा कुचलना का खातिर एक ना बल्कि दुई दुई लोगों ने इन बोले जान के कुचलने की कोशिश कर, एक तरफ सामंतशाही, दूसरी तरफ ब्रिटिश हुकूमत,
11: बिल्कुल
10: है ना। तो वक मां जब इन घटना हों और निहत्था लोगों पर, जो कि सामान्य तौर पर हमार पूर्व भारत में ही बात मने जान के हम जो भी आंदोलन करता वे मां सत्य अहिंसा था रखदा पहले, कि भाई बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से, शांति पूर्ण तरीके से और असहयोग सविज्ञा आंदोलनों की जन्मभूमि चाहिए भारत देश। तो वक जग भी कोई आंदोलन होनी चाहिए, अपन हकों की बात होनी चाहिए, वो खुमा अगर हम निहत्ता लोगों पर गोली चला दें या इना हत्याकांड करना तो यह एक बड़ी पीड़ादायक स्थिति है। लेकिन वो जो लोग एक माँ हताहत हों दिन, जो अपना प्राणों की आहुति दिन दिन, वो सच मा अमर हुए जन दिन, शहीद हुए जन दिन।
11: और ध्यान जी जगबल अति हुए जान ना, कोई भी काम तो आंदोलन हो ही जान।
10: हाँ,
11: तभी तो बोले जान बल्कि अति सर्वते वर्जित।
10: वाह भाई, कमाल कह दिया अपन, ये लगनो की
11: नहीं, अति नहीं होते
10: अति तो कहीं चीज
11: जो भी आंदोलन हुए ना, जब अति

0: आई तभी विरोध रूप में आंदोलन करेगी।
1: और बोली में तो चेना कि अति का भला न बरसनार, अति की भली न धूप,
0: बिल्कुल
1: है ना। तो ब्याल जब बर्ख तब भी लोग परेशानी, वैसे पहले घाम छाये धूप छाये तब भी लोग परेशानी, तो अति तो कोई भी ठीक नहीं हुई। तो चला अब हम भी यूं छुई बताऊं कि अति निकला हमारा भयबंद बोला लगा गया तुम्हारा कविता पाठ
0: जी।
1: तो आज एक कार्यक्रम में हमारा मेहमान छन श्री हरेंद्र सिंह नेगी प्रस्तुत करना छन अपन गढ़वली कविता पाठ।
2: मेरी पहली कविता बालियो राखी सदानी ये उम्मीद का दीप आप सभी का समण। बालियो राखी सदानी ये उम्मीद का दीप एक दिन उजालो होलो हे हिमालय कबीर हे हिमालय कबीर। क्वासु मन बुथे की ढूंग तू बनी जा क्वासु मन बुथे की ढूंग तू बनी जा डामिक पेड़ा हताश का अब अगे ने बड़ी जा डामिक पेड़ा हताश का अब अगे ने बड़ी जा। देवतों का डोल अभी लट क्याल तो छो पर देवतों का डोल अभी लट क्याल तो छो पर झुकण निधियन दु कभी अपनो सान सर। बाल्यो राखी सदानी यो उम्मेद का दीप एक दिन उजालो होलो हे हिमालय कबीर। डाल्यो की साक सी डाल्यो की साक सी तू हिक मत नहारी तू हिक मत नहारी कटी जाए फिर भी मौल यार ल्याई कटी जाए फिर भी मौल यार ल्याई। जोश उल्यारों का भोरा जब आला जीत की फूलों में रंगीला गीत गाला जीत की फूलों में रंगीला गीत गाला। बाल्यो राखी सदानी यो उम्मेद का दीप एक दिन उजालो होलो हे हिमालय कबीर। मेरी दूसरी रचना सदानी त्वेनी खैरी खाई। सदानी त्वेनी खैरी खाई हे लठैली त्वेन क्या पाई चार दिन की जिंदगी माँ भी त्वेन कभी सुख नहीं पाई। न कभी अलसियों हुए तू न कभी हिकमत हारी फिर भी किले रह तू जन भाग्य की मारी। सदानी त्वेन खैर खाई हे लठैली त्वेन क्या पाई चार दिन की जिंदगी माँ भी त्वेन कभी सुख नहीं पाई। डांड्यो माँ घाम एगे अरमन माँ कबल्याड तेरा डांड्यो माँ घाम एगे अरमन माँ कबल्याड तेरा तेरा जो जान देखी आँखों बटी आंसू मेरा आँखों बटी आंसू मेरा। फजल उठी के चली गए नी धान कमाण फजल उठी के चली गए नी धान कमाण अपनों खैरी की छुई भी त्वेन कैमू लगाण त्वेन कैमू लगाण। सदानी त्वेनी खैरी खाई हे लठैली त्वेन क्या पाई सुखमा ना रस्याई और दुखमा ना बबलाई तू सुखमा ना रस्याई और दुखमा ना बबलाई तू। रूणियों का घाम जोड़ों की सुसराट जन यन दिना भी कणकणी से ल्याई तू रूणियों का घाम जोड़ों की सुसराट जन यन दिना भी कणकणी से ल्याई तू। सदानी त्वेनी खैर खाई हे लठैली त्वेन क्या पाई चार दिन की जिंदगी माँ भी त्वेन कभी सुख नहीं पाई। सदानी कंडियलों माँ खुटे तेरी सदानी कंडियलों माँ खुटी तेरी पर मन मान चुभौण द्याई पर मन मान चुभौण द्याई। मिललो मिललो इंसाफ मिललो आस की डोर न टूटण द्याई मिललो मिललो इंसाफ मिललो आस की डोर न टूटण द्याई। सदानी त्वेनी खैर खाई हे लठैली त्वेनी क्या पाई भाग तेरा उजालो रेला भाग तेरा उजालो रेला अपनों जड़ न कटण द्याई अपनों जड़ न कटण द्याई। खूब फली फूली रही खूब फली फूली रही देवता भी त्वें जस दियला देवता भी त्वें जस दियला सदानी त्वेनी खैर खाई हे लठैली त्वेनी क्या पाई। मेरी अगली कविता च मनख्यात नहीं दिखने कखी यू पृथ्वी का एनामा मनख्यात नहीं दिखने कखी यू पृथ्वी का एनामा मनख्यात नहीं दिखने कखी और हरियों झाड़ का बीच मा झंगरो बोट नहीं दिखने कखी और हरियों झाड़ का बीच मा झंगरो बोट नहीं दिखने कखी। जख देखियो मन क्यों तेरो कुटक लगायो रे जख देखियो मन क्यों तेरो कुटक लगायो रे सदानी अपनो मतलब मा ही तू डूब्यो रे सदानी अपनो मतलब मा ही तू डूब्यो रे। क्या कन तेरो यू जवानी संभालो के क्या कन तेरो यू जवानी संभालो के बुढ़ियादा त्वेन जब छितराए रोण बुढ़ियादा त्वेन जब छितराए रोण। जरा सोच लिए समझी लिए आप होते पछाण लिए जरा सोच लिए समझी लिए आप होते पछाण लिए। पुंगड़ा माँ वोड़त सदानी बटी उख मरे पुंगड़ा माँ वोड़त सदानी बटी उख मरे पर तेरो यू चटाबटी लालच अहंकार कखी निगे पर तेरो यू चटाबटी लालच अहंकार कखी निगे। हमारा पुराना चली गेनी हम भी अलबुली माँ चली जोला हमारा पुराना चली गेनी हम भी अलबुली माँ चली जोला दुई दिन को उजालो माँ किले ना सुख समयली खैल्योला दुई दिन को उजालो माँ किले ना सुख समयली की खैल्योला। जरा सोच ली समझ ली आप ही ते पछाने लिए। कैदिन यनु ना हो, कैदिन यनु ना हो कि यू लोभ लालच का कटु ढोंगियों माँ, तू फबटी ना जा और अपनों संभालियों रीत मर्यादा कखी लमडे ना जा, और अपनों संभालियों रीत मर्यादा कखी लमडे ना जा, जरा सोची लिए समझी लिए आप होते पछाने लिए। अपनों मान मर्यादा ना बिसरी कभी मन ख्यात माँ रोण तुन, अपनों मान मर्यादा ना बिसरी कखी मन ख्यात माँ रोण तुन, नहीं तो परलय ओण माँ देरी नी भोल घात टकट्याली सी रोण तुन, भोल हाथ टकट्याली सी रोण तुन, जरा सोच लिए समझ लिए आप होते पछाने लिए, जरा सोच लिए समझ लिए आप होते पछाने लिए। मेरी अगली कविता च गाँव की व्यथा पलायन की पीड़ा। किले आज जानी तू गढ़भूमि छोड़ी की, किले आज जानी तू गढ़भूमि छोड़ी की, किले आज जानी तू भड़भूमि छोड़ी की, अचानचक किले ही अनाड़ी सी भेगी तू, अचानचक किले ही अनाड़ी सी भेगी तू, कौथिक मेलों माँ किले ही खलबल खोजान भेगी तू, कौथिक मेलों माँ किले ही खलबल खोजान भेगी तू, यख बदरी यख केदार, यख बदरी यख केदार डाले डाल्यो माँ एगे मोल्यार, यख बदरी यख केदार डाले डाल्यो माँ एगे मोल्यार, फिर किले ही छोड़ी की जानी अपनो घोर बार, फिर किले ही छोड़ी की जानी अपनो घोर बार, गाँव को नौना सिपाही हुई के, गाँव को नौना सिपाही हुई के सबसे पहली देहरादून, गाँव को नौना सिपाही हुई के सबसे पहली देहरादून, खेत पुंगड़ा छोड़ी सब बुआ बाबू की कैनी सुन, खेत पुंगड़ा छोड़ सब बुआ बाबू की कैनी सुन, किले आज जानी तू गढ़भूमि छोड़ी की, किले आज जानी तू बड़भूमि छोड़ी छोड़ी की, कख गेहूँ थाल भंकुरी, कख गेहूँ थाल भंकुरी, कख गेहूँ बरकण ढोल, कख गेहूँ थाल भंकुरी, कख गेहूँ बरकण ढोल, कन अभयान हुए गे तू, कन अभयान हुए गे तू छोड़ी अपनो भाषा बोल, हे म्यारा बाटा बटोलिया ठुक ठुकी म्यामो ऐजा, हे म्यारा बाटा बटोलिया ठुक ठुकी म्यामो ऐजा, गलकंठ सुखी म्यारा पुरखियों को रीत निभेजा, पुरखियों को रीत निभेजा, किले आज जानी तू गढ़भूमि छोड़ी की, किले आज जानी तू बड़भूमि छोड़ी की, त्रिशूल जन खर्च त्रिशूली नंदा घुंघुटी या खींचन, त्रिशूल जन खर्च त्रिशूली नंदा घुंघुटी या खींचन, वीरों की स्वर्गारोहिणी देवताओं का रणथन, तुंगनाथ उखीमठ गौरीकुंड या खींचन, तुंगनाथ उखीमठ गौरीकुंड या खींचन, गेंदी का खगोटी मेला सुरकंडा या खींचन, गेंदी का खगोटी मेला सुरकंडा या खींचन, किले आज जानी तू गढ़भूमि छोड़ी की, किले आज जानी तू बड़भूमि छोड़ी की, यकुली कूड़ी पठाली कन चटकन लेगे, यकुली कूड़ी पठाली कन चटकन लेगे, कौथिक मेला खोला कन हरचण लेगे, कौथिक मेला खोला कन हरचण लेगे, पितरों की कूड़ी त्यारा टूटन न दिए, पितरों की कूड़ी त्यारा टूटन न दिए, रजवाणों की जागीर तू खंडन न दिए, रजवाणों की जागीर तू खंडन न दिए, किले आज जानी तू गढ़भूमि छोड़ी की, किले आज जानी तू बड़भूमि छोड़ी की, जाने की यू आगते, जाने की यू आगते तू सुलगण ना दिए, देश विदेश छोड़ी की रखवाली तू कैरी लिए, देश विदेश छोड़ी की रखवाली तू कैरी लिए, पलकन सी रोण त्वेन, पलकन सी रोण त्वेन मेरी बात सुन लिए, मेरी बात सुन लिए, रगबगान सी रैली भोल मेरी बात सुन लिए, रगबगान सी रैली भोल मेरी बात सुन लिए, किले आज जाने तू गढ़भूमि छोड़ी की, किले आज जाने तू भड़भूमि छोड़ी की। मेरी रचना भोल दिव्य के प्रभात वेगी, भोल दिव्य के प्रभात वेगी मेरी पीड़ा मैं मुरेगे, कटफोड़ उसी सदानी में दुख का यूं डालूं रहगे, कटफोड़ उसी सदानी में दुख का यूं डालूं रहगे, मैं तो माँ भी कंप कंपी, मैं तो माँ भी कंप कंपी हिट दे रहे कंट्योलो माँ, हिट दे रहे कंट्योलो माँ, पीड़ा भी सदानी असहणो सी बिबलोणो रह सहसुर माँ, पीड़ा भी सदानी असहणो सी बिबलोणो रह सहसुर माँ, भोल दिव्य के प्रभात वे के मेरी पीड़ा मैं मुरेगे, दस बरस बटी खैरी खाई, दस बरस बटी खैरी खाई जिकुड़ीन कभी नी मिली चैन, बन के आग त सबन देखी मन नी देखी कैन, भोल दिव्य के प्रभात वे के मेरी पीड़ा मैं मुरेगे, कटफोड़ सी सदानी में दुख कायों डालियों रहगे, स्वामी जी भी हर चिग्याई, स्वामी जी भी हर चिग्याई जन बादलों से घाम, जन बादलों से घाम, यख लोगों की खचोरिया छुई एक झुरांदी प्राण, यख लोगों की खचोरिया छुई एक झुरांदी प्राण, भोल ब्याके प्रभात हुई की मेरी पीड़ा मैमू रह गी, सुनी जातू खैरी मेरी, सुनी जातू

0: से कुछ हौरी लगों लार वो चे छुई आपन ही पर्यावरण की सुरक्षा की।
1: जी, हम दिखना छवा कि पर्यावरण लगातार प्रदूषित होने जानो चो, दूषित होने चो, और कखी न कखी हम ही यहाँ दूषित छाओ। हमन अपन जो निजी स्वार्थ छन वे का कारण हमन डाला बूटा काट देन और जगह जगह गंदगी फैलाना छा, और डाला बूटा कटना का कारण भी वही छे कि अपन स्वार्थ छे। और हम तो अपन जो पुराना पारंपरिक जो तरीका छे ना वैसे पर्यावरण संरक्षण करण वाले, जल संरक्षण करण वाले, तभी हम अपन पर्यावरण तक बचे सकदा।
0: ये बात आपन ठीक बोली कि जल, जंगल और जमीन
1: जी
0: ये महत्वपूर्ण छे हमारे पर्यावरण का खातिर। और उखमा जंगल छन तो पैण छे,
1: बिल्कुल।
0: और अगर जंगल नहीं छे तो पैण भी नहीं छे। कतई दा हम ये देखना चाहूँ आजकल रूढ़ियों में, खास कर के मीना जी,
1: जी
0: कि हमारा जो ऊंचाई वाला इलाका छे उखमा पानी को भारी संकट हो जाता।
1: बिल्कुल
0: तो पिछला साल जब हम ये ही मई जून में जया छा अपना इना उना क्षेत्रों में डांडी कांठियों का मुलक, तो जितना भी खाल छन डांडा छन उखमा हम तो देखा है कि बहुत ज्यादा पानी को संकट छे। तो हमन बहुत सारा एक कार्यक्रम बने वक्त स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित पानी के गाने। तो जग जग हम पहुंचा चाहे वो रेखणी खाल हो, बीरों खाल हो, या लेंसडॉन हो, या वैसे और जगह जग जग पानी को संकट छे। तो हमने एक बात यह देखी कि सचमा जो हमने एक योजना कि घर घर बल पैण पहुंचोला हम,
1: बिल जी
0: वे माँ जल जीवन मिशन की एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना ने वक्त का लोगों को बोलना चाहे कि ना साहब यून जो प्राकृतिक स्रोतनों था छड़ा च अरु हट चिकन। तो अब सिर्फ चौकों मा थाड़ों मा हम ही देखना चाहूँ कि सिर्फ वो टूंटी तला छन पर पैण नहीं हो पाए।
1: पैर
0: फिर पानी को डबल लेकर कुछ आण कक जाना चुन टिहरी का एक घनसाली क्षेत्र में जब हम गवा तो हमन दे आके मोटरसाइकिलों में और स्कूटरों में और कुछ आण कन कन कन लोग दूर बट पैर सरना छन। तो यो जो पेयजल संकट छ यो भी हमार कखी न कखी पर्यावरण जो एक संतुलन बिगड़न छ वही को कारण छ कि हमारा जो पानी का स्रोत छ पुराना पैर छ जो हमारो वो हर चुके।
1: और ध्यान जी, पानी का स्रोत हटना की एक कारण यू भी च कि पहले डाणो अपन खाल रहे, जन बरखा हुए जन ब्याज हुए तो भरे जान छे खालो ना। वो खालो से क्या छे कि नमी बनी रहे छे, नमी महून छे डाला बूटा, और डाला बूटा ना पानी का स्रोत बनिया रहे छे। तो यू चक्र चन्नू रहे छे, और पानी का स्रोत छे तो हमारे नदी नाला भी खूब गम गाड़ के बगना रहे छे, पानी कोई कमी नहीं रहे छे। लेकिन अब चाला खाला रहे आने छन और डाल हम कटना लगे अच्छा, तो जैसे कि आज ये संकट दिन प्रतिदिन बढ़ती जानो जो
0: अब देखा तुम ये संकट पर न कदा ध्याल वाल आने वाल 5 जून अपन इले
1: जी
0: के वही दिन जो पर्यावरण दिवस और खूब गोष्ठी संगोष्ठी सेमिनार और कुछ नहीं क्या क्या हुआ
1: धरातल पर कुछ है
0: कुछ ना कख फैलो में डाला जैम जन ना
1: जी
0: जो का जाड़ा नहीं होता। तो तन भी नहीं होना चाहिए लेकिन हाँ एक जिम्मेदार राज्य का निवासी होने का खातिर हम सबों को दायित्व छ कि जो योजना परियोजना चीज संगोष्ठी पर्यावरण गोष्ठी यूजन यूं से अलग हटे कि अगर हम अपन व्यक्तिगत स्तर पर ये पर्यावरण का खातिर अपन एक छोटू सा काम कोई भी एक चुन लेवा कि
1: जी
0: भाई मैं यू नहीं करूं बस उदगा खा रही हूं जो हाँ। अब आप बोल नहीं साहब डाली लगाओ डाली लगाओ डाली लगाओ लोग लगाना भी छन खूब लगाना छन है ना। अफार देखा कि पिछला सालों का अगर हम देखा तो अफार ये जो रिश्पना वो छ ना नदी
1: नदी
0: ये तो जीवंत करने का खातिर हजारों डाला लेकिन
1: वालो भी हो
0: कखवाल। तब भी बनाई कि एक एक व्यक्ति यूं अभियान होता है अलग धैर्य की अपन व्यक्तिगत तौर पर अगर कोशिश कर कि चला साहब आज बिटक में ले कोई भी खेसंदोक जो कूड़ा कबाड़ च या खै पी की सीती सड़क पर निचुलाण
1: नदी नालों मैंने
0: हाँ
1: डालना।
0: प्लास्टिक का बहिष्कार करण। तो ये छोटा छोटा जो कदम छिन्न ये आप तो बहुत बड़ो योगदान होलो।
1: जो जमीनी स्तर पर काम कर देना, वो प्रचार प्रसार बहुत काम कर देना।
0: बिल्कुल बहुत सारा लोग छिन्न ना हमारा पर्यावरण मित्र जो कि अपने अपने जगह बहुत सुंदर काम करना छिन्न वो सभी बधाई का पात्र छिन्न।
1: जी
0: आवा कार्यक्रम में अब कुमाऊं की बात कला आप तक पहुंचाना छुआ चंदन सिंह बोरा और दगड़ियों का स्वरमा ये कुमाऊं ने गीत।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
0: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड।

0: उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: Future proof your career with UPES Dehradun, India's AI first university. Choose from 100 plus AI integrated programs across engineering, business, law, design, humanities and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 30th May. Apply now at upes.ac.in.
2: Papa, laiye 3000.
3: Kyun bhai?
2: Meri pocket money.
3: अरे अभी तो सिर्फ 2000 ही कैश है।
2: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
3: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1000 ले जाओ,
2: अपना मोबाइल लाओ।
3: ले ले।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।
6: भेबंदो चंदन सिंह वोरा और दगड़ियों का गयू, अभी अपन सुनियो कुमावनी लोगी।
7: दगड़ में रविवार भी सुनी ना अपन, और ये तरीके से हमार कार्यक्रम में देखा रंत रविवार भी हुंदिन, हमार छुई बद भी हुंदिन, और जो खास कार्यक्रम हुंदिन चाहे वार्ता हो, भेंट वार्ता हो, कविता पाठ हो, कहानी हो, सब कुछ हों। तो बाकी और क्या चाहू आप, बोलता आप गौक कार्यक्रम से जखमा कि आप अपना गीत सुन देन, लेकिन कुछ और भी गौच तो आप हम तय चिट्ठी लिख सकते।
6: हमर ईमेल आईडी चिट्ठी ग्राम जगत @gmail.com पर आप हमको झट से चिट्ठी भेज सकते।
7: और लेखा की क्या आप शिकायत च, कुछ और सुझाव छ, हुई सकत कुछ आप और सोचना होला कि कार्यक्रम में ई भी कर दा तन भी कर दा, तो पक्की बात छ कि हम आपक सुझावों पर भी ध्यान देला। उन तो हम अपन गांव कना छो, और वे था भी आप भल मनना छन कि जितना भी हमारा स्थल रिकॉर्डिंग का कार्यक्रम होंगे वो था आप बहुत पसंद कर दे। आने वाले दिनों में फिर आप तक स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम, कहानी एक गांव की हो चाहे अपन पर्यटक स्थलों की सैर हो, वो हम सब करोला। लेकिन ये बगत आप तक पहुंचाना छुआ प्रेम पंचोली और दगड़ियों का स्वरमा जौन सारी लोकगीत।

0: भवनो जोनसारी लोकगीत अभ्यापन सुनो गीतांक्षाई प्रेम पंचोली और दगड़िया।
1: मीना जी
0: जी
1: कुछ बना रह गया
0: रही तो खा रही
1: खा रही हूँ
0: समाचार बगत होने वाला
1: तो अपना भवनो कौन बना कह किने जान मीना जी अजी हो रिछु लगाने पहले आपक दगड़ कुछ गीत भी मिला आप तो सुनो को लेकिन ये बात सुना उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचार।

0: यूं तो अवसर प्रत्येक इंसान की जिंदगी में आता है, लेकिन इंसान उसका स्वागत न कर पाए तो वो लौटने में देरी नहीं करता। कार्डिनल आनंद हर आदमी के अंदर है और वो पूर्णतः सत्य की खोज से मिलता है। महात्मा गांधी। सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्पवान बनो, परिश्रमी बनो और साहसी बनो। स्वामी विवेकानंद। जिसने गर्व किया उसका पतन हुआ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल। पहले मुख्य समाचार। अल्मोड़ा में 1000 से अधिक अग्निवीरों ने आज भारतीय सेना में शामिल होकर देश सेवा की शपथ ली। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 में पार्टी की जीत का दावा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। और राजधानी देहरादून में झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने पर्वतीय जिलों में बारिश का ऑरेंज और मैदानी जिलों में येलो

0: जारी किया है। और अब समाचार विस्तार से। अल्मोड़ा जिले के रानीखेत स्थित कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर के ऐतिहासिक सोमनाथ मैदान में 1170 अग्निवीरों ने भारतीय सेना में शामिल होकर देश सेवा की शपथ ली। 6 माह के कठिन प्रशिक्षण के बाद आयोजित कसम परेड समारोह देशभक्ति और गौरव के भाव से सराबोर रहा। इस दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अग्निवीरों को सम्मानित भी किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए ब्रिगेडियर विजयंत महादिक ने सभी अग्निवीरों और उनके परिजनों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सेना में भर्ती होकर देश सेवा का अवसर केवल भाग्यशाली युवाओं को मिलता है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना, केआरसी और पूरा देश उन माता पिता का आभारी है जिन्होंने अपने पुत्रों को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए समर्पित किया है।
1: आज आपने राष्ट्र सेवा की शपथ ली है, इसलिए आज से आपका हर कदम राष्ट्र के सम्मान के लिए होगा। आप अपनी अपनी यूनिट में एक ऐसे सैनिक बनकर जाएं कि अनुशासन, साहस और समर्पण ही आपकी पहचान बने, और आप पर आपकी यूनिट, कुमाऊं रेजिमेंट और भारतीय सेना को हमेशा फक्र हो। मैं मां कालिका से प्रार्थना करता हूं कि वे आपको अपने सैनिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए शक्ति, बुद्धि और संकल्प प्रदान करें, ताकि आप अपनी ली हुई शपथ को निष्ठा, ईमानदारी और वफादारी से पूर्ण कर सकें।
0: वहीं अग्निवीर की बहन ज्योति बोरा ने कहा कि उनके भाई को देश सेवा का अवसर मिला है और इस पर उन्हें गर्व है।
2: मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये इंडियन आर्मी सिलेक्ट हुआ और आज की कसम परेड हुई है, ये बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व का पल है हमारे लिए, हमारे परिवार।
0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपने 3 दिवसीय उत्तराखंड प्रवास के अंतिम दिन विभिन्न संगठनात्मक और जनसंपर्क कार्यक्रमों में भाग लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिन की शुरुआत देहरादून स्थित टपकेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना से की। इसके बाद उन्होंने एक बूथ अध्यक्ष के आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ आत्मीय संवाद किया। उन्होंने कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव में भी भाजपा तीसरी बार फिर सरकार बनाएगी।
3: हम लोग आते हैं, घूमते हैं, परिवार के साथ आते हैं, दर्शन करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अपने घरों में सुख के साथ जाते हैं। और जिस रूप से आपने यूसीसी को लागू किया, भारत में आपने एक उदाहरण पेश किया है, कहीं ना कहीं हर भारतवासी आपके मुख्यमंत्री पर गर्व करता है। गंगा के रिवर फ्रंट के रूप में आपने जिस प्रकार से काम शुरू किया है और जिस प्रकार से हरिद्वार के कॉरिडोर को आपने आगे विकसित करने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से माँ गंगा मैया का भी आपको पूरा आशीर्वाद मिलेगा और आपके नेतृत्व में निश्चित रूप से 2027 में भी हम एक अच्छी सरकार यहाँ देंगे।
0: इस बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष शिमला बाईपास स्थित एक निजी कॉलेज में आयोजित प्रबुद्ध गोष्ठी में शामिल हुए। उन्होंने शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों, उद्योग जगत तथा समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों से संवाद किया और केंद्र तथा राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं व पार्टी की नीतियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में युवाओं से भी सीधा संवाद किया। अभी प्राप्त समाचारों के अनुसार रुद्रप्रयाग जिले में एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मृत्यु और 5 लोगों के घायल होने की खबर है।
4: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रधानमंत्री कार्यालय के समूचे नेटवर्क सहित सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के बाद क्षेत्रीय भाषाओं में विभिन्न नेटवर्क के माध्यम से कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं को गुणवत्ता युक्त प्रसाद उपलब्ध करवाया जाएगा। ग्रामोत्थान परियोजना रीप ने स्थानीय उद्यम केदारेश्वर एंटरप्राइजेस के साथ गुणवत्ता युक्त प्रसाद उपलब्ध करवाने को लेकर अनुबंध किया है। यह योजना स्थानीय महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे यात्रा

0: अर्थव्यवस्था में स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास भी शुरू किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: गुणवत्ता युक्त प्रसाद योजना के तहत ग्रामोत्थान परियोजना ने केदारेश्वर इंटरप्राइजेस को 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। इसका उद्देश्य केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को उच्च गुणवत्ता वाला प्रसाद उपलब्ध कराना और स्थानीय स्तर पर रोजगार व स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना है। योजना के तहत केदारेश्वर इंटरप्राइजेस श्रद्धालुओं के लिए पंचमेवा, ड्राई फ्रूट्स और श्री केदारनाथ मंदिर से जुड़े विभिन्न स्मृति चिन्ह तैयार कर रही है। इन उत्पादों की पैकेजिंग आकर्षक होने के साथ साथ पर्यावरण अनुकूल भी रखी गई है। योजना में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की भागीदारी है। केदारनाथ यात्रा में इस वर्ष रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में यह पहल स्थानीय उत्पादों को नई पहचान दिलाने, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविन्द्र सिंह।
0: पौड़ी जिले की नगर पंचायत सतपुली में बहुउद्देश्यीय शिविर आयोजित किया जा रहा है। शिविर में प्रतिभाग करते हुए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि सतपुली नगर पंचायत क्षेत्र में नयार नदी पर निर्माणाधीन 56,34,97,000 की लागत से बहुप्रतीक्षित सतपुली झील का निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक जलाशय नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदलने वाली योजना है। उन्होंने कहा कि झील निर्माण से सतपुली उत्तराखंड के नक्शे पर एक नए पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में उभरेगा। इससे भूजल स्तर में सुधार होगा और आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई व पेयजल की उपलब्धता बढ़ेगी। पर्यटन से जुड़ी आर्थिक गतिविधियां बढ़ने से क्षेत्र से होने वाले पलायन पर अंकुश लगेगा। बहुउद्देश्य शिविर में 4 दिव्यांगों को दिव्यांग प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इसके साथ ही समस्या काउंटर पर 42 शिकायतें व 91 मांग पत्र प्राप्त हुए हैं। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया गया। इसी दिन वर्ष 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन शुरू किया था। यह दिवस हिंदी पत्रकारिता के योगदान, उसके इतिहास और समाज में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्मरण करने का अवसर है। हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता लोकतंत्र की सशक्त आवाज रही है और समाज में जन जागरूकता बढ़ाने तथा जन भावनाओं को अभिव्यक्ति देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता वर्तमान समय में समाज और शासन के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु के रूप में कार्य कर रही है। वहीं सूचना महानिदेशक बंसीधर तिवारी ने भी हिंदी पत्रकारिता दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि निष्पक्षता, विश्वसनीयता और जनहित की भावना आज भी पत्रकारिता की मूल आत्मा है। राजधानी देहरादून में आज दोपहर बाद हुई झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली। मौसम विभाग ने आगामी 2 जून तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने आज देहरादून, टिहरी, पौड़ी और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि शेष मैदानी जिलों के लिए येलो अलर्ट घोषित किया गया है। कल भी राज्य के कुछ पर्वतीय जिलों में ऑरेंज अलर्ट तथा अन्य जिलों, विशेषकर मैदानी क्षेत्रों में येलो अलर्ट प्रभावी रहेगा। इस दौरान तेज झोंकेदार हवाएं चलने, ओलावृष्टि और कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने चारधाम यात्रा पर आए श्रद्धालुओं और प्रदेशवासियों से मौसम खराब होने की स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर ठहरने तथा प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अल्मोड़ा में 1,000 से अधिक अग्निवीरों ने आज भारतीय सेना में शामिल होकर देश सेवा की शपथ ली। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 में पार्टी की जीत का दावा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। और राजधानी देहरादून में झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने पर्वतीय जिलों में बारिश का ऑरेंज और मैदानी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचारों का बाद एक बार फिर से आप सभी को कार्यक्रम में स्वागत है। मैं मीना उन्याल और उम्मीद करने लगी छो कि

मंजू सुंदरियाल और संतोष खेतवाल का गयो अभी आपन सुनियो गढ़वाल लोकगीत। दगड़ियों ब्याल पर सिबटिक बथौ भुबरड़ बरखा ढांडो खूब पौण लगे चु, जैसे गर्मी से काफी राहत मिल गए। और डाल बूटियों पौण पंछियों पर भी बरखन हैरिएगे पराणेगे। मैं बंदो यूं बरखोन नदी नाला भरे जन्दन, तो गदनों पर नदी नालों मां शुद्ध नहीं जान, किले की भल को अचकल यूं कई बार भी ए जान। आजकल तो लोग जान बुझिक जाना छन गदनों का नदियों किनारा किनारा के बीजों में चल जाना छन सेल्फी लेना कौन, वीडियो बनाने मां उठे ध्यान ही नहीं रहे कि खतरा कई बतियों भी ए जान, जैसे जान माल का नुकसान हो सकद और कई बार नुकसान हो भी जान। और जो भय बंदा भैर बटे कंदन ना वो पैण देख कर खुश हो जन और बिना सोची समझी कर पैण में चल दन, तो यन कते नहीं करना चाहण जख भी जान वख मौसम और प्रकृति ठंड गर्म देखे कन जान और यात्रा का आनंद लेने चाहण। और भय बंदो अब इन करदा कि कार्यक्रम थे अग्नेसर कंदा और आवाज सुनदा नरेंद्र सिंह नेगी का गयू गढ़वल लोकगीत।

0: नरेंद्र सिंह नेगी का गयू अभी अपन सुनियो गढ़वाली लोकगीत। और भाई बंदो अब भगत होने वाल च गढ़वाल मा उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचारों को, तो आवाज सुनदा गढ़वाल मा प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बेटिन गढ़वाली मा प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी में सुनील नेगी। पहली मुख्य समाचार, अल्मोड़ा जिला का रानीखेत में 1170 अग्निवीरों भारतीय सेना में शामिल वेकन देश सेवा की शपथ लिया। सरकारन बोली राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों का प्रांतिकरण कुनी नई नीति बनाई जाली। राज्य में पिछला 36 घंटों का दौरान 4 अलग अलग दुर्घटनाओं में 11 लोगों की मृत्यु और 12 लोग घायल। चमोली जिला का नीति घाटी में गोलबिटिक द्विदिवसीय नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन को आयोजन करे जालू। और प्रदेश में मौसमन ली करवट, देहरादून समेत कई जिलों में भारी बारिश को ऑरेंज अलर्ट।

0: अब समाचार विस्तार से। अल्मोड़ा जिला का रानीखेत स्थित कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर का ऐतिहासिक सोमनाथ मैदान में 1170 अग्निवीरों भारतीय सेना में शामिल वेकन देश सेवा की शपथ लिया। 6 माह की कठिन सिखलाई का बाद आयोजित कसम परेड समारोह देशभक्ति और गौरव का भाव से पूरी तरह जोशन भरियो छ। एक दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला अग्निवीरों ते सम्मानित भी करे गया। समारोह ते संबोधित करदावेरी ब्रिगेडियर विजयंत महादिकन सभी अग्निवीरों और उनका परिजनों ते शुभकामनाएं दीनी। उन बोली कि सेना में भर्ती वेकन देश सेवा को अवसर केवल भाग्यशाली युवाओं ते मिल दू। उन बोली कि भारतीय सेना KRC और पूरा देश का उन माता पिताओं का आभारी छन जौन अपना पुत्रों ते राष्ट्रीय सुरक्षा को समर्पित कैरियाली।
1: आज आपने राष्ट्र सेवा की शपथ ली है, इसलिए आज से आपका हर कदम राष्ट्र के सम्मान के लिए होगा। आप अपनी अपनी यूनिट में एक ऐसे सैनिक बनकर जाएं कि अनुशासन, साहस और समर्पण ही आपकी पहचान बने और आप पर आपकी यूनिट, कुमाऊं रेजिमेंट और भारतीय सेना को हमेशा फक्र हो। मैं माँ कालिका से प्रार्थना करता हूँ कि वे आपको अपने सैनिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए शक्ति, बुद्धि और संकल्प प्रदान करें, ताकि आप अपनी ली हुई शपथ को निष्ठा, ईमानदारी और वफादारी से पूर्ण कर सकें।
0: प्रदेश में राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों का प्रांतिकरण की दिशा में सरकार जल्दी नई नीति बनानी छ। ये संबंध में शिक्षा विभाग ते 1 माह का भीतर प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिए गए। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावतन विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर 1 माह का भीतर मंत्रिमंडल का समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दें। देहरादून में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में डॉक्टर रावतन बोली कि नई नियमावली लागू होने का बाद उन अशासकीय विद्यालयों को प्रांतिकरण का मार्ग प्रशस्त होलू जो कि प्रबंधन समितियां शासन तय राज्यीकरण का प्रस्ताव उपलब्ध करा ली। उन बताई कि प्रस्तावित नियमावली में विद्यालय की भूमि की उपलब्धता और स्वामित्व, छात्र संख्या, कार्मिकों की वरिष्ठता, पदों की आवश्यकता तथा सरकार पर पड़न वालू वित्तीय व्यवहार जनी महत्वपूर्ण पहलुओं तय शामिल करे जालू। राज्य में पिछला 36 घंटों का दौरान हुई 4 अलग अलग दुर्घटनाओं में 11 लोगों की मृत्यु हुई जबकि 12 लोग घायल हुए। चमोली जिला का लुआणी गांव का नजदीक आज सवेर लगभग 4 बजे एक इको वैन दुर्घटनाग्रस्त हुए गए। वाहन में सवार 6 लोगों में 3 की मौके पर ही मृत्यु हुई गए जबकि 3 अन्य घायल हुए। घायलों ते प्राथमिक उपचार का बाद एयर एम्बुलेंस का माध्यम से ऋषिकेश में स्थित एम्स भेजे गए। अरुणा अल्मोड़ा जिला में ब्याली हुआ एक दर्दनाक हादसा में ट्रैक्टर का गहरी खाई में गिन से 2 लोगों की मौत हुई गए। वही उत्तरकाशी जिला में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी का नजदीक एक कार दुर्घटना में 2 लोगों की मृत्यु हुई गए जबकि 3 अन्य घायल हुए। पुलिस के अनुसार वाहन में कुल 5 लोग सवार छ। गंगोत्री धाम में गंग घाट पर स्नान का दौरान एक महिला नदी में डूबने से मृत्यु हुई गए। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीनन अपड़ा 3 दिवसीय उत्तराखंड प्रवास का अंतिम दिन विभिन्न संगठनात्मक और जनसंपर्क कार्यक्रमों में भाग ले। राष्ट्रीय अध्यक्ष दिन की शुरुआत देहरादून स्थित टपकेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना से कारी। एक बाद उन एक बूथ का अध्यक्ष का आवास पर कार्यकर्ताओं दगड़ी आत्मीय संवाद कारी। ये बीचम राष्ट्रीय अध्यक्ष शिमला बाईपास स्थित एक निजी कॉलेज में आयोजित प्रबुद्ध गोष्ठी में शामिल वेन उन शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों, उद्योग जगत तथा समाज का विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधियों से संवाद कारी और केंद्र तथा राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं व पार्टी की नीतियों पर विस्तार से चर्चा कारी। उन मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित युवा सांसद कार्यक्रम में युवाओं से भी सीधा संवाद करी।
2: 31 मई को अल्ट्रा मैराथन हमारे नीति क्षेत्र में प्लान है जो UTDP के द्वारा की जा रही है और इसमें विभिन्न कैटेगरीज में धावक।
3: प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो जे। ताजा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया X व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड ते फॉलो कर सकते।

0: दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
1: चमोली जिला की नीत घाटी में गोलबेटिन द्विदिवसीय नीत एक्सट्रीम अल्ट्रा रन को आयोजन करे जालू। उत्तराखंड पर्यटन विभाग और भारतीय सेना का दगड़ी तालमेल से आयोजित यह प्रतियोगिता सीमा पर्यटन तय बढ़ावा देण तथा सीमावर्ती क्षेत्रों तय नई पहचान दिलाण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जानी छ। अल्ट्रा रन में 21 किलोमीटर 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की विभिन्न श्रेणियां शामिल छिन। प्रतियोगिता में भाग लेने वाला धावकों तय ऊंचाई कम ऑक्सीजन और बदलता मौसम जनी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को सामना कर पड़लू। जिला अधिकारी गौरव कुमारन बताई कि नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन को प्रमुख उद्देश्य सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन तय बढ़ावा देण और स्थानीय स्तर पर रोजगार व आर्थिक गतिविधियों तय प्रोत्साहित कंच।
2: 31 मई को अल्ट्रा मैराथन हमारे नीति क्षेत्र में प्लान है जो UTDB के द्वारा की जा रही है और इसमें विभिन्न कैटेगरीज में धावक आ रहे हैं और इनके लिए हमारा प्रशासन व्यवस्था बनाने में लगा हुआ है और इस अल्ट्रा मैराथन से हमारे नीति मरारी क्षेत्र को एक नई पहचान मिलेगी।
1: श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में अब आसानी से दर्शन करने श्रद्धालुओं तय 1100 रूपए शुल्क देण होलू। ये संबंध में श्री बद्री केदार मंदिर समिति BKTC नई मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी करें। BKTC का मुख्य कार्याधिकारी सोहन सिंह रांगणन बताई कि यात्रा संचालन तय अधिक सुव्यवस्थित सुरक्षित और समयबद्ध बनाने का उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू करी गई। उन बोली कि लगातार बढ़नी श्रद्धालुओं की संख्या प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों और लंबी कतारों की समस्या तय नजर में रखी कर यू निर्णय लिए गए। राजधानी देहरादून में आज दोपहर बाद हुई झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज करेगा जैसे लोगों तक भीषण गर्मी और उमस से राहत मिल। मौसम विभागन आगामी 2 जून तक प्रदेश का अधिकांश जिलों में बारिश की संभावना जताई। विभागन आज देहरादून टेहरी पौड़ी और पिथौरागढ़ जिलों में कखी कखी बारिश को ऑरेंज अलर्ट जारी करी छ जबकि शेष मैदानी जिलों को येलो अलर्ट जारी करी छ। गोल भी राज्य का कुछ पर्वतीय जिलों में ऑरेंज अलर्ट तथा अन्य जिलों विशेषकर मैदानी क्षेत्रों में येलो अलर्ट प्रभावी रहलू। ये का दौरान तेज झोंकेदार हवाओं को चलन ओलावृष्टि और कखी कखी तेज बारिश होने की संभावना छ। मौसम विभागन चार धाम यात्रा पर आया श्रद्धालुओं और प्रदेशवासियों से मौसम खराब होने की स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर रुकण तथा प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों को पालन करने की अपील करी छ। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस मनी जानू छ। ये दिन वर्ष 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्लन हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड को प्रकाशन शुरू कर छाई। यह दिवस हिंदी पत्रकारिता का योगदान वे को इतिहास और समाज में वे की महत्वपूर्ण भूमिका ते याद करना समय छ। हिंदी पत्रकारिता दिवस का अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिन पत्रकारों और प्रदेशवासियों तय शुभकामनाएं दीनी। अपना संदेश में मुख्यमंत्री ने बोली कि हिंदी पत्रकारिता लोकतंत्र की शक्ति आवाज रहे और समाज में जन जागरूकता बनाण तथा जन भावनाओं तय अभिव्यक्ति कन्मा ये की महत्वपूर्ण भूमिका रहे। मुख्यमंत्री ने बोली कि हिंदी पत्रकारिता वर्तमान समाज में शासन का बीच एक महत्वपूर्ण पुल का रूप में कार्य करनु छ। वकी सूचना महानिदेशक वंशीधर तिवारी हिंदी पत्रकारिता दिवस पर शुभकामनाएं दीन बेरिम बोली कि निष्पक्षता विश्वसनीयता और जन प्रति की भावना आज भी पत्रकारिता की मूल आत्मा छ। आखिर में मुख्य समाचार एक दा फिर। रानीखेत में अल्मोड़ा जिला का रानीखेत में 1170 अग्निवीरों भारतीय सेना में शामिल वेकन देश सेवा की शपथ लिया। सरकार ने बोली कि राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों का प्रांतिकरण कुनी नई नीति बनाई जली। राज्य में पिछला 36 घंटों का दौरान 4 अलग अलग दुर्घटनाओं में 11 लोगों की मृत्यु और 12 लोग घायल। चमोली जिला की नीति में घोलबिटिक द्विदिवसीय नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन को आयोजन करे जालू। और प्रदेश में मौसमन ली करवट देहरादून समेत कई जिलों में भारी बारिश को ऑरेंज अलर्ट। ये कदगड़ी गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू अंक समाप्त हूं। नमस्कार।
3: अभी आपन सुने गढ़ोल में प्रादेशिक समाचार और अब कार्यक्रम ग्राम जगत बटवाल की मीनव नियाल थे दिया आ गया। नमस्कार।

0: सभी किसान साथियों को दीपा बगासी का नमस्कार। आप सभी श्रोताओं का बहुत स्वागत है आपके अपने चहेते कार्यक्रम कृषि जगत के अंतर्गत आने वाले हेलो लोक मंजरी में। किसान साथियों, अगर आप भी अपने फरमाइश के लोक गीत और रागनियां सुनना चाहते हैं तो जल्दी से हमें 7088001382 पर कॉल करें। तो श्रोताओं, जल्दी से निकालिए फोन और बताए गए नंबर पर कॉल करके अपने फरमाइश की रागनियां और लोकगीत का आनंद उठाएं। हम आपकी कॉल की प्रतीक्षा में हैं। आज का दिन हमारे किसान साथियों के लिए बहुत खास है क्योंकि आज यानी 30 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस। श्रोताओं, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को मनाने की घोषणा इसलिए की ताकि दुनिया में आलू के महत्व, खाद्य सुरक्षा में उसकी भूमिका और हमारे किसान साथियों की आजीविका में उसके योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। और ये तो आप जानते ही हैं कि आलू एक ऐसी सब्जी है जो हर सब्जी के साथ मिलकर उसका स्वाद को बढ़ा देता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, दुनिया के कई देशों में आलू को भविष्य की फसल भी कहा जाता है क्योंकि कम समय और कम लागत में ये अच्छी पैदावार देने वाली फसल मानी जाती है। भारत आज दुनिया के सबसे बड़े आलू उत्पादक देशों में शामिल है और इसमें हमारे देश के मेहनती किसान साथी यानी कि आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। श्रोताओं, चर्चा का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा लेकिन अभी हमसे जुड़ गए हमारे पहले कॉलर, आइए उनसे बात करते हैं।
1: हेलो मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, हेलो लोक मंजरी में आपका स्वागत है। किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैं गांव कुरूड़ी खेड़ा जिला सहारनपुर से सुशील कुमार बात करता हूँ। हमारे पास खेती है, खेती करते हैं बस अपनी।
0: अच्छा, तो आजकल क्या फसल बोई हुई है अपने अपने खेतों में?
1: गेहूँ बोए थे, गेहूँ बोने के बाद सारा गन्ना बोया आज। तो
0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनते हैं आप?
1: हाँ जी, सुनते हैं।
0: कैसा लगता है आपको ये कार्यक्रम?
1: मैम अच्छा लगता है, जानकारी मिलती है खेती संबंधित और योजनाओं से संबंधित मिलती है।
0: ये तो बहुत अच्छा लगा हमें सुनकर कि आपको हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से जानकारियाँ मिलती हैं।
1: लम है बहुत, बात का स्वास्थ्य बहुत सुनो, मतलब बहुत कार्यक्रम सुनो, स्वास्थ्य चर्चा है, लम है बहुत, प्रोग्राम होना ज्यादा सुनता हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है ये तो। तो मोबाइल या इंटरनेट खेत में इनका उपयोग करते हैं आप?
1: हाँ मैम, आवश्यकता अनुसार तो करना पड़ता है
0: जी। तो खेती में किस तरीके से, आपने कहा जैसे आवश्यकता अनुसार आप करते हैं, तो थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरीके से आपको?
1: कीट प्रबंधक के लिए, कुछ कीटनाशक रसायन की जानकारी के लिए कुछ विधियाँ होती है
0: जी,
1: जैसे पानी रोकना, अन्य विधियाँ होती है खेती संबंधित, उनमें जानकारी मिलती है, लेते हैं बाजार भाव का भी, कीट नियंत्रण का भी।
0: सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा कि आप आधुनिक तरीके से अपने खेत में कृषि कार्य कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी आप कौन सा लोकगीत सुनना चाहेंगे?
1: मैम आज मैं सुना दो महेंद्रपाल सिंह की, वो नीच पड़ोसी दुखी करे माड़ा रिश्तेदार सदा।
0: तो आइए सुनते हैं सुशील जी की फरमाइश पर ये रागिनी। और हेलो लोक मंजरी में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: Future proof your career with UPES Dehradun, India's AI first university. Choose from 100 plus AI integrated programs across engineering, business, law, design, humanities and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 30th May. Apply now at upes.ac.in.
3: किसान साथियों, आज अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस के मौके पर आइए आलू से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां आपको बताते हैं। श्रोताओं, आलू का इतिहास हजारों वर्ष पुराना माना जाता है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में हुई थी, बाद में ये दुनिया के विभिन्न देशों तक पहुंचा और आज ये विश्व की प्रमुख खाद्य फसलों में शामिल हो चुका है। भारत में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पर आलू की खेती की जाती है। किसान साथियों, आलू केवल स्वाद का नहीं बल्कि पोषण का भी महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, पोटेशियम और फाइबर जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इन्हीं कारणों से इसे ऊर्जा देने वाली मुख्य खाद्य फसल माना जाता है। किसान साथियों, आलू पर हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन एक और कॉलर हमसे जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो लोक मंजरी में आपका स्वागत है, किससे बात हो रही है हमारी?
4: उत्तर प्रदेश जिला शामली से गुलजार बात कर रहा हूँ मैं।
3: जी गुलजार जी, क्या करते हैं आप?
4: मैं उर्दू की पढ़ाई करता हूँ मैं।
3: अच्छा, आप उर्दू की पढ़ाई करते हैं? तो
4: उर्दू की पढ़ाई करते हैं आप?
3: जी जी जी। तो कृषि जगत कार्यक्रम सुनते हैं?
4: हाँ जी, कृषि जगत कार्यक्रम सुनते हैं। कार्यक्रम आता है हर शनिवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे।
3: जी बहुत अच्छी बात है, ये सुनकर हमें बड़ा अच्छा लगा कि आपको हेलो लोक मंजरी कार्यक्रम सुनते हैं और कृषि जगत कार्यक्रम भी आप सुनते हैं। जैसे आप उर्दू की पढ़ाई करते हैं, उसके साथ कुछ खेती बाड़ी का काम भी करते हैं या नहीं?
4: ना, खेती बाड़ी का काम नहीं करते हैं, उर्दू की पढ़ाई करते हैं। पर हमें पेड़ पौधे का शौक है, पौधे लगाने का शौक।
3: अच्छा, तो घर में लगा रखे हैं आपने पेड़ पौधे?
4: जी घर में पेड़ पौधे लगा रखे हैं जी।
3: देखभाल करते हैं उनकी?
4: हाँ जी देखभाल करते हैं।
3: आजकल जैसे गर्मियाँ बहुत हैं, तो कैसे उनका रख रखाव कर रहे हैं? क्योंकि तेज धूप है तो पौधे आजकल झुलस जाते हैं, तो ऐसे में कैसे आप उनको क्या देखभाल कर रहे हैं?
4: ऐसे में हम देखभाल जो कर रहे हैं ना, हम मैट लगा देते हैं वहाँ पर, मैट पेड़ के ऊपर मैट लगा देते हैं, ऐसे ही देखभाल करते हैं।
3: जी
4: हाँ, जाती है तो ऐसे ही देखभाल हो जाती है, सुबह शाम पानी देते हैं।
3: जी जी जी। तो अभी आप हेलो लोक मंजरी में कौन सा लोक गीत या रागनी सुनना पसंद करेंगे?
4: वो कोई हरी भरी तरकारी।
3: हेलो लोक मंजरी में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं गुलजार जी की फरमाइश का ये हरियाणवी गीत, हरी भरी तरकारी ले।
5: हरी भरी तरकारी ली लो।

0: Future-proof your career with UPES, India's AI-first university. Choose from 100-plus AI-integrated programs across engineering, business, law, design, humanities, and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 30th May. Apply now at upes.ac.in.
1: किसान साथियों, आज आलू केवल सब्जी तक सीमित नहीं है। इससे चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, स्टार्च और कई प्रसंस्कृत खाद्य तैयार किए जा रहे हैं। इससे न केवल हमारे किसान साथियों को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं, बल्कि उनकी आय में भी बढ़ोतरी हो रही है। दुनिया में गेहूं, चावल और मक्का के बाद आलू को सबसे मुख्य खाद्य फसलों में गिना जाता है। किसान साथियों, आजकल जलवायु परिवर्तन, बढ़ती लागत, रोग और भंडारण की समस्या हमारे सामने बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इन सबसे बचने के लिए आपको आलू की वैज्ञानिक खेती को अपनाना बहुत जरूरी हो गया है। यदि आप इसकी खेती को वैज्ञानिक तरीके से अपनाते हैं तो ये कम समय में बेहतर उत्पादन और अच्छी आय देने वाली फसल बन सकती है। पर आपको कुछ बातों को ध्यान में जरूर रखना चाहिए। सबसे पहले तो प्रमाणित और रोग मुक्त बीज का चयन करें, खेत में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें, संतुलित मात्रा में उर्वरकों और जैविक खाद का उपयोग करें और समय समय पर सिंचाई भी जरूर करें। यदि आपकी फसल में कोई रोग या कीट लग जाए तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर ही उचित मात्रा में दवाई का छिड़काव अपने खेत में करें और कटाई के बाद उचित भंडारण की व्यवस्था भी जरूर करें। ऐसा करने से आपकी फसल सुरक्षित रहेगी। और किसान साथियों, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो आइए पहले उनसे बात करते हैं। हेलो लोकमंजरी में आपका स्वागत है, किससे बात हो रही है हमारी?
2: नमस्कार मैडम, मैं रेखा बोल रही सहारनपुर से।
1: क्या करती हैं आप रेखा जी?
2: नहीं, बस घर का काम काज, खेती बाड़ी, बस हमारा तो यही काम
1: है। अभी क्या फसल लगा रखी है आपने?
2: मैडम जी मक्की बोई है
1: जी। तो कृषि जगत कार्यक्रम सुनती हैं आप?
2: हाँ मैडम जी सुने हैं, आपका प्रोग्राम तो अच्छा लगे
1: जी। जी, तो जब आप अपने खेत में होती हैं तो क्या रेडियो सुनती हैं?
2: अरे मैडम जी बड़ी अच्छी बात बोली, हम तो रेडियो अब तो छोटा सा आवे, छोटा सा रेडियो अपने साथ ले जाए, वही काम करते रहे। जो अभी गेहूं काट रहे थे ना हम,
1: जी जी,
2: मस्त हम तो वहाँ बैठे रेडियो लगा दे
1: जी,
2: और बस काम करने में इतना आनंद आए, मस्त रेडियो सुनते रहो और काम भी होता रहे, पता ही ना चलता, काम जल्दी हो जाए। बल्कि
1: ये तो बड़ी अच्छी बात है। रेडियो में क्या सुनना पसंद करती हैं आप?
2: मैडम जी गाने गुने आ जाए, कोई प्रोग्राम आ जाए अपनी पसंद के गाने, वैसे भी पुराने गाने भी चले वो बड़े अच्छे लगे
1: जी,
2: और आप लोगों के उसमें जो प्रोग्राम में बजे है रागड़ी भोजपुरी गाने सभी सुन रहे हैं हम तो
1: जी। जैसा आपने कहा आप कृषि जगत कार्यक्रम सुनती है, तो हेलो लोक मंजरी भी सुनती होंगी?
2: हाँ,
1: तो हेलो लोक मंजरी कार्यक्रम कैसा लगता है आपको?
2: मैंने तो अच्छा लगा है, मैं तो फोन मिलाऊं कई बार तो मिले ही ना नंबर, आज तो लग गई हमारी कॉल।
1: हाँ जी, कई बार क्या होता है कि कई श्रोता हमसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब आपने जब करा होगा तो कोई और कॉलर मेरे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा होगा या बात कर रहे होंगे, तो इस वजह से आपका कॉल नहीं लग पाया होगा। लेकिन कोई बात नहीं, आप हमें अपने पत्रों के या संदेशों के माध्यम से भी अपने फरमाइशी लोकगीत या रागनियां भेज सकते हैं। तो
2: अच्छा मैडम,
1: अभी आप कौन सा लोकगीत या रागनी क्या सुनना पसंद करेंगी?
2: मैडम जी मैंने कोई भोजपुरी गाना सुना दो
1: जी। बिल्कुल, तो आइए सुनते हैं रेखा जी की पसंद का ये भोजपुरी गाना। हेलो लोक मंजरी में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।
2: धन्यवाद मैडम।

0: 20 से अधिक वर्षों का अनुभव, 20 से अधिक देशों में आयुर्वेद सेवा,
1: नारी परीक्षण, पंचकर्म चिकित्सा, नेत्र रोग, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर और अल्सराइटिव कोलाइटिस का विशेष उपचार,
0: स्वनिर्मित आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ।
1: व्हाट्सएप 7895372936।
0: पूर्ण उपचार चाहिए तो मिलिए नारी वैद्य राहुल गुप्ता से। श्री विश्व प्रांगण आयुर्वेद पुराना शिव मंदिर मुखानी चौराहा हल्द्वानी, शनिवार छोड़कर पूरे सप्ताह उपलब्ध।
2: किसान साथियों, अब लेते हैं एक पत्र जो हमें भेजा है गांव टिकुला कला उत्तराखंड से मास्टर रमेश चंद्र नामदेव जी, संजय कुमार नामदेव, डॉक्टर राजेन कुमार नामदेव, श्रीमती ज्योति नामदेव, पोती अंशिका, पोते निकुंज, सूर्यकांत नामदेव ने। ये सभी लिखते हैं, आदरणीय भाई साहब जी एवं प्रिय बहन जी नमस्कार। नमस्कार आपको भी। आपके हम नियमित श्रोता हैं, आकाशवाणी देहरादून के प्रत्येक कार्यक्रमों को नियमित सुनते हैं। सभी कार्यक्रम सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं। जो शाम 7 बजे कृषि जगत कार्यक्रम में 5 मई से 12 मई 2026 तक की प्रस्तुतकर्ताओं का ब्यौरा, 5 मई शाम 7 बजे प्रिय बहन बीना शर्मा, 6 मई शाम 7 बजे प्रिय बहन कंचन रावत, 7 मई शाम 7 बजे प्रिय बहन चंदा मलासी, 8 मई शाम 7 बजे भाई साहब मधुसूदन नौटियाल, 9 मई शाम 7 बजे प्रिय बहन शिप्रा लोकमंजरी में, 10 मई शाम 7 बजे भाई साहब विकास चमोली जी, 11 मई शाम 7 बजे प्रिय बहन चंदा मलासी, 12 मई शाम 7 बजे भाई साहब धनंजय भारती। कृषि जगत कार्यक्रम में इन सभी प्रिय बहन व सभी प्रिय भाइयों की प्रस्तुति का

सराहनीय थी, धन्यवाद। नामदेव परिवार की ओर से सभी बहनों व भाइयों को बारंबार धन्यवाद, नमस्कार। रमेश जी, आपके पत्र में हमारे सभी साथियों के लिए जो स्नेह और प्रशंसा झलकती है वह हमारे लिए बहुत मायने रखती है। आपके शब्दों ने हम सभी का उत्साह बढ़ाया, हम आपके प्यार व विश्वास के लिए हृदय से आभारी हैं। आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे और उपयोगी जानकारियां लाते रहें। पत्र लिखने के लिए धन्यवाद। तो आइए अब सुनते हैं हेलो लोक मंजरी के अंतर्गत ये लोकगीत।

तो किसान साथियों, यदि आप भी अपनी फरमाइश के लोकगीत या रागनियां सुनना चाहते हैं तो 7088001382 पर हमें कॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्रत्येक शुक्रवार 1:30 से 2 बजे के बीच हेलो लोक मंजरी कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग की जाती है और आप हमें पत्र भेजकर भी अपने फरमाइशी पत्रों के द्वारा अपने पसंद के लोकगीत व रागनियां सुन सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून पिन कोड 2480001। तो अब अपनी साथी दीपा भगासी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किसान साथियों का पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:30 होने को है। अब आप कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार उगदगढ़ मी योगिता बिष्ट। पली मुख्य समाचार। अलमर जिला करणखेतम 1170 अग्निविरुल भारतीय सेना में शामिल हबीर देशक सेवाक शपथ ली। सरकारल को राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों को प्रांतीयकरणक लिजी नई नीति बनाई जाल। राज्यम पिछड़ 36 घंटों 5 अलग अलग दुर्घटनाओं 11 मैशुक मौत 11 घायल। चमोली जिलक नीति घाटीम भोबटी द्विदिनी नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रनक आयोजन करी जाल। और प्रदेश मौसम बदल गो, देहरादूनक दगड़ और जिलों बहुत द्योहुणक ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तारल। अलमर जिला करणखेत स्थित कुमाऊं रेजिमेंट सेंटरक ऐतिहासिक सोमनाथ मैदानम 1170 अग्निविरुल भारतीय सेना में शामिल हबेर देशक सेवाक शपथ ली। 6 महीनाक कठिन प्रशिक्षणक बाद ही कसम परेड समारोह देशभक्ति और गौरवक भावल सराबोर रो। यह मौक पर बहुत भल प्रदर्शन करने वाले अग्निवीरों के सम्मानित लगी गो। समारोह के संबोधित करते हुए ब्रिगेडियर विजयंत महादिकलल सभी अग्निवीरों और उनर परिवार वालों के बधाई दी। उन्होंने कहा कि फौजम भर्ती है बेर देशक सेवाक मौक सिर्फ किस्मत वालों के मिलू। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना KRC और पूरे देश उन इस बौजूक आभारी छू जिन्होंने अपन चल राष्ट्रक सुरक्षा लिजी समर्पित करहनी।

0: आपने राष्ट्र सेवा की शपथ ली है, इसलिए आज से आपका हर कदम राष्ट्र के सम्मान के लिए होगा। आप अपनी अपनी यूनिट में एक ऐसे सैनिक बनकर जाएं कि अनुशासन, साहस और समर्पण ही आपकी पहचान बने, और आप पर आपकी यूनिट, कुमाऊं रेजिमेंट और भारतीय सेना को हमेशा फख्र हो। मैं माँ कालिका से प्रार्थना करता हूँ कि वे आपको अपने सैनिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए शक्ति, बुद्धि और संकल्प प्रदान करें, ताकि आप अपनी ली हुई शपथ को निष्ठा, ईमानदारी और वफादारी से पूर्ण कर सकें।
1: प्रदेशम राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों को प्रांतीयकरण दिशम सरकार जल्दी नई नीति लैण वाल छू। यह संबंध शिक्षा विभाग के एक महीना भीतर प्रस्ताव तैयार करनक निर्देश दी जारी। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावतल विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर बेर एक महीना भीतर मंत्रिमंडलक सामने प्रस्तुत करनक निर्देश दी। देहरादूनम शिक्षा विभागक समीक्षा बैठक में डॉ. रावतल को कि नई नियमावली लागू होने बाद अशासकीय विद्यालयों को प्रांतीयकरणक मार्ग प्रशस्त होल, जिनर प्रबंधन समिति शासन के राजकीयकरणक प्रस्ताव उपलब्ध कराई। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित नियमावली विद्यालयक जमीन उपलब्धता और स्वामित्व, स्कूली नंतिनुक संख्या, कार्मिकों को वरिष्ठता, पदों की आवश्यकता और सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय व्यवभार जस जरूरी पहलुओं के शामिल करी जाल। राज्य में पिछड़ 36 घंटों हई 5 अलग अलग दुर्घटनाओं 11 मैसूक मौत है गए, जबकि 11 जनी घायल छी। रुद्रप्रयाग जिले में सड़क दुर्घटना में 3 जनियों की मौत और 5 मैस घायल हैगी। चमोली जिला लौणी गांव के नजदीक आज रत्ती लगभग 4 बजे एक इको वैन दुर्घटनाग्रस्त है गए। गाड़ी में सवार 6 लोगों बटी 3 जनियाक उतनी मौत हैगी, जबकि 3 जनी घायल हैगी। घायलों के प्राथमिक उपचार के बाद एयर एम्बुलेंसल ऋषिकेश स्थित एम्स भेजी गो। वहीं अलमार जिले में बेहई एक्सीडेंट ट्रैक्टर गहरी खाई में घुरनल 2 जनियाक मौत हैगी। वहीं उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानिक नजदीक बे रात एक कार दुर्घटना में 2 जनियाक मौत हैगी, जबकि 3 घायल हैगी। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में कुल 5 जनी बहरे छी। यकदगढ़ गंगोत्री धामम गंगा घाट पर स्नान करते बखत एक सैनिक गाड़म डूबनल मौत हैगी। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीनल अपन 3 दिनी उत्तराखंड प्रवासक आखिरी दिन विभिन्न संगठनात्मक और जनसंपर्क कार्यक्रमों में भाग लियो। राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनक शुरुआत देहरादून स्थित तपकेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन और पूछ करबेर करी। एक बाद उन्होंने एक बूथ अध्यक्षक घर जबेर कार्यकर्ताओं दगड़ आत्मीय संवाद करो। राष्ट्रीय अध्यक्ष शिमला बाईपास स्थित एक निजी कॉलेज में हई प्रबुद्ध गोष्ठी में शामिल हई। उन्होंने शिक्षाविदु, बुद्धिजीवियों, उद्योग जगत और समाजक विभिन्न वर्गक प्रतिनिधियों हेते संवाद करो और केंद्र और राज्य सरकारक जन कल्याणकारी योजनाओं और पार्टी की नीतियों पर विस्तार चर्चा करी। उन्होंने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में है युवा संवाद कार्यक्रम जवान नंतिनु हेते बात करी। कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यह बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रो। ताजा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह कदगर न्यूज समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी। चमोली जिला के नीति घाटी में भोबटी 2 दिनी नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रनक आयोजन करी जल। उत्तराखंड पर्यटन विभाग और भारतीय सेना के समन्वय है यह प्रतियोगिता सीमा पर्यटन के बढ़ावा देण और सीमावर्ती क्षेत्रों के नई पछाण दिलाणक दिशम एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही। अल्ट्रा रन में 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर विभिन्न श्रेणी छी। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले धावकों के ऊंचाई, कम ऑक्सीजन और बदलते मौसम जैसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करन पड़ल। जिलाधिकारी गौरव कुमारल बता कि नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रनक प्रमुख उद्देश्य सीमांत क्षेत्रों पर्यटन के बढ़ावा देण और स्थानीय स्तर पर रोजगार व आर्थिक गतिविधियों के प्रोत्साहित करण छू।
2: 31 मई को अल्ट्रा मैराथन हमारे नीति क्षेत्र में प्लान है, जो यूटीडीपी के द्वारा की जा रही है और इसमें विभिन्न कैटेगरीज में धावक आ रहे हैं और उनके लिए हमारा प्रशासन व्यवस्थाएं बनाने में लगा हुआ है और इस अल्ट्रा मैराथन से हमारे नीति मरारी क्षेत्र को एक नई पहचान मिलेगी।
1: पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवारल बता कि आयोजनक लीजिए भारतीय सेनाक दगड़ समन्वय स्थापित कर सब जरूरी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करहनी। श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धामों में अब सुगम दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं के 1100 रूपये शुल्क देण होल। यह एक संबंध श्री बद्री केदार मंदिर समिति बीके

बीकेटीसी नई मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी करी है। बीकेटीसी के मुख्य कार्याधिकारी सोहन सिंह रांगड़ल बता कि यात्रा संचालन के ज्यादा भल सुरक्षित और समयबद्ध बनाना लीजिए यह व्यवस्था लागू करी जा रही। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या प्रतिकूल मौसमक परिस्थितियों और लंब कतारों की समस्या के देखते हुए यह फैसला ली जा रहा। राजधानी देहरादून में आज दोपहर बाद झमाझम द्योहुणल तापमान गिरावट दर्ज करी गये। जेल मैसू के बहुत उमाव और उमसल राहत मिल गये। मौसम विभागल आणवल 2 जून तक प्रदेशक ज्यादातर जिलों द्योहुण संभावना जते रहे। विभागल आज देहरादून टिहरी पौड़ी और पिथौरगढ़ जिलों में कई कई बहुत द्योहुण ऑरेंज अलर्ट जारी कर रहो, जबकि बागबची मैदानों जिलों का लीजी येलो अलर्ट घोषित करी जा रहो। भोले राज्य कुछ पहाड़ी जिलों ऑरेंज अलर्ट और अन्य जिलों खासकर मैदानी क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी कर रहो। यो दौरान तेज पवन पड़नक डाव पड़नक और कहीं कहीं भौते द्योहुणक संभावना छू। मौसम विभाग चारधाम यात्रा पर आई श्रद्धालुओं और प्रदेशवासियों हेते मौसम खराब होने की स्थिति में सुरक्षित जगहों पर रुकनक और प्रशासन बटी जारी दिशा निर्देशों का पालन करनक अपील कर रहे। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाई जा रो। यही दिन साल 1826 पंडित जुगल किशोर शुक्लल हिंदी पली समाचार पत्र उदंत मारतंडक प्रकाशन शुरू करो। यो दिन हिंदी पत्रकारिता के योगदान वैक इतिहास और समाजम वैक महत्वपूर्ण भूमिका के याद करना मौक छो। हिंदी पत्रकारिता दिवसक मौक पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल पत्रकारों और प्रदेशवासियों के शुभकामनाएं दी। अपन संदेश में मुख्यमंत्री को कि हिंदी पत्रकारिता लोकतंत्रक सशक्त आवाज रही छू और समाजम जन जागरूकता बढ़ानक और जन भावनाओं के अभिव्यक्ति दिणम यह एक महत्वपूर्ण भूमिका रहे। मुख्यमंत्री को कि हिंदी पत्रकारिता एलब बखतम समाज और शासन बीच में एक महत्वपूर्ण सेतु रूपम कार्य कर रहे। वहीं सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ले हिंदी पत्रकारिता दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए को कि निष्पक्षता विश्वसनीयता और जनहितक भावना आज ले पत्रकारिता मूल आत्मा छू। अंत में मुख्य समाचार एक बार आई सुनो। अलमर जिला रणखेतम 1170 अग्निवीरुल भारतीय सेना में शामिल हबे देशक सेवा शपथ ली। सरकारल को राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों को प्रांतीयकरण लीजी नई नीति बनाई जल। राज्य में पिछड़ 36 घंटों 5 अलग अलग दुर्घटनाओं 11 मैशुक मौत 11 जनी घायल। चमोली जिला नीति घाटी में भोबेटी 2 दिनी नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रनक आयोजन करी जाल। और प्रदेश में मौसम बदल गो। देहरादूनक दगड़ भते जिलों में भते द्योहुणक ऑरेंज अलर्ट। यह के दगड़ कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों के यो अंक समाप्त हो। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कुमाऊनी प्रादेशिक समाचार। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 7:40 हुए हैं। समय है फिल्म संगीत का। आइए सुनते हैं फिल्म तारे जमी से तारे जमी पर, फिल्म से शान और अरमान मलिक की आवाज में ये गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत FM 100.5 MHz पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 7:50 हुए हैं। आइए सुनते हैं क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर आस्था अग्रवाल से साक्षात्कार। प्रस्तुत करता है स्वाति कपिल।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में आकाशवाणी देहरादून से मैं स्वाति कपिल आप सबका स्वागत करती हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं साथियों कि ग्रीष्म ऋतु चल रही है और इस मौसम में जहां हम आम और शिकंजी का लुत्फ उठाते हैं वहीं गर्मी की तपिश अपने साथ बहुत सारी दुश्वारियां लेके आती है। इसमें सबसे प्रमुख है लू लगना, जिसे हम आम भाषा में कई बार हीट स्ट्रोक भी कहते हैं। तो साथियों, आज इस विषय पर एक विशेष साक्षात्कार हम कर रहे हैं और इस विषय पर जानकारी देने और लू से बचाव के उपाय के बारे में हमें जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ देहरादून के प्रतिष्ठित अस्पताल में कार्यरत शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आस्था अग्रवाल हैं। मैम नमस्कार और स्वागत है आपका आकाशवाणी देहरादून में।
2: धन्यवाद स्वाति जी।
1: मैम कैसी हैं आप?
2: एब्सोल्युटली बहुत बढ़िया।
1: मैम आप तो जैसा देख रही होंगी कि मौसम में जिस तरीके की तब्दीलियां आ रही हैं, तापमान बढ़ता जा रहा है, तो बहुत सारी परेशानियां आम जन को हो रही हैं। तो चूंकि आप एक अस्पताल में कार्यरत हैं, एक डॉक्टर हैं, तो आप किस तरीके की परेशानियों को और जो लोग आ रहे हैं उनमें क्या प्रमुख रूप से आप देख रही हैं?
2: अगर मैं बच्चों की बात करूं

0: करूं कि प्रमुख रूप से तो बच्चों को गर्मी लगने की वजह से जो बच्चे आते हैं उनको या तो डायरिया की शिकायत हो जाती है,
1: जी
0: कई बार बुखार के साथ सर्दी खांसी भी हो जाती है। तो ये जो मौसम बदलता है एकदम, मौसम बदलना मैं कहूंगी कि अगर 40 से 45 हो गया या 30 से 35 हो गया, उस चीज को मौसम बदलना कहते हैं जो एकदम से बदल जाता है। तो ये
1: तापमान में अचानक
0: हाँ
1: बढ़ोतरी
0: अचानक
1: होना।
0: 5 से 6 डिग्री की बढ़ोतरी, उस चीज को हम कभी भी बैलेंस नहीं कर पाते, कस्टमाइज नहीं हो पाते उस चीज से, तो उस चीज की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो उस तरीके के बच्चे आते
1: तो यदि मैं एक आम जन की बात करूं, सभी विश्व आयु वर्ग के लोगों की बात करूं, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों या मध्यम वर्ग के, तो मुझे लगता है बढ़ते तापमान के साथ जो सबसे ज्यादा हमको सुनने में आता है कि लू लग गई भाई, बाहर निकले थे और अचानक से हुआ। तो कई बार समझ में नहीं आता है लोगों को कि उनको वाकई में हुआ क्या है, उनको लगता है बुखार हो गया है। तो मैं डॉक्टर आज साहब के साथ सबसे पहले जानना चाहूंगी कि लू या हीट वेव होती क्या, हम आप एक डॉक्टर के रूप में आप उसको किस तरीके से परिभाषित करेंगे
0: जी।
1: आम जन को समझाने की?
0: वैसे तो देहरादून एक वादी है और
1: जी
0: सारे लोग यहाँ पे गर्मियों में आते हैं
1: जी
0: कि थोड़ा सा मौसम चेंज हो जाएगा और अच्छा
1: जी
0: लगेगा, पर देहरादून में अब इतना परिवर्तन हो रहा है कि अब हमें मौसम विभाग से भी जानकारी मिली कि अब टेम्परेचर 40 में आएगा, जो कि
1: जी
0: मोस्टली पहले देहरादून में नहीं होता, 35 तक रहा करता था
1: जी
0: टेम्परेचर।
1: जी जी
0: तो जब 40 के ऊपर टेम्परेचर हो जाता है, तो क्योंकि हमारी बॉडी का अपना तापमान जो हम
1: जी
0: कोर टेम्परेचर कहते हैं वो 37 डिग्रीज, तो जब 40 हो जाता है तो हमारी बॉडी को उसको मेंटेन करने के लिए, तो अगर वो चीज नहीं हो पाती है और अगर टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाता है तो हम उसको लू लगना। तो जैसे कि आप बोल रहे थे कि एक चीज होती है हीट एग्जॉशन, कि हमें थकान हो रही है, और एक चीज लगना होता है कि हीट स्ट्रोक हो गया, कि हमें लू लग गई। तो ये थोड़ी सी अलग चीजें हैं, एक के बाद दूसरा स्टेप है। तो हम चाहते हैं कि दूसरा स्टेप तो आए नहीं, लू लगना जो हीट स्ट्रोक होता है वो तो एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसके लिए आपको हॉस्पिटल ही जाना चाहिए।
1: जी
0: तो उसमें क्या होता है कि शरीर का तापमान ही बढ़ जाता है। वैसे
1: अच्छा
0: हमारा जो बॉडी का मैकेनिज्म होता है,
1: जी
0: किसी को भी जब गर्मी लगती है तो हमें स्वेटिंग होती है,
1: बिल्कुल
0: तो
1: सही कहा
0: स्वेटिंग
1: आपने,
0: होने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी ट्राई कर रही है
1: मतलब
0: कि
1: जब
0: तापमान कम
1: जरूरत
0: हो
1: से
0: जाए।
1: ज्यादा जब पसीना निकलता है।
0: हाँ,
1: जी
0: तो जब हमारा नॉर्मली पसीना निकलता है तो आपने देखा होगा कि हमारा टेम्परेचर स्किन का नॉर्मल रहता है,
1: जी
0: तो बॉडी ने अपने मैकेनिज्म का काम किया और
1: जी
0: हमारे तापमान को वही रखा जो हम चाहते हैं।
1: जी
0: पर जब कभी मान लीजिए कि पानी कम पिया है, बहुत तेज धूप में चले गए, बहुत लंबा टाइम हो गया और आपको बहुत स्वेटिंग भी हो चुकी है, और फिर उसके बाद ऐसा हो रहा है कि आपकी बॉडी उसको मैनेज नहीं कर पा रही और आपकी अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर बढ़ने लगता है वो हीट स्ट्रोक कहलाता है, और वो बहुत ही घातक होता है, वो एक
1: अच्छा
0: इमरजेंसी है।
1: ओके
0: अगर ऐसा हो
1: जी
0: रहा है कि आपको लग रहा है कि नहीं अभी तो टेम्परेचर ठीक था, स्वेटिंग हो रही थी, अब हम लाल हो रहे हैं और हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया,
1: जी
0: तो वो बुखार नहीं, वो हीट स्ट्रोक है, वो एक इमरजेंसी है जिसमें आपको अस्पताल जाना चाहिए।
1: तो मुख्यतः मुझे जो आपके कहने से समझ में आया डॉक्टर आस्था, कि यदि लू लगना जो है मुख्यतः बढ़ते तापमान के साथ
0: जी
1: आसपास के, यदि हमारी हमारा शरीर उस तापमान के साथ अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाता
0: जी
1: है
0: बिल्कुल
1: तो उसके लक्षण हमको दिखाई देते हैं। तो मैं इसी क्रम में आपसे जानना चाहूंगी कि लू लगना तो आपने परिभाषित कर दिया, जो मेरे ख्याल से हमारे सभी श्रोतागण अब समझ चुके होंगे। तो इससे आगे यदि लू लगने के लक्षण क्या होते हैं, आपको पता कैसे चलेगा आपके शरीर में कि हाँ हमको लू लग गई है या हीट स्ट्रोक हुआ है, ये कैसे होता
0: तो
1: है?
0: जैसे कि एक तो ये तो ऑब्वियस है कि हम लोग बाहर होंगे अगर बहुत गर्मी में होंगे, एक तो जो मैं चीजें देखती हूँ कि हम लोग जो गलतियां करते हैं वो ये होती है कि जैसे मान लीजिए हम कार में जा रहे हैं, एसी एकदम ठंडा है,
1: जी
0: हमने उसको 20 कर लिया
1: ओ
0: और सीधे हम बाहर गए 40 में,
1: ओके
0: तो बॉडी को शॉक लगता है ना, वो
1: अच्छा
0: उसको एकदम से बैलेंस नहीं कर, है ना, उसको 37 पे रहना है, अभी तो एकदम आराम से 20 डिग्रीज था, अभी एकदम
1: जी जी
0: 40 पे हम जा रहे हैं, तो वो बैलेंस जब खराब होता है तब दिक्कतें शुरू होती। पर मान लीजिए कि आपका काम ही ऐसा है कि आपको बाहर करना है ना, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें उस बॉडी के मैकेनिज्म को ध्यान रखते हुए हर वो चीज करनी है
1: जी
0: कि हम उस नौबत पे नहीं आए कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर ही गड़बड़। मान लीजिए कि आपको स्वेटिंग नहीं हो रही है, आपको लग रहा है कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है,
1: हाँ
0: मेरे को रेड हो रही है मेरी स्किन, है ना, आपको बहुत थकान होनी शुरू हो गई, आपको बहुत सीवियर हेडेक हो रहा है,
1: अच्छा
0: तो ये लक्षण है, बॉडी कह रही है कि नहीं, या आपने आपको मालूम है कि आप सुसु नहीं गए हो बहुत टाइम से, तो वो भी एक तरीका है कि आप डिहाइड्रेट हो रहे हो।
1: ओके
0: तो जो डिहाइड्रेशन के पहले शुरू के लक्षण है आपको उन्हीं को पिक करके ध्यान रखना है, या तो आप मेजर्स ले लीजिए कि आप छांव में चले गए, आपने बीच बीच में ब्रेक्स ले लिए, आपको प्यास नहीं भी लग रही है, आपको मालूम है आप गर्मी में है, तो आप आधे आधे घंटे में पानी पीते रहिए।
1: तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि शरीर में कोई भी असामान्य प्रक्रिया आपको जो आमतौर पर आपके डेली लाइफ रूटीन से आपको अलग दिखती है, वो कहीं ना कहीं ये बताती है कि आपको लू लगी है यदि गर्मी के मौसम में आप कहीं बाहर आते जाते हैं, और ये तो हुए लक्षण की बात मैम। यदि मैं आपसे ये पूछूं डॉक्टर आस्था कि यदि लू लग जाए, बिकॉज हमारे बहुत सारे ऐसे कामकाजी लोग हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे मजदूर वर्ग हैं और पढ़ने वाले बच्चे हैं, वैसे तो मुझे लगता है कि सभी डॉक्टर्स और हम सभी जानते हैं कि कहते हैं कि 12 से 4 के बीच हमें नहीं निकलना चाहिए दोपहर में, ये एक बड़ी बड़े बुजुर्ग भी हमको कहते आए हैं। तो बट जिनको निकलना है, जो कामकाजी हैं, जो छात्र हैं, जो हमारे कामकाजी लोग हैं जिनको जाना ही है, यदि उनको निकलना है तो आप क्या बताएंगे डॉक्टर आस्था कि उनको क्या सावधानियां रखनी चाहिए जब वो घर से बाहर निकलें ताकि उनको लू ना लगे।
0: हाँ, तो एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि हाइड्रेशन ठीक होना चाहिए। आप आधे आधे घंटे में पानी पीते रहे, ये नहीं सोचिए मुझे अभी प्यास नहीं लग रही, आपको पीते ही रहना है।
1: ओके,
0: है ना। और मान लीजिए आपका कॉन्स्टेंटली ऐसा काम है कि ठीक है आपका फील्ड वर्क है, आपको धूप में रहना ही है, मान लीजिए ट्रैफिक पुलिस है उनको धूप में रहना ही है, तो आप आधे आधे घंटे के ब्रेक में जब पानी लें तो थोड़ा सा छांव में चले जाएं।
1: अच्छा,
0: ठीक है। तो ये अगर आप हाइड्रेशन का ध्यान रखेंगे, प्लस आपका सर कवर्ड होना चाहिए, जैसे अच्छा। बड़े बुजुर्ग भी कहते थे धूप में निकल रहे हो कि हाँ आप हेड कवर्ड रखो, नेक कवर्ड रखो। अच्छा। उसका भी बहुत लॉजिक है, आपने अच्छा। पुराने जमाने में देखा होगा लोग अंगोछा बांध के चलते थे।
1: हाँ,
0: है ना, सर, जी बिल्कुल बिल्कुल, सर और गर्दन पूरी कवर्ड रहती थी, उनको पता था कि ये एरिया सेंसिटिव होता है, अगर हम उसको नहीं ढकेंगे तो हमारी बॉडी फिर डिसबैलेंस हो जाएगी, है ना। प्लस पानी पीते रहना और हल्के सूती कपड़े पहनिए, व्हाइट पहनिए, जैसे पहले कहते थे ना गर्मियां हुई सफेद सूती कपड़े पहनने, एयरी होने चाहिए,
1: या हल्के ऐसे नहीं कपड़े के, भी हाँ, कहा जाता
0: जैसे तो थोड़ा सा ब्रीदेबल कपड़ा हो, सूती हो एकदम,
1: तो उनसे हवा का जो
0: आदान प्रदान होता रहे, बिल्कुल, क्योंकि बॉडी को भी हीट निकालनी है, हेड सबसे कवर्ड रख।
1: तो ये तो बात हुई मैम सुरक्षा से संबंधित उपाय,
0: फिर भी लग गई,
1: फिर भी यदि लू लग जाए, क्योंकि जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है तापमान और आगे आगे जो महीना है जून का वो भी पूरा ही गर्मी का ही रहेगा, तो उस जो है कंडीशन में हमको क्या सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर तक जाने में भी हमें समय लगता है, तो क्या एक उपाय है जो हमको प्रारंभिक रूप से उस मरीज के साथ करने चाहिए?
0: जैसे ही आपको लगे कि किसी को लू लग गई, आप तुरंत उसको छांव में ले जाएं पहली बार, अच्छा, है ना। और अगर कपड़े अगर एयरी नहीं है खोल दीजिए
1: जी,
0: और अगर आपके पास कुछ भी ठंडा नॉर्मल पानी है या ठंडा पानी बहुत ज्यादा चिल्ड नहीं
1: जी,
0: ठंडा पानी है तो उससे पट्टी करिए,
1: अच्छा,
0: है ना, और उससे टेम्परेचर तुरंत डाउन हो जाता है, या उनको गीले कपड़े में आप लपेट भी सकते हो,
1: अच्छा,
0: ठीक है। अगर वो गफलत में नहीं है,
1: है
0: ना, होश में है
1: जी,
0: तो आप उनको सिप सिप करके ORS पिलाते रहिए,
1: हाँ,
0: क्योंकि वाटर लॉस के साथ इलेक्ट्रोलाइट या सोडियम पोटेशियम जो हम कहते हैं वो भी लॉस होता है, तो ORS में वो भरपूर मात्रा में होता है जितना चाहिए बॉडी को, तो अगर वो व्यवस्था हो तो आप सिप सिप करके उन्हें पिलाइए। पर अगर आपको लगता है कि पेशेंट कॉन्शियस नहीं है, उनको होश नहीं है, वो अजीब सी बातें कर रहे हैं,
1: अच्छा,
0: है ना, और उनको लग रहा है चक्कर आ रहे हैं,
1: मुझे
0: ये स्थिति आ जा, हाँ बिल्कुल आती है। अगर वो होश में है, वो पानी पीने लायक है तो ही पिलाइए, अगर नहीं है तो आप टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करिए, अच्छा। आप उनको सीधे अस्पताल ले जाइए।
1: क्या आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जिस विषय के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं, लू लगना
0: जिस के बारे में? तो मेरे प्यारे श्रोताओं को मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जो हम कहते हैं कि बचाव ही सबसे अच्छी चीज है। आप नियम बना लीजिए, प्यास लगी या नहीं लगी आपको आधे आधे घंटे में पानी पीना है, आप ये सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल लू नहीं लगेगी। और मैं कहना चाहूंगी कि स्वस्थ रहें और मस्त रहें।
1: बिल्कुल प्रासा, आज आपने हमें लू और उससे बचाव के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू स्वाति।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर आस्था अग्रवाल से साक्षात्कार, प्रस्तुतकर्ता थी स्वाति कपिल। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। रात के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपका पत्र मिला।

0: कार्यक्रम आपका पत्र मिला के सभी श्रोताओं को नमस्कार, और साथ में नमस्कार अनिता जी आपको।
1: नमस्कार कल्पना जी।
0: और हम देख रहे हैं ना कि बहुत सारे पत्र हैं आज आपका पत्र मिला कार्यक्रम में।
1: हाँ जी,
0: तो हम सोचते हैं कि जल्दी से पत्रों का सिलसिला शुरू किया जाए।
1: बिल्कुल,
0: कार्यक्रम में पहला पत्र हमारे श्रोता हमें लिखते हैं मिसबा शमसी नगीना, जिला बिजनौर, यूपी से। आप लिखते हैं कि आकाशवाणी परिवार को मेरा सलाम, साथ ही आप सभी को

0: ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद। लिखते हैं कि कैसे हैं आप सब, और ये लिखते हैं कि 22 तारीख को हेलो फरमाइश कार्यक्रम पीयूष मैम ने प्रस्तुत किया, अच्छा लगा। 23 तारीख को युवाणी कार्यक्रम शिवानी मैम ने प्रस्तुत किया, अच्छा लगा। 24 तारीख को काव्यांजलि कार्यक्रम में सुबोध कुमार सिन्हा से कविताएं सुनी, कार्यक्रम बहुत पसंद आया। 25 तारीख को ये कलाकार कार्यक्रम में मशहूर निर्माता निर्देशक करण जौहर के बारे में जानकारी सुनी, कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। 26 तारीख को व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम भी अच्छा लगा। और लिखते हैं कि 27 तारीख को सेहत कार्यक्रम में बच्चों में पेट दर्द कारण उपचार विषय पर डॉक्टर सुनील कुमार से रमेश चंद्रा की हमने बातचीत सुनी, कार्यक्रम बहुत पसंद आया। और ये लिखते हैं कि आप अगर आपका पति मिला कार्यक्रम को यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे तो जब भी हम चाहें या किसी कारणवश प्रोग्राम नहीं सुन पाते हैं तो हम सुन सकते हैं और कभी भी उस कार्यक्रम का हम सुनकर आनंद ले सकते हैं। लिखते हैं कि मुझे आपके केंद्र के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं।
1: मिसबाह जी, आपने इतने प्यार से हमें पत्र लिखा है और आपने अपना सुझाव भी दिया है
0: जी, और आपने सिलसिलेवार भी तो कितने प्रोग्राम इन्होंने सुने हैं, लिखे भी हैं कि 22 तारीख को, 23 तारीख को,
1: 24 तारीख को, 25 को, 26 को, पूरे सप्ताह भर का इन्होंने मतलब लेखा झोंका सब दे दिया है
0: जी।
1: और इन्होंने ये भी हमें मतलब अपना सुझाव दिया है कि जो हमारा आपका पत्र कार्यक्रम है इसको हम यूट्यूब पे भी अपलोड कर दें तो इससे बढ़िया क्या सुझाव होगा कल्पना जी?
0: जी बिल्कुल, इनका सुझाव अच्छा है और इनके सुझाव को हम नोट कर लेते हैं और जब भी आगे ऐसा कुछ प्रस्तावित होगा यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा तब हम आपको सूचना भी देंगे मिसबाह जी, तो आप यूट्यूब पर भी इस प्रोग्राम को सुन पाएंगे। फिलहाल जो हमारा कार्यक्रम हो रहा है आपका पत्र मिला कार्यक्रम शनिवार को रात्रि 8 बजे, तब तक आप उस प्रोग्राम को तो सुने और साथ ही और जो दूसरे कार्यक्रमों के बारे में आप प्रतिक्रिया लिखती हैं उसके बारे में भी आप हमें लिखते रहें। और आप हमारी कैसी श्रोता हैं जो सभी कार्यक्रमों को सुनती हैं, चाहे युवाणी हो, सेहत हो, हेलो फरमाइश कार्यक्रम हो या फिर व्हाट्सएप फरमाइश हो, हमारी सभी कार्यक्रम सुनती है क्यों नीता जी?
1: जी बिल्कुल,
0: तो हमारी जो श्रोता सुनती है इन कार्यक्रमों को और सुनकर जो प्रतिक्रिया देती है हमें बड़ा ही अच्छा लगता है। इसी तरह आप हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहें और कार्यक्रमों के बारे में प्रतिक्रिया देते रहें
1: जी,
0: और पत्र के लिए आपको धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: कार्यक्रम में अगला पत्र हमारे श्रोता हमें लिखते हैं, आप हैं जिन्होंने हमें मैसेज भेजा है। ये मैसेज लिखते हैं गांव करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री मोहम्मद मुनाजिर अंसारी। आप सभी लिखते हैं कि कार्यक्रम पेश करने वालों को हमारी तरफ से प्यार भरा आदाब। हमें देहरादून केंद्र से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। सभी कार्यक्रम में सुनता हूँ। 22 मई को एक संवाद प्रेरणा का कार्यक्रम सुना, बहुत ही अच्छा लगा। इसमें श्रीमती राधा रतूड़ी जी से रमेश चंद्रा की बातचीत सुनी, बहुत अच्छी लगी, बहुत सी जानकारियां भी मिली। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही लिखते हैं कि फिल्मी गीतों के कार्यक्रम के अलावा महिलाओं के कार्यक्रम भी हम सुनते हैं, सभी अच्छे लगते हैं। घरेलू कामकाज की बातें बहुत लाभदायक होती है। साथ ही आप लिखते हैं कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम आपने क्यों बंद कर रखा है? आपसे गुजारिश है कि 11 बजे आप रोज व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम देते हैं, अगर आप 2 दिन बंद करके इस प्रोग्राम को हेलो फरमाइश कार्यक्रम शुरू कर दें तो आपकी बड़ी बहुत मेहरबानी होगी।
1: लाल मोहम्मद अंसारी जी, जो कि आपने लिखा है कि आपको श्रीमती राधा रतूड़ी जी का कार्यक्रम जो कि रमेश चंद्रा जी से उनकी बातचीत थी बहुत ही प्रेरणादायक संवाद लगा, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।
0: और जहां तक इन्होंने बात की है व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम की,
1: जैसा कि हमारा जो कार्यक्रम जाता है व्हाट्सएप फरमाइश वो डेली 11 बजे तो जाता है और हमारे श्रोता इसमें अपनी प्रतिक्रियाएं और अपना प्यार हमको देते ही हैं।
0: जी बिल्कुल, लेकिन ये चाहते हैं कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम को आप सप्ताह में 2 दिन कर दें, यानी कि एक तरफ तो आप बात करते हैं हेलो फरमाइश कार्यक्रम आपने बंद कर दिया, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आप इस प्रोग्राम को 2 दिन कर दें, तो अपने श्रोताओं से यही कहना चाहेंगे हेलो फरमाइश कार्यक्रम हमारे केंद्र से शुक्रवार को रात्रि 10 बजे प्रसारित किया जा रहा है। रात्रि 10 बजे से 11 बजे तक कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है और उसके लिए रिकॉर्डिंग की जाती है गुरुवार को शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच। अगर हमारे श्रोता फोन नंबर नहीं जानते हैं
1: तो अपना फोन नंबर, तो
0: हमारे श्रोता फोन नंबर नोट कर सकते हैं, हमारे कार्यक्रम के लिए फोन नंबर है 7088001382। इस नंबर पर आप हमें फोन करके अपनी पसंद का फिल्मी गीत सुन सकते हैं, कार्यक्रम हेलो फरमाइश के अंतर्गत। तो श्रोता फिलहाल जो अभी हमारा हेलो फरमाइश कार्यक्रम है उसका आनंद लेते रहें, और जब भी ऐसा कुछ होगा आपके सुझाव को हम नोट कर लेते हैं, क्यों अनिता जी?
1: हाँ जी बिल्कुल।
0: तो आने वाले समय में अगर ऐसा कुछ हमारा प्लान होगा या ऐसा कोई प्रस्तावित होगा या कुछ ऐसा होने जा रहा है कार्यक्रमों में परिवर्तन, तो आपको जरूर सूचना देंगे। फिलहाल इस आप कार्यक्रम को सुनते रहें और इसका आनंद उठाते रहें, और पत्र के लिए आपका
1: बहुत बहुत शुक्रिया। और कल्पना जी, जैसा मुझको यहाँ पे दिख रहा है कि लाल मोहम्मद अंसारी जी, लालू मिस्त्री अंसारी जी और मोहम्मद मुनाजर अंसारी जी ने एक शेर भी लिखा है, क्योंकि बीते ही दिन ईद उल अजहा का त्योहार मनाया गया है
0: जी,
1: जिसमें उनका शेर है, ईद आई तुम ना आए क्या मजा फिर ईद का, ईद आई तुम ना आए क्या मजा फिर ईद का, ईद ही तो एक नाम है एक दूसरे की दीद का।
0: क्या बात है, क्या बात
1: क्या
0: है,
1: बात है।
0: हाँ, और हमारे श्रोताओं के दीद तो हमारे श्रोताओं के मैसेज से होता है, क्यों?
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: अगर उनके पत्र हमें प्राप्त होते हैं, उनके मैसेज मिलते हैं, तो वास्तव
1: हमारे लिए
0: में
1: हर दिन ईद है,
0: क्या
1: हर
0: बात
1: दिन
0: है।
1: दिवाली है।
0: जी जी जी बिल्कुल, बहुत सही। और अनिता जी, हम
1: जी
0: श्रोताओं से भी कहना चाहेंगे कि आप हमारे यहाँ से महिला जगत कार्यक्रम सुनते हैं, और साथ ही जो आपने लिखा है कि फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम सुनते हैं, सभी आपको अच्छे लगते हैं, तो इसी तरह से आप हमारे कार्यक्रम सुनते रहें और कार्यक्रमों का आनंद लेते
1: लेते
0: रहें।
1: रहे। आपके पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: कार्यक्रम में अगला पत्र हमारे श्रोता लिखते हैं, आप हैं सी के चक्रवर्ती देहरादून से। आप लिखते हैं कि आपके केंद्र से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, और सभी कार्यक्रमों को मैं सुबह से लेकर रात्रि 9 बजे तक सुनता हूं। और लिखते हैं कि ये नमस्कार देहरादून कार्यक्रम जो प्रसारित किया जा रहा है वो इनको पसंद नहीं आ रहा है, और चाहते हैं कि नमस्कार देहरादून को पुनः अपने पुराने स्वरूप में प्रस्तुत किया जाए, जिसमें श्रोताओं की प्रतिक्रिया को भी शामिल किया जाए।
1: जी कल्पना जी, सीके चक्रवर्ती सर, पहले तो आपके मैसेज का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल्पना जी, बीते ही दिनों हमने सीके चक्रवर्ती सर का अनुभव कार्यक्रम भी सुना, जिसमें उन्होंने अपने साथ रेडियो में जो उनका सफर बीता है, चक्रवर्ती सर ने अब जो आकाशवाणी के 90 वर्ष जो पूरे हो रहे हैं उसमें अपना सफर साझा किया है, तो उसमें आपने हमको बताया है कि नमस्कार देहरादून कार्यक्रम चल तो रहा है
0: जी,
1: बट उसका स्वरूप उनको पसंद नहीं आ रहा है।
0: चक्रवर्ती सर से यही कहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम फिलहाल तो सुनते रहें, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है इसमें परिवर्तन
1: में
0: हो जाए,
1: परिवर्तन हो जाए,
0: और हो सकता है कि जो नमस्कार देहरादून का पुराना स्वरूप था उससे
1: नए
0: भी कोई
1: स्वरूप में आ जाए,
0: नया स्वरूप आ जाए, या उससे भी बेहतर अच्छा रूप आ जाए।
1: जी जी,
0: तो कार्यक्रम में कुछ भी हो सकता है, और ये परिवर्तन तो एक प्रक्रिया
1: नियम है
0: और चलता भी रहना चाहिए। अगर कार्यक्रमों में परिवर्तन नहीं होंगे तो कहते हैं ना कि एक तरह से बोरी सी आ जाती है ना। सभी चीजों में एक रूपता नहीं होनी चाहिए, परिवर्तन तो चलते रहना चाहिए। अब हमारे सीके चक्रवर्ती सर बिल्कुल ही वरिष्ठ श्रोता हैं,
1: श्रोता है हमारे,
0: तो सभी चीजों को अच्छी तरह जानते हैं, उन्हें ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। तो चक्रवर्ती सर से इतना ही कहेंगे कि आपको इस मैसेज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहें और कार्यक्रमों से
1: प्यार दिखाते रहें।
0: जी बिल्कुल, जताते रहें और साथ में मैसेज लिखते रहें, आपका पत्र मिला कार्यक्रम में।
1: जी सीके चक्रवर्ती जी, आपको मैसेज लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका ये प्यार हमारे दिलों में हमेशा यूं बना रहे।
0: कार्यक्रम में अगला पत्र हमारे श्रोता लिखते हैं गांव जगोड़ी जिला यमुनानगर से, रणधीर बांगड़, गुरमेजो, गौरव, परवीन, युगम और वीरेन। लिखते हैं कि आपका पत्र मिला कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं को हमारी ओर से नमस्कार। ये लिखते हैं कि नमस्कार जी, हम आपके प्रोग्राम के को रोज ही सुनते हैं, हमें अच्छे लगते हैं, सभी कार्यक्रम हमें पसंद आते हैं। दिन में 11 बजे जो व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम आता है उसमें भी हम मैसेज करते हैं जो आपने शामिल करते हैं समय समय पर, और पिछले दिनों एक सप्ताह के बाद मेरे मैसेज को शामिल किया गया। लिखते हैं कि संडे के दिन आपका प्रोग्राम विचार, आपके गीत हमारे हमें अच्छा लगता है, और हमने भी पिछली बार 9:08 पर आपको मैसेज किया था और वो आपने शामिल नहीं किया, हम आपसे बहुत ही नाराज हैं।
1: तो रणवीर बांगड़ जी, जो कि आपने अपना पत्र लिखा है तो उसमें आपने अपनी नाराजगी भी शामिल की है कि आप जो हेलो फरमाइश या व्हाट्सएप फरमाइश में अपना नाम देते हैं उसमें हमने शामिल नहीं किया, क्योंकि ऐसा होता है कि हमारे पास इतने सारे लोगों के मैसेज आते हैं, नाम आते हैं, क्या पता वो नाम स्किप हो जाते हो।
0: हाँ, ये भी हो सकता है,
1: मगर हमारी कोशिश रहती है कि सभी का नाम कार्यक्रम में शामिल हो।
0: जी, और रणधीर बांगड़ जी, ये भी हो सकता है कि हमने आपका नाम कार्यक्रम में प्रसारित किया और आप सुन नहीं पाए हो।
1: जी बिल्कुल हो सकता है
0: ना।
1: और मगर कल्पना जी, हमने इनका जो पत्र है वो तो शामिल किया
0: जी,
1: तो इनके लिए हमारा प्यार तो दिखता ही है।
0: जी जी, लेकिन देर से ही सही शामिल तो किया।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और रणधीर बांगड़ जी, आपसे कहना चाहूंगी कि बेचारा आपके गीत हमारे प्रोग्राम के लिए जो आपने नाराजगी व्यक्त की है, तो उसके लिए मैं आपसे ही कहना चाहूंगी, आपने बिल्कुल 9:08 पर अपना मैसेज दिया, लेकिन वो 9

0: पत्र लिखिएगा आपका पत्र मिला
1: मिला में, किसको हम शामिल करेंगे और आप सुनिएगा भी
0: जी। और बिल्कुल आप हम जैसे कि जानते हैं कि आकाशवाणी 90 वर्ष पूरे कर रहा है, इस अवसर पर आपको और सभी श्रोताओं को हम यही कहना चाहेंगे कि रेडियो के बारे में जो भी आपकी बातें हैं, रेडियो की जो अनुभव साझा करना चाहते हैं या कोई ऐसी बात है जो रेडियो पर आप कहना चाहते हैं, लिख भेजिए हमारे आपका पत्र मिला कार्यक्रम में और आपकी उन बातों को, उन विचारों को, उन अनुभव को साझा किया जाएगा आपका पत्र मिला कार्यक्रम के माध्यम से।
1: बिल्कुल, क्योंकि आपका जो दिल है और हमारा दिल है वो रेडियो के माध्यम से
0: जी
1: जुड़ा हुआ है।
0: और देखिए जहाँ रेडियो है तो वहाँ हम सब मिलकर ही इस रेडियो को आगे बढ़ा रहे हैं और इस सफर को कामयाब कर रहे हैं,
1: क्योंकि श्रोताओं का साथ है तभी तो हमारे रेडियो का सफर उनके साथ है।
0: जी बिल्कुल अनीता जी, मुझे भी बिल्कुल ये बात अच्छी लगी।
1: बिल्कुल,
0: और आपने सही कहा कि आपका साथ है तो निश्चित ही हम सफर को आगे बढ़ा सकते हैं। अकेला तो सफर कोई नहीं कर सकता है।
1: बिल्कुल, हमारे श्रोता ही हमारे साथी हैं।
0: जी बिल्कुल, सफर के साथी हैं। तो श्रोताओं इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें और हमें पत्र लिखते रहें, अपने मैसेज लिखते रहें।
1: गांव जगुड़ी जिला यमुनानगर से रणवीर बांगड़ जी, गुरमेजो जी, गौरव जी, परवीन जी, योगम और वीरेन जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। और अब कार्यक्रम में चलते चलते अपने श्रोताओं को कार्यक्रम का पता बताना चाहेंगे जिसमें हमारे श्रोता अपने मैसेज हमें लिख पाएंगे, अपने पत्र लिख पाएंगे,
1: अपनी प्रतिक्रिया, अपने सुझाव लिख पाएंगे, अपनी आलोचना भी लिख पाएंगे
0: जी। तो उसके लिए पता है
1: कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून, नियर डिस्पना बाईपास पुल, पिन कोड है 248001। एक बार फिर से
0: कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून, निकट रिस्पना पुल और पिन 248001। साथ ही आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपने मैसेज लिख सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7088000731। और अब इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम संपन्न करने की कल्पना पंकज
1: और अनीता तित्याल को
0: दीजिए अनुमति।
1: नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपका पत्र मिला। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। रात के 8:15 होने को हैं। श्रोताओं, अब आप आनंद लेंगे सुगम संगीत कार्यक्रम का। कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे पुरुषोत्तम दास जलोटा के गाए भजन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये पहला भजन।

श्रोताओं, कार्यक्रम सुन रहे थे आप सुगम संगीत। कार्यक्रम के अंतर्गत आपने सुना पुरुषोत्तम दास जलोटा के गाए भजनों को। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। रात के 8:30 हुए हैं। समय है फिल्म संगीत का। आइए सुनते हैं सोनू निगम और सारिका कपूर की आवाज में फिल्म संगीत का ये पहला गीत। फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है।

0: Future-proof your career with UPES, India's AI-first university. Choose from 100-plus AI-integrated programs across engineering, business, law, design, humanities, and more. Up to 25% scholarships for Uttarakhand domicile students. Applications close 30th May. Apply now at upes.ac.in.
1: FM 106.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत. आइए सुनते हैं फिल्म यंगिस्तान से अरिजीत सिंह की आवाज में ये अंतिम गीत.

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत FM 100.5 MHz पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 8:45 होने को है। अब आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे। ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया, बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डी के शिव कुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: जब मीटिंग आरंभ हुई तो सिद्धरमैया द्वारा एक लाइन का रेजोल्यूशन दिया गया कि CLP नेता का चयन का कार्य AICC को सौंप देना चाहिए। इसके बाद AICC जनरल सेक्रेटरी KC मेरोगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धरमैया से अलग मुख्यमंत्री के कक्ष में बातचीत की। तब तक CLP मीटिंग रुकी रही। जब फिर से मीटिंग आरंभ हुई तो ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि डी के शिव कुमार नेता के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद सभी विधायक राज्यपाल से मिले और डी

0: के शिवकुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए वक्त मांगा। अब डी के शिवकुमार और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य जून 3 तारीख को 4:05 पर शपथ ग्रहण करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के सचेतक एग्री एसएस कृष्णमूर्ति ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और उनसे सत्तारूढ़ टीवी के द्वारा कथित तौर पर 4 विधायकों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये चारों विधायक ऑल इंडिया अन्ना डीएमके से इस्तीफा देने के तुरंत बाद टीवीके में शामिल हो गए। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए टीवीके सरकार के पक्ष में मतदान किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा, साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
3: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
4: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीनें हैं जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीनें हैं जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित करेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन

0: ऑनलाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को उनकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले दिन में म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिकित्सा वस्त्र, तकनीकी वस्त्र और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की अपार क्षमता रखते हैं। विशाखापट्टनम में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने सोमवार से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दी है। कपड़ा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि यह निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय कपड़ा उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान अब भी जारी है।
1: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का एक आंदोलन है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक निर्बाध यात्राएं संपन्न कराने के लिए डिजी यात्रा टीम को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा है कि ये उपलब्धि निर्बाध और कागज तथा संपर्क रहित प्रक्रिया पर यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्तमान समय में डिजी यात्रा ऐप पर 38 हवाई अड्डे हैं और अगले वर्ष इनमें 27 और हवाई अड्डे जुड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में स्वच्छता में सुधार और नागरिक समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए एक नया स्वच्छ मोबाइल ऐप जारी किया गया है। आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज कोलकाता में इस ऐप को जारी किया। इस ऐप के जरिए नागरिक अपनी समस्याओं जैसे रुका हुआ पानी, कचरा या नालियों का फोटो अपलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी

दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली SIP है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। अगले दो दिनों में ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। और अब बात खेलों की। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेउंग जाए और किम बॉन हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में हार गई। ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पांचवें ओवर में एक विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारतीय हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित इस वर्ष के खितमाहु मिस्क समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सऊदी हज मंत्रालय द्वारा तीर्थयात्रियों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले लब्बैतुम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार श्रेणी के तहत भारतीय हज मिशन को प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष लगभग 1,75,000 भारतीय हज के लिए गए थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, स्वागत है आपका आकाशवाणी की अखिल भारतीय युवा पत्रिका युवा भारती में। पत्रिका जो हर बार लेकर आती है नए विषय, नए स्वर, नई सोच और नई उड़ान। आज का अंक खास है कई मायनों में, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन लोगों की, उन विचारों की और उन रास्तों की जो युवा भारत को आकार दे रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे जोश के साथ। दोस्तों, कभी सोचा है कि जब न टीवी था, न इंटरनेट, न स्मार्टफोन, तो लोग सच कैसे जानते थे, अपनी बात कैसे कहते थे और अन्याय के खिलाफ आवाज कैसे उठाते थे? जवाब है एक अखबार से, एक छापाखाना, थोड़ी सी स्याही और बहुत सारा साहस। उदंत मारतंड। 30 मई 1826 को तत्कालीन कलकत्ता से शुरू हुए इस अखबार के संपादक और प्रकाशक थे कानपुर के निवासी पंडित जुगल किशोर शुक्ल, जो कलकत्ते में वकालत करते थे। यही था हिंदी पत्रकारिता का पहला कदम। और हम इसी ऐतिहासिक दिन के उपलक्ष्य में हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। ये सफर आसान नहीं था। अंग्रेजी हुकूमत थी, पाबंदियां थी, हर रोज खतरे से आंख मिलाना था। भारी आर्थिक तंगी और उच्च डाक दरों के कारण ये अखबार बहुत दिनों तक नहीं चल सका और 4 दिसंबर 1827 को इसका आखिरी अंक प्रकाशित हुआ। लेकिन जो बीज उदंत मारतंड ने बोया, वो पेड़ बनकर खड़ा हो गया। हिंदी पत्रकारिता को जैसे एक नई भाषा मिलती गई, एक नई धार मिलती गई और आजादी के बाद हिंदी पत्रकारिता और पकी और फैली। और फिर आया डिजिटल युग, जहां हर हाथ में स्क्रीन है और हर इंसान एक संभावित पत्रकार है। लेकिन

0: आज सवाल ये है कि जब पत्रकारिता डिजिटल हो रही है, जब खबर रील बन रही है, तो इन 200 सालों की विरासत को आखिर आगे कौन ले जाएगा? युवा पत्रकार कैसे दें इस समय के सवालों का जवाब, इसी विषय पर आज हमारा संपादकीय लिखा है और स्वर दिया है वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हरेंद्र प्रताप सिंह ने। शीर्षक है समय के प्रश्न और युवा पत्रकारिता के उत्तर। तो सुनिए और सोचिए।
1: पंद्रह अगस्त 1947 के पहले जो हिंदी पत्रकारिता हुई, उसका मुख्य मकसद था देश को आजाद कराना और उस समय जो कुछ अंधविश्वास थे समाज में उसको दूर करना और कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विकास पत्रकारिता को भी सहयोग करना। तो ये तीन मुख्य मकसद थे पराधीन भारत में। और जब देश आजाद हुआ तो जाहिर है कि एक नई शुरुआत थी, लोकतंत्र नया नया स्थापित हुआ, फिर हमारा संविधान सामने आया। तो हिंदी पत्रकारिता ने और भाषाई पत्रकारिता ने मुख्य रूप से देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। और मैं खास करके हिंदी पत्रकारिता में आजाद भारत में रेडियो का, आकाशवाणी का योगदान बहुत ज्यादा मानता हूं, क्योंकि खासकर जो हरित क्रांति हुई, श्वेत क्रांति हुई, उसमें आकाशवाणी की बहुत बड़ी भूमिका रही। भारत की जो आजादी है उसमें पत्रकारिता का और पत्रकारों का तो बहुत बड़ा योगदान रहा ही, लेकिन उसमें भी विशेषकर जो युवा पत्रकार थे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। बल्कि आप शुरू से ही देखें, उदंत मारतंड हो या फिर दैनिक समाचार सुधावर्षन, या फिर बाद में एक उर्दू का अखबार आया आपको प्याम आजादी, और कई भाषाई अखबार जैसे मराठी में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा शुरू किया, फिर बाद में महात्मा गांधी ने खुद अंग्रेजी में और गुजराती में, फिर बाद में हिंदी में पत्रकारिता की। तो उस पूरे दौर को यदि आप देखिए, यहाँ तक कि भगत सिंह तक ने भी जो है वो पत्रकारिता की, यशपाल ने पत्रकारिता की। पूरी आजादी की यदि यात्रा आप देखिए पत्रकारों की, तो उसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। बाल गंगाधर तिलक खुद 25-26 साल के थे जब उन्होंने अपना अखबार निकाला। गणेश शंकर विद्यार्थी का जो प्रताप निकला तो उस समय वो मात्र 24 साल के थे, और भगत सिंह 23 साल की उम्र में 2-3 अखबारों के लिए लिखते थे, और प्रताप के लिए तो वो नाम बदल के लिखते थे। तो इस तरह से जितने भी पत्रकार थे उसमें ज्यादातर यंग लोग ही रहे। और महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे और उन्होंने यंग इंडिया की शुरुआत की, नवजीवन की शुरुआत की, तो उन्होंने 30 से 35 साल के युवाओं को ही अपनी संपादकीय टीम में रखा। मेरा ये मानना है कि समय चाहे जैसे भी बदला हो और आगे भी बदलता रहेगा, पत्रकारिता के जो मूल्य हैं वो वही रहते हैं। मूल्य है सत्य को सामने लाना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, चाहे आप कलम से लिखिए, मोबाइल से लिखिए। और मैं आपको याद रखना चाहूंगा कि बीच में स्वतंत्र भारत में एक आंदोलन भी हुआ, वो कहलाता है छात्र आंदोलन, जिसको हम लोग जेपी मूवमेंट भी कहते हैं, 1974-75 का जो आंदोलन है। तो आप यदि देखिएगा तो उसमें भी युवा पत्रकारों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही। और स्वाधीन भारत में दो और खास किस्म की पत्रकारिता शुरू हुई, एक खोजी पत्रकारिता जिसने कहीं न कहीं उन व्यवस्था पे भी जो है एक अंकुश लगाया जहां कुछ उसने देखा कि गलत हो रहा है। और दूसरी जो एक पत्रकारिता जो एक चरम रूप पे आई वो है विकास पत्रकारिता, विकास से जो व्यक्ति छूट गया उसको सामने लाना और मानवाधिकार की बात करना, पर्यावरण की बात करना, पर्यावरण के हितों की बात करना, ये 20वीं सदी की पत्रकारिता की सबसे एक विकसित सोच थी। खबर को एक खबर के रूप के साथ साथ विचार के रूप में भी प्रस्तुत करना, जनसंचार का क्षेत्र, ये शुरू से युवाओं को आकर्षित करता रहा है, क्योंकि इसमें एक उनको कहीं न कहीं ग्लैमर भी नजर आता है। मेरा यह मानना है कि पत्रकारिता आज की तारीख में भी एक लोक सेवा है। मुख्य मकसद वही है कि आपको कलम से या शब्दों से या अपने विचारों से आपको समाज की, देश की और मानवता की सेवा करनी है। पत्रकारिता चाहे 18वीं सदी की हो, 19वीं सदी की हो, 20वीं सदी की हो, 21वीं सदी की हो, पत्रकारिता आज भी एक बड़ा ही पवित्र प्रोफेशन है। मैं कहूंगा युवाओं को, आज भी युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में इस क्षेत्र में आना चाहिए।
0: हरेंद्र प्रताप सिंह के विचारों ने हमें एक बार फिर याद दिलाया कि माध्यम बदलते हैं मगर जिम्मेदारी नहीं बदलती। और जब माध्यम की बात हो तो एक नाम जहन में हमेशा रहना चाहिए, आकाशवाणी। वो आवाज जो दशकों से घर घर तक पहुंचती रही, वो आवाज जो दूर दराज के गांवों में भी उम्मीद की किरण बनती रही, आकाशवाणी के 90 साल के ऐतिहासिक पड़ाव पर इस अंक में हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक युवा साहित्य और संस्कृति कर्मी विशाल पांडे, जिन्होंने रेडियो को सिर्फ एक माध्यम के रूप में नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक संस्था के रूप में देखा समझा है और इसमें उनकी एक हिस्सेदारी भी रही है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि आकाशवाणी के 90 साल विरासत आज के युवाओं के लिए क्या मायने रखती है।
2: मेरे लिए आकाशवाणी केवल एक प्रसारण संस्था नहीं है बल्कि वह मेरे बचपन की ध्वनि है, मेरे संस्कारों की लय है और मेरी चेतना का एक स्थायी संगीत। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, संचार के माध्यम बदल रहे हैं, आवाजें बदल रही हैं, तब भी मेरे भीतर कहीं एक रेडियो धीरे धीरे बजता रहता है। वही परिचित उद्घोष, वही शब्दों की गरिमा, वही ध्वनि का अनुशासन और वही आत्मीयता। शायद इसलिए मैं आज भी रेडियो सुनता हूँ। टेलीविजन कब देखा था ये मुझे सचमुच याद नहीं। मेरा बचपन गोरखपुर में बीता, शुरुआती शिक्षा भी वहीं हुई। मेरी माँ शिक्षिका हैं, लेकिन मेरे लिए वे केवल शिक्षिका नहीं बल्कि साहित्य भाषा और संस्कृति से भी मेरा पहला परिचय कराने वाली हैं। उनका आकाशवाणी गोरखपुर से गहरा संबंध है। वे वहां निशा निमंत्रण जैसे साहित्यिक कार्यक्रमों से जुड़ी हैं। मैं अक्सर उनके साथ आकाशवाणी केंद्र भी जाया करता था। आज भी मुझे वह परिसर याद है, वहां का शांत वातावरण, स्टूडियो के बाहर लगी हुई लाल बत्ती, धीमी आवाज में होती बातचीत, स्क्रिप्ट के पन्नों की सरसराहट और प्रसारण शुरू होने से पहले का वह अद्भुत मौन। एक छोटे बच्चे के लिए वह संसार किसी जादुई लोक से कम नहीं था। आकाशवाणी गोरखपुर एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा है। वहां अनेक बड़े साहित्यकारों, कलाकारों और संगीतज्ञों का आना जाना था। मुझे याद है जब कोई वरिष्ठ कवि या कलाकार स्टूडियो में आते तो वहां का वातावरण एकदम बदल जाता। शब्दों के प्रति आदर और कला के प्रति समर्पण मैंने वहीं देखा। शायद वही संस्कार बाद में मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन गए। बाल सभा के कई कार्यक्रमों में मुझे अवसर भी मिला। रेडियो पर अपनी आवाज सुनना उस समय बहुत रोमांचक था। रिकॉर्डिंग के दौरान माइक के सामने बैठना, सही उच्चारण का ध्यान रखना, शब्दों को स्पष्ट बोलना, ये सब मेरे लिए गतिविधियां ही नहीं थी बल्कि भाषा के प्रति एक अनुशासन का प्रशिक्षण भी था। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि आकाशवाणी ने मुझे बोलना ही नहीं सिखाया बल्कि सुनना भी सिखाया, और सुनना वास्तव में सबसे बड़ी कला है। रेडियो की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह श्रोता की कल्पना को जीवित रखता है, आपको अपने भीतर दृश्य रचने की स्वतंत्रता देता है। रेडियो सुनते हुए हम केवल श्रोता नहीं रहते, हम सह रचनाकार बन जाते हैं। धीरे धीरे समय बदला, मैं उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय आया। एक नया शहर, नया वातावरण, नए संघर्ष, लेकिन इस परिवर्तन के बीच भी एक चीज स्थिर रही, आकाशवाणी से मेरा संबंध। दिल्ली आने के बाद मुझे युववाणी का हिस्सा बनने का अवसर मिला। ये मेरे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभव था। युववाणी केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि युवाओं की अभिव्यक्ति का मंच था। वहां विचार थे, ऊर्जा थी, भाषा का उत्साह था और समाज को देखने की एक नई दृष्टि। बाद में मुझे हिंदी वार्ता और संस्कृत वार्ता से भी जुड़ने का अवसर मिला। ये मेरे लिए प्रसारण ही नहीं बल्कि भाषा और विचार की साधना भी रही। आज सोशल मीडिया के समय में सूचनाएं बहुत हैं लेकिन विश्वसनीयता कम होती जा रही है। ऐसे समय में आकाशवाणी का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वहां शब्दों के पीछे उत्तरदायित्व है। कई बार मुझे लगता है कि रेडियो सुनना दरअसल अपने भीतर लौटना है, क्योंकि रेडियो हमें थोड़ी देर के लिए दुनिया के शोर से बचाकर शब्दों और ध्वनियों की एक शांत दुनिया में ले जाता है। और शायद यही कारण है कि आकाशवाणी 90 वर्षों बाद भी उतनी ही प्रासंगिक है। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस परंपरा से जुड़ने का अवसर मिला। मैं अपनी माँ के प्रति भी कृतज्ञ हूँ, जिनके माध्यम से मेरा परिचय इस संसार से हुआ। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा को मेरा विनम्र प्रणाम है।
0: तो जैसा अभी विशाल पांडे

0: ने कहा, आकाशवाणी ने हमेशा ही नई पीढ़ी को अभिव्यक्ति का मंच दिया है और आज की युवा पीढ़ी अभिव्यक्ति के नए नए रास्ते खोज रही है। कोई कैमरा उठाता है, कोई माइक थामता है और कोई निकल पड़ता है अनजाने रास्तों पर, बस एक बैग, एक कैमरा और एक जज्बे के साथ। सफर को कंटेंट बनाना और कंटेंट को करियर बनाना, ये कमाल कर रहे हैं आज के ट्रैवल ब्लॉगर्स। जब घर की चार दीवारी को छोड़कर पहाड़, समंदर और अनजान शहर ही दफ्तर बन जाएं, तो जिंदगी कुछ और ही रंग ले लेती है। आज हम मिलने वाले हैं दो ऐसे ही युवाओं से, श्वेता राठौर और सौरभ परमार, जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं। इनके लिए रास्ता ही मंजिल है और हर मोड़ पर एक नई कहानी है। आइए सुनते हैं उनसे उनके रिस्क, उनकी रील्स और उनके रास्तों की बात, जो इन्होंने खुद चुने हैं। रास्ते, रिस्क और रील्स। श्वेता राठौर और सौरभ परमार से बातचीत की मैंने, यानी नवोदिता और प्रांजल ने।
1: आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक एआई और एक डिजिटल एरा में रह रहे हैं। यूथ के साथ कनेक्शन बहुत जरूरी है। आपका जो एक ऑनलाइन प्रेजेंस है वो बहुत क्वर्की स्पॉन्टेनियस कंटेंट से भरा हुआ है। आपकी सोलो ट्रैवलिंग जर्नी में प्लानिंग से लेके उसका एग्जीक्यूशन कितना इम्पोर्टेंट है और आपका उसमें क्या प्रोसेस है?
2: जब हम ट्रैवलिंग शुरू करते हैं तो बिल्कुल अनप्लान करते हैं। हमारी कोई आइटिनरी नहीं होती, क्योंकि हमारे हिसाब से ट्रैवलिंग वैसे ही होती है। जब आप एक्सप्लोर करने जाते हो किसी जगह को और आप मन में बिठा के रखे हो, हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो खत्म है वहां पे एक्सप्लोरेशन, क्योंकि आप टारगेटेड ट्रैवल कर रहे हो। तो हम जब भी प्लान करते हैं तो हम बस जगह को देखते हैं, ये हमें पसंद आ रही है जगह, चलो चलते हैं। कैसे जाना है वो उसी दिन डिसाइड होता है। आपको बस से जाना है, आपको फ्लाइट से जाना है, आपको ई रिक्शा लेके जाना है, इट्स अप टू यू। और आइटिनरी की बात तभी आई जब हम फॉरेन ट्रैवल करना शुरू किए, क्योंकि वहां पे नेसेसिटी बन जाती है। आपको दिखाना है वीजा ऑफिसर को कि आइटिनरी एक सर्टेन वे में होनी चाहिए। वहां पे भी हम कोशिश करते हैं कि जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो सके हमारे प्लान में हम उतना रखें। और ट्रैवलिंग करते समय आपको बहुत ही स्मार्टली चलना होता है, बेवजह रिस्क नहीं ले सकते हैं। जैसे यूथ जो है या सोलो ट्रैवलिंग वाली जब बात आती है तो मोस्टली ऐसी आती है कि इज इट सेफ, कैसे हम जाएं, कैसे बजट हैंडल करें। मान लीजिए आपका बजट 10,000 है, आप प्लान कीजिए आसपास की जगहों का। हो सकता है कि आपकी जो ट्रैवलिंग हो वो 1,000-2,000 में ही हो जाए। तो अगर आपको ट्रैवलिंग शुरू करनी है तो सबसे पहले तो आसपास की जगहों को घूमना शुरू कीजिए, देखिए कि आपको कितना मजा आ रहा है और क्या एक्सप्लोर करने में मजा आ रहा है। तो उससे आप ना लॉन्जेविटी ला सकते हैं। अगर आप आगे जाएंगे ना बड़े स्टेट्स में, किसी भी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो अनएक्सप्लोर्ड है और आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि आपको हैंडल करने का तरीका आता होगा।
0: सौरभ, आपसे ये जानना चाहेंगे, जितनी आसानी से श्वेता ने कहा कि हम एकदम उसी दिन प्लान करते हैं, लेकिन फिर भी आपका पर्पस तो ये है कि उस चीज को आपको कवर करना है और आप उसको किसी भी तरीके से आपको देखने सुनने वालों के सामने रखना है, क्या वाकई ये इतना स्पॉन्टेनियस होता है या फिर?
1: मुझे लगता है श्वेता ने झूठ बोला, इससे भी ज्यादा स्पॉन्टेनियस है।
0: अच्छा।
1: क्योंकि हम लोग जो पूरा का पूरा कॉन्टेंट है स्टोरी के अराउंड रिवॉल्व करता है। हम लोगों ने जब इनिशियली ट्रेवल स्टार्ट किया था तो हम सिर्फ ये नहीं करना चाहते थे कि मैं यहाँ पे जा रही हूँ, ये करना चाह रही हूँ। हम लोग सच में एक बहुत ही ऐसी जगह पे फिक्स थे दोनों के दोनों अपने लाइफ में कि हम वहां से निकल नहीं पा रहे थे। शी वॉज वर्किंग इन कॉर्पोरेट ऑफिस और मैं मीडिया एडिटिंग कर रहा था। जब इसने जॉब छोड़ी श्वेता ने, तो हमने सोचा कि हम इसको ना एक आइडिया बेस लेके चलते हैं, कॉन्टिन्यूटी रखते हैं इसमें। तो इनिशियली ऐसा हुआ कि जब हमने स्टार्ट किया तो हमने एक स्टोरी जनरेट की। स्टोरी मतलब वो रियल लाइफ से ही जनरेटेड थी कि श्वेता ने अपनी जॉब छोड़ी है और जॉब छोड़ के उसने ट्रैवलिंग करना शुरू किया है। बट ट्रैवलिंग के लिए आपको पैसे चाहिए और स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ ऐसे 10-12 हजार रुपए थे दोनों के पास मिला के, ये हमारी सेविंग्स थी। तो हम लोगों ने एक हफ्ता ट्रैवल किया। एक हफ्ता जब हमने ट्रैवल किया तो हम लोगों ने सोचा कि मैं पूरा कंटेंट संभालूंगा और तुम पूरा फाइनेंस संभालो। तो ये हमारी स्टोरी चली। तो क्या हुआ कि विद इन 3 मंथ्स हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे और सिर्फ 10,000 से हमने शुरू किया था उस टाइम।
0: आपके जवाब में एक्चुअली 2-3 ऐसे पॉइंट आए जहां पर मेरे अंदर कुछ क्यूरियोसिटी है। एक तो ये कि जब आपने बोला कि श्वेता ने अपनी नौकरी छोड़ी, आई वुड होप कि आपके अंदर भी वो एक सेंस ऑफ नर्वसनेस, वो इनसिक्योरिटीज होंगी कि छोड़ तो दी, आगे कैसे होगा। और जो आपने एक जिक्र किया कि आपके पास 10,000 फॉलोअर्स थे, वो 10,000 भी कैसे आए। और दूसरा ये कि आपने ये कहा कि जो चीजें आप कह रहे हैं, आप स्टोरी सोचते हैं, हम लोग तुरंत उसको करना चाहते हैं। कभी कोई आपके आसपास कोई सोशल ऐसी चीज है जो आपको ज्यादा इम्पैक्ट करी है, पॉलिटिकल है, या जानबूझ के आप ऐसे कंटेंट से दूर रहना चाहते हैं जहां पे किसी भी तरह के डिस्प्यूट की कोई गुंजाइश हो?
1: हम लोग का जो मेन कॉन्सेप्ट है और जो कंटेंट का

0: मेन कोर है वो ये है कि हम लोगों को ना दुखी नहीं करना चाहते. देयर इज अ लॉट ऑफ सैडनेस गोइंग ऑन और चीजें होती रहती हैं आसपास. अगर हम किसी भी चीज को टच करें तो आप कभी भी सही या गलत नहीं हो सकते पूरी तरह से. लेकिन हम थोड़ा सा ना हैप्पीनेस स्प्रेड करना चाहते हैं अपने आसपास, तो इसलिए हम उन टॉपिक से थोड़ा सा दूर रहते हैं. हमारा चैनल ऐसा नहीं था कि यहाँ सुपर पॉपुलर है और लोग वीडियोस देख रहे हैं. वो ये एक दो वीडियो पे व्यूज आ गए थे, इस वजह से हमारे फॉलोअर्स हो गए थे. हमने बेसिकली ये सोचा कि हम ऐसे वन ऑफ करके नहीं चल सकते हैं, हमें थोड़ा सा कमिट करना पड़ेगा क्योंकि हमें करना था ये.
1: श्वेता, एक सवाल और बनता है आपसे बीच में कि आप एक जॉब में थी, तो उस जॉब को छोड़ते वक्त कुछ तो आपने पैटर्न देखा होगा कि कुछ तो बेहतर कर सकते हैं.
2: सबसे बढ़िया बात मेरे अंदर मुझे यही लगती है कि मैं बहुत इम्पल्सिव हूँ. जैसे कि आप बंजिंग जंपिंग करने जा रहे हो तो आप साथ में ये भी रखो कि आप बैकआउट भी बैकआउट नहीं करना मुझे. ये मेरे दिमाग में लेकिन बात कौनती रहती थी कि तू सर्वाइव कैसे करेगी, घर से पैसे नहीं लेने, सबको इंडिपेंडेंट तो हो गए अब. तब मैंने शुरू की फ्रीलांसिंग. पहले शुरू किया अपने आसपास के लोगों से, फ्रीलांसिंग के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी और कोई आसपास कर भी नहीं रहा होता. तो फिर मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया तो मुझे पता चला कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट भी है मैडम. जैसे फिर मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई. फ्रीलांसर्स की ना अलग दुनिया है.
1: कुछ जो अभी यूथ अभी हमारे इस प्रोग्राम से सुन रहे हैं तो उनके लिए आप क्या बता सकती हैं, जो कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पे उस हिसाब से मैं अपनी प्रोफाइल को चेंज करना पड़ा? कैन यू गिव सम एग्जांपल्स?
2: हाँ, जैसे एक वेबसाइट है फ्रीलांसर, अपवर्क है, एक फाइबर है, तो ये ना पॉपुलर वेबसाइट्स है.
3: तो जब हम इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कंटेंट देखते हैं तो हर एक कंटेंट का एक यूएसपी होता है. जब हम आपका कंटेंट देखते हैं तो उसका एक यूएसपी है कि यूनिक वॉइस ओवर्स होते हैं. संस्कृत का यूज करते हैं, कभी शुद्ध हिंदी का यूज करते हैं. कुछ वर्ड्स हैं जैसे आप रेलवे को बहुत अलग प्रोनाउंस करते हैं,
2: लोपद गामिनी.
3: और उसके पीछे का इंस्पिरेशन क्या है?
2: इंस्पिरेशन एक तो देखो, हिंदी ना बहुत सुंदर है, मतलब हिंदी बहुत ही प्यारी लगती है. हमने स्कूल में वैसे सीखा नहीं है जिस तरह से हमें सीखना चाहिए था, तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने माध्यम से हम खुद भी सीखें. हम हर बार जब स्टोरी लिख रहे हैं, जैसे ये स्टोरी लिखने बैठा है, जैसे अभी मैं बोलूंगी ना तो कंप्लीट हिंदी नहीं बोल पाऊंगी. मुझे कुछ कुछ वर्ड्स, जैसे इंग्लिश वर्ड्स जो कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश होती है, तो उसमें जैसे अभी बोला मैंने तो नहीं आती. तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इसकी हिंदी लेके आते हैं क्योंकि लगता है हमें बेहतरीन हिंदी, और हमें ऐसा लगता है कि लोगों को ना बहुत मजा आता है हिंदी सुनने में, जैसे हमें मजा आता है. बाकी आधा हिस्सा इसका भी है इसमें.
0: मैं मुझे लिखने का बहुत पहले से शौक था. हमने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, भारत माता टेम्पल है. जब हम वहाँ पे गए तो मैंने सोचा कि यार अगर यहाँ पे इतने सारे गॉड्स हैं, गॉडेसेस हैं, हमारा पहला टेम्पल विजिट था वो म्यूजियम, तो हम उनको ऐसे साधारण भाषा में बोल नहीं सकते हैं, हमें थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल करना पड़ेगा. तो जब हमने किया तो हमें खुद अच्छा लगा, और दूसरा हम एक तरह से हिंदी को थोड़ा सा ना प्रमोट भी करना चाहते थे कि हम ना मुहावरों का बहुत इस्तेमाल करते हैं.
3: आपने एक इंडिया सीरीज शुरू की थी जिसमें आपने 500 चैलेंज लिया था, आपने पूरा इंडिया घूमा था, तो अगर उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, और लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक हर राज्य में अलग कल्चर है, अलग भाषा है, अलग खाना है, तो कुछ एक्सपीरियंस हो, कुछ ऐसी चीज जो जिससे आप एनकाउंटर हुई हो.
2: एक तो भारत कितना भी घूम लो खत्म नहीं होने का है. बहुत जगह कवर की, बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे स्टेट्स में गए, लेकिन अभी तक स्टिल ऐसे लगता है हमें जब कोई वीडियो आती है कि अरे यार यहाँ तो गए ही नहीं, ये तो एक्सप्लोर ही नहीं किया. और दूसरी बात यह है कि बहुत कुछ जानने को मिला. और बताए ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स थे जहाँ पे हमें लगा कि जब आप घूमना शुरू करते हो तो आपको रियलाइज होता है कि ये हमारा जो भारत है ना सही में बहुत डाइवर्स है.
1: मतलब जो डाइवर्सिटी हम किताबों में
2: पढ़ते हैं
1: उसका जब वास्तविक रूप हमें देखने को मिलता है तो फिर वो डेफिनेटली वो हमें
2: बहुत ही मजेदार होता है.
1: एक क्रिएटर के तौर पर जो छोटी मोटी टेक्निकलिटीज होती है, लाइक ट्राईपॉड है या छोटे मोटे और जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, तो अगर डिफिकल्ट टेरेन में गए मान लीजिए आप, तो वो हैंडल करना कितना मुश्किल है, चैलेंजिंग होता है आपके लिए या इजी है?
0: इसमें जो टेक्निकल आप एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो नए क्रिएटर्स के साथ आती है वो ना ओवरथिंक करते हैं चीजों को. हमने जब ये चैनल स्टार्ट किया था हमारे पास एक फोन था, उसमें 4K वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं होती थी, और हमारे चैनल 3 महीने में जो हमारा 1 मिलियन हुआ वो सिर्फ उस फोन से हुआ. उसके आप वीडियो क्वालिटी देख लीजिए, एकदम बेकार वीडियो क्वालिटी. मेन मकसद ये होता है कि जो स्टोरी है ना, एक पूरा पैकेज आप कैसा दे रहे हैं, आप जो बताना चाह रहे हो पहुंच पा रहा है लोगों तक. आपको सुंदर नहीं दिखाना है, हर चीज सुंदर नहीं हो सकती है, या फिर हर चीज आसान नहीं हो सकती है. तो जो हमारे पास है सबसे पहले में उससे ही स्टार्ट करना चाहिए, वो ही इस्तेमाल करना चाहिए. पहले हमारे पास कैमरा था, फिर हमने GoPro भी लिया, फिर हमने अलग अलग कैमराज खरीदे, लेकिन फिर हमें बाद में पता चला कि ये सब ना बस हिंड्रेंस है, ये सब हमारी उसमें काम में बाधा डाल रहा है। अगर मान लीजिए हम ट्रैक कर रहे हैं और कोई लाइक 5 घंटे का ट्रैक है और मैं बैग पैक करके बैग में सामान लेके चल रहा हूँ तो मेरे लिए आसान नहीं है। तो हमने ये रियलाइज किया कि एक अच्छा फोन लीजिए आप और उसी फोन से आप जितना हो सके उतना कीजिए,
1: और छोटे मोटे जो आपको उसकी एक्सेसरीज मतलब जैसे ट्राइपॉड
0: ये सब जितना छोटा हो सके मतलब
2: कॉम्पैक्ट रखो।
0: जो गोल है, गोल ये नहीं है कि दूसरों के लिए आसान बनाना है, गोल ये है कि मुझे अपने लिए काम आसान बनाना है।
1: लास्ट सवाल एक्चुअली मेरा आपसे यही होने वाला था कि क्या लगता है फॉलोअर्स और सक्सेस?
2: सक्सेस मेरे दिमाग में ये रहता है कि क्या मैं जो बना रही हूँ उससे मैं खुश हूँ, इरेस्पेक्टिव ऑफ फॉलोअर्स। हमें ऐसा लगता है जो हमने इतने 4 सालों में एनालाइज किया है कि हमारी रीच बहुत ज्यादा है, हम जब लोगों से बात करते हैं बहुत मजेदार लगता है, ये है सक्सेस हमारे लिए कि हमारी बात जो है वो इस तरह तक पहुंची कि लोग मजे ले रहे हैं उसके और लोग उसको बहुत दिन तक याद रख रहे हैं। आपने जो वो वाली वीडियो बनाई थी ना, उसमें जो आइसक्रीम खाई थी बहुत मजा आया था, वो जो बच्चे, तो वो है सक्सेस हमारे लिए। फॉलोअर्स हमारे लगभग 700K इंस्टाग्राम पे, जैसे 5 मिलियन उस पर यूट्यूब पे है, तो वो हमारे लिए नंबर है। बस जब तक हमें ऐसा नहीं लगता कि जो हम दे रहे हैं वो 100% हमारा है, हमको मजा आता है, हम उसमें कंटेंट बनाते हैं।
0: आपके पास जो है जैसा है वहां से स्टार्ट करो, पुट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, डोंट एक्सपेक्ट एंड इट विल वर्क आउट अगर आपने इनफ मेहनत करी है तो।
4: श्वेता और सौरभ की बातें सुनकर एक बात साफ हो जाती है कि आज के युवा के लिए करियर का मतलब बदल चुका है। वो अपने लिए नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति के लिए और उससे अपने रोजगार के लिए। लेकिन हर युवा का सपना और हर युवा की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। कोई घर से दूर पहाड़ों पर कंटेंट बना सकता है, तो कोई घर की जिम्मेदारियों के बीच अपनी पढ़ाई पूरी करने का सपना देख रहा होता है, और पढ़ाई भी ऐसी जिससे भविष्य में रोजगार की कुछ उम्मीद हो। और ऐसे में एक नाम जहन में आता है भरोसे का, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू, जहां शिक्षा की कोई सीमा नहीं, ना उम्र की, ना दूरी की, ना परिस्थिति की। आज हमारे साथ हैं इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह, जिनसे हम जानेंगे कि रोजगार परक शिक्षा के क्षेत्र में इग्नू किस तरह नए आयाम छू रहा है और क्या युवाओं के लिए वाकई यहाँ आकाश जितनी संभावनाएं हैं। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
5: जी धन्यवाद।
4: सबसे पहला सवाल तो यही है कि जो हमारी नई शिक्षा नीति, हालांकि अब उस नीति को आए हुए समय हो गया है, और जो ओपन लर्निंग या दूरस्थ शिक्षा है, वर्तमान से इसके भविष्य की संभावनाओं को आप कैसे देखते हैं?
5: देखिए, अगर हम बात करें दूरस्थ शिक्षा की तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये एक ऐसी शिक्षा पद्धति है कि इसमें विद्यार्थी को केंद्र में रख के सारी मेथोडोलॉजी डिजाइन की जाती है। मतलब इसमें हम लोग ये प्रयास करते हैं कि विद्यार्थी को कुछ हम ऐसी सहूलियतें दें कि वो अन्य काम अगर कर रहा है पढ़ाई के साथ साथ, मान लीजिए स्वरोजगार कर रहा है या किसी रोजगार में है, कोई गृहिणी है या कोई किसान है, तो उनको सहूलियतें मिलें कि वो अपने पेस के अनुरूप अपनी पढ़ाई कर सकें। मुझे लगता है कि ये समय की मांग है और यही प्रयास सरकार का भी है।
4: तो आपको क्या लगता है कि अभी जो जन सामान्य में जो जागरूकता है इस तरह की पढ़ाई को लेकर, इस तरह के कोर्सेज को लेकर, पाठ्यक्रम को लेकर, वो किस स्तर पर है और उसको बेहतर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
5: जागरूकता का स्तर तो काफी अच्छा है, खासतौर से कोविड के बाद जब लोगों ने देखा कि सारे वेज एंड मीन्स बंद हो गए हैं लर्निंग के, तो वहां पर दूरस्थ शिक्षा एक बहुत इम्पोर्टेंट विकल्प के रूप में उभर के आया और अब ये युवाओं की एक तरह से चॉइस बन चुका है। खास तौर से ऐसे युवा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको एक उच्च कोटे की अध्ययन सामग्री मिलती है जिसको अगर वो पढ़ते हैं तो उनके कंपटीशन में सेलेक्ट होने के संभावनाएं बहुत अच्छी हो जाती हैं। प्लस वो अध्ययन अपने हिसाब से कर रहे हैं, जैसे उन्हें अगर मान लीजिए कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए कहीं पर कोई काउंसलिंग लेनी है या कॉलेजेस में जाना है या संस्थानों में जाना है तो वो उसको भी कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने समय का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। प्लस जो दूरस्थ शिक्षा के कोर्स राष्ट्रीय नीति आने के बाद से जो डिजाइन किए जा रहे हैं उसपे ट्रेडिशनल कोर्सेज में भी स्किलिंग का कंपोनेंट है।
4: जी
5: तो अगर आप सामान्य बीए, बीकॉम, बीएससी भी कर रहे हैं तो उसमें स्किलिंग के ऐसे कंपोनेंट हैं कि अगर आप जो सरकारी सेवा है उसकी ओर जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाना चाहते तब भी इन कोर्सेज को अगर आप करते हैं तो रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाएं बहुत अच्छी रहती। ऐसे ही जो बच्चे जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं वो भी अगर स्किलिंग करना चाहते हैं तो उनके पास भी अवसर है। तो यहां पर सरकार ये प्रयास कर रही है कि हमारा जो युवा हो वो स्किल्ड हो और एजुकेटेड हो।
1: जिनकी पढ़ाई में कुछ ब्रेक लग गया किसी भी कारण से, वापस अगर एक ब्रेक के बाद उन्हें पढ़ाई शुरू करनी है तो किस तरह इस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं, अगर इग्नू की बात करें तो?
5: देखिए, ब्रेक के बाद अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो इग्नू तो इसीलिए बना हुआ है। कोई माइग्रेशन, कोई टीसी की आवश्यकता नहीं है। आपके मन में इच्छा जागी कि हमारी पढ़ाई छूट चुकी है या हमें अपने नॉलेज को इन्हांस करना है, आप विश्वविद्यालय के किसी पर्टिकुलर पाठ्यक्रम में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं, मिनिमम एज लिमिट है 10+2 आपने किया हो, ज्यादातर कोर्सेज में एलिजिबिलिटी है। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को इग्नू सपोर्ट करता है। एडमिशन की जो मेथोडोलॉजी है वो ऑनलाइन है। सिंपल इग्नू की वेबसाइट पे जाएंगे, एडमिशन का जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करेंगे, फीस पे करेंगे और अगर वो सारी चीजें सही हैं तो उनको एडमिशन ग्रांट कर दिया जाएगा। देखिए, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि वी डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट्स बट वी गेट अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप आवर टैलेंट। यानी हम सभी के टैलेंट बराबर नहीं होते मगर हमें अवसर मिलता है अपने टैलेंट को बढ़ाने का, अपने स्किल्स को अपग्रेड करने का, अपने नॉलेज को अपडेट करने का। तो ये सारे ऑप्शंस इग्नू जनमानस के द्वार पर उनको उपलब्ध कराता है। अब लोगों को करना क्या है कि एक कदम आगे बढ़ाना है, इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रहण करना है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, आज की इस पत्रिका में हमने की बेहद खास बातें। हरेंद्र प्रताप सिंह से हमने जाना कि पत्रकारिता की जिम्मेदारी कभी पुरानी नहीं पड़ती और युवाओं को तो इसमें एक खास भूमिका निभानी है। विशाल पांडे ने बताया कि आकाशवाणी की आवाज और 9 दशकों के इतिहास में युवाओं की भी एक बेहद महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। हमने सुना श्वेता और सौरभ से कि हिम्मत हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। और फिर डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह से हमने जाना कि शिक्षा के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, आपको तय करना है कि किस शिक्षा के जरिए आपको कौन सा रोजगार चुनना है। तो फिर मिलेंगे युवा भारती के अगले अंक में। पत्रिका में हमारे सहयोगी रहे नेत्रा और प्रांजल के साथ। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय युवा पत्रिका। रात के 10 बजे है, प्रस्तुत है संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा।
1: परफॉर्मेंस बाय विदुषी स्मिता मुकाशी।
2: सुरों की साधना और शास्त्रीय गायन की समृद्ध परंपरा को आत्मसात करने वाली आकाशवाणी और दूरदर्शन की टॉप ग्रेड कलाकार विदुषी स्मिता मोकाशी पंडित अजय पोहनकर जैसे दिग्गज गुरुओं के सानिध्य में तराशा गया स्वर है।
1: टॉप ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड दूरदर्शन विदुषी स्मिता मोकाशी हैज डेडिकेटेड हरसेल्फ टू द परस्यूट ऑफ नोट्स एंड थरोली एब्जॉर्ब द रिच ट्रेडिशन ऑफ क्लासिकल सिंगिंग। हर वॉइस हैज बीन ब्यूटिफुली नर्चर्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ लेजेंडरी गुरुज इंक्लूडिंग पंडित अजय पोहनकर।
2: तानसेन और अमीर खान जैसे प्रतिष्ठित समारोह की अब शोभा बढ़ चुकी है। प्रयाग महाकुंभ से लेकर लंदन की नेहरू सेंटर तक आपने अपनी गायकी की छाप छोड़ी है।
1: शी हैज ग्रेस्ड प्रेस्टिजियस म्यूजिक फेस्टिवल्स लाइक द तानसेन समारोह एंड उस्ताद आमिर खान समारोह, लीविंग एन इंडेलिबल मार्क विद हर सिंगिंग फ्रॉम द प्रयाग महाकुंभ टू द नेहरू सेंटर इन लंदन।
2: आपको कलाश्री और मोहम्मद रफी जैसे कई सम्मानों से नवाजा गया है। आपकी प्रस्तुतियां न केवल तकनीकी रूप से सुदृढ़ है बल्कि उनमें भारतीय संगीत की गहरी रूहानियत भी झलकती है।
1: ऑनर्ड विद सेवरल एकोलेट्स इंक्लूडिंग द कलाश्री एंड मोहम्मद रफी अवार्ड्स, हर परफॉर्मेंसेस आर नॉट ओनली टेक्निकली फ्लॉलेस बट ऑल्सो डीपली रिफ्लेक्ट द सोल ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक।
2: आज आप सर्वप्रथम प्रस्तुत कर रही है राग मारू बिहाग। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है जिसके बोल है मान तज देहो प्यारे। मध्य लय तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है मानो न जियरा मोरा, और एक ताल में निबद्ध द्रुत रचना के बोल है मानो ना ही तुमरी बात। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं गांधार राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
1: टू बिगिन हर रेसाइटल टुडे She presents Rag Maru Bihag. The first is Vilambit composition set to Iktal with the lyrics Maan Taj Deho Pyare. This is followed by a Madhyalay composition set to Teental with the lyrics Mano Na Jiera Mora. She concludes this rag with a Drut composition set to Iktal with the lyrics Mano Nahi Tumri Baat. Accompanying her on the tabla is Gandhar Rajhans and on the harmonium is Pramod Borgaonkar.

0: ये था विदुषी स्मिता मोकाशी का गायन राग मारू बिहाग। स्मिता जी अब प्रस्तुत करने जा रही हैं राग रागेश्री। त्रितल मध्यलय में निबद्ध रचना की बोल हैं साजन बिन सुनी एरी आली, और द्रुत एकताल में निबद्ध बंदिश के बोल हैं राग संग रागिनी मिल मंगल गाई।
1: ट्रांजिशन एंड राग रागेश्री, दैट वॉज विदुषी स्मिता मोकाशी रेंडरिंग राग मारू बिहाग। स्मिता जी विल नाउ प्रेजेंट राग रागेश्री। द फर्स्ट इज मध्यलय कंपोजिशन सेट टू त्रिताल विद द लिरिक्स साजन बिन सुनी एरी आली। दिस विल बी फॉलोड बाय अ द्रुत बंदिश सेट टू एकताल विद द लिरिक्स राग संग रागिनी मिल मंगल गाई।

0: विदुषी स्मिता मुकाशी द्वारा प्रस्तुत ये था राग रागेश्री। आपका तबले पर संगत कर रहे थे गांधार राज हंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
1: यू आर लिस्निंग टू राग रागेश्री प्रेजेंटेड बाय विदुषी स्मिता मुकाशी। अकंपनिंग हर ऑन द तबला वॉज गांधार राज हंस एंड ऑन हारमोनियम वॉज प्रमोद बोरगांवकर।
0: ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ आकाशवाणी इंदौर। विद दिस टूडेज ऑल इंडिया नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक कम्स टू एन एंड।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
4: मुझसे?
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
3: ओ, 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 11 बजने को हैं। अब आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे। ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवाददात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉ सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करने में सक्षम है। डॉ सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी

कंपनी आर्सिलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।